0: इस समय सुबह के 5:55 हुए हैं। अब लीजिए सुनिए एग्री टिप्स।
1: किसान भाइयों, प्रायः देखने में आया है कि हमारे इन द्वीपों में जो जलवायु व यहाँ की जो भूमि की बनावट है वो बत्तख पालन के लिए आर्थिक दृष्टि से काफ़ी उपयुक्त है। फिर भी हमारे इन द्वीपों में किसान भाई बत्तख पालन की ओर उदासीन जान पड़ते हैं। बत्तखों की कुल मिलाकर 20 जातियाँ व 34 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। इनमें से इंडियन रनर, खाकी कैम्बल, पेकिंग आदि प्रमुख किस्में हैं। जहाँ तक खाने का या भोजन का सवाल है तो बत्तख इस मामले में प्रायः एकदम से बेतकल्लुफ होती हैं। इन्हें जो भी मिल जाए वो बड़े चाव व खुशी के साथ खाती हैं। जलीय खरपतवार जैसे वाटर स्पैनाइच, वाटर हैसिंथ आदि इनका मुख्य वानस्पतिक भोजन है। इसके अलावे खुले रूप में रहने वाली बत्तखें जल के पास रहने वाले कीड़े मकोड़ों, घोंघों व केंचुओं को बड़े चाव से खाती हैं, जो कि न केवल बत्तख की प्रोटीन की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं बल्कि किसान की समस्या को भी कुछ हद तक दूर करते हैं व खेत को हानिकारक कीड़े मकोड़ों, घोंघों आदि से बचाते हैं। लेकिन जब बत्तखों को निश्चित जगहों पर घोंसलों के अंदर पाला जाता है तब इन्हें भी मुर्गियों की तरह स्टार्टर, ग्रोवर, लेयर, फिनिशर व ब्रीडर राशन देने की आवश्यकता होती है और लगभग वही सिद्धांत लागू होते हैं जो कि मुर्गियों के राशन के साथ होते हैं, यानी कि ऊर्जा एवं प्रोटीन युक्त संतुलित दाना जिसमें वसा की मात्रा कम हो देना उचित रहता है। ल्यूसन व बर्सीम का कटा हुआ हरा चारा बत्तखों की बढ़ोतरी के लिए अच्छा होता है। अन्य आवश्यक पदार्थ जैसे सेलग्रीट, ताज़ा पानी, चूना, पार्श्विक प्रोटीन जो भी सस्ता हो उपलब्ध करवाना चाहिए। राशन में गेहूं व बाजरे के दलिए के साथ साथ मूंगफली की खली, ज्वार, फिश मील, बोन मील, राइस ब्रान व सप्लीमेंट मिश्रण विभिन्न अनुपातों में मिलाया जाता है जिससे कि उचित प्रोटीन व ऊर्जा की प्राप्ति हो। स्टार्टर दाना प्रथम 2 सप्ताह, ग्रोवर दाना 3rd से 6th सप्ताह तक, उसके पश्चात यदि मांस वाली बत्तख है तो फिनिशिंग राशन अन्यथा होल्डिंग राशन दिया जाता है। ये सभी राशन बाजार में आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं और आप भी इसे अपने पास उपलब्ध संसाधनों के प्रयोग से बना सकते हैं। इसके लिए आपको विशेषज्ञों से सलाह ज़रूर लेनी होगी। कभी कभी टूटे हुए चावल भी सुबह व शाम को 300 से 400 ग्राम प्रति बत्तख की दर से देना उचित रहता है। किसान भाइयों, बत्तख को दाना देते समय पानी की भी उचित व्यवस्था करनी चाहिए क्योंकि थोड़ा सा दाना खाने के बाद बत्तख पानी पीती है। बिना पानी पिए बत्तख दाना नहीं खाती। पानी के अभाव में दाने का लोथ भोजन नली के अंदर बन जाता है जो कि पेट के अंदर प्रवेश नहीं कर पाता, इसलिए पानी की उचित व्यवस्था का होना अत्यधिक आवश्यक है। दाना पानी की उचित व्यवस्था बत्तख की अच्छी बढ़ोतरी व अधिक अंडा उत्पादन में सहायक होती है और साथ ही बत्तखों को प्रसन्न चित्त भी रखती है। आशा है कि आप इन बातों को ध्यान में रखकर बत्तख पालन अपनाएंगे और इससे जरूर लाभान्वित होंगे।
0: एग्री टिप्स अभी आप सुन रहे थे।

हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6 बजने वाले हैं। अब समाचारों का प्रसारण होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में 66 विशिष्ट लोगों को वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगे। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। आज 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री अलंकरण दिए जाएंगे। राष्ट्रपति ने वर्ष 2026 के लिए 131 पद्म पुरस्कारों की स्वीकृति दी है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अलंकरण हैं। शेष पद्म पुरस्कार बाद में समारोह के दूसरे दौर में दिए जाएंगे। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमरीका आतंकवाद के हर रूप का मुकाबला करने को तत्पर है। कल नई दिल्ली में अमरीका से 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों को आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर दृढ़ रहना होगा। उन्होंने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को जोखिम से बचाने और विश्व को अधिक विकल्प उपलब्ध कराने में दोनों देशों का हित है। विदेश मंत्री ने कहा कि अनेक स्थितियों में दोनों देशों को विभिन्न क्षेत्रों में भावी रणनीतिक साझेदार बनाया है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमरीका रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉ जयशंकर ने प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
1: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण

0: पत्रकार बताया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखने के लिए विशेष प्रावधान किए हैं। इसका उद्देश्य उनके अधिकारों को पूरी तरह संरक्षित रखना है। नई दिल्ली में जनजातीय सांस्कृतिक समागम में गृहमंत्री ने कहा कि समान नागरिक संहिता से किसी भी जनजातीय अधिकार का उल्लंघन नहीं होगा। श्री शाह ने कहा कि नरेन्द्र मोदी सरकार ने जनजातीय कल्याण को आगे बढ़ाने का काम किया है।
1: नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रकार से जनजाति कल्याण को आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं आज इस मंच से इस जनजाति महाकुंभ को कहना चाहता हूं, कांग्रेस के जमाने में जनजातियों के कल्याण का कुल बजट 28,000 करोड़ था और नरेंद्र मोदी जी ने उसको 1,50,000 करोड़ तक बढ़ाने का काम।
0: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देबांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोटों के अंतर से हराया, जिन्हें 40,645 वोट मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फलता विधानसभा पुनर्चुनाव में रिकॉर्ड अंतर से जीत दर्ज करने पर देबांशु पांडा को बधाई दी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन प्रति प्राप्त करने की अंतिम तिथि आज तक के लिए बढ़ा दी है। बोर्ड ने कहा है कि छात्रों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए यह फैसला किया गया है। आज उत्तर पुस्तिका की आखिरी स्कैन प्रति उपलब्ध करा दिए जाने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख जल्द घोषित हो जाएगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने इस महीने की 28 तारीख को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी यूजी 2026 की तिथि आगे बढ़ा दी है। एनटीए ने कहा है कि सरकारी अधिसूचना के अनुसार ईद उल अजहा बकरीद की तिथि में बदलाव को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना जल्द ही दी जाएगी। देश के मध्य और उत्तर पश्चिम हिस्सों में भीषण लू के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और तापमान औसत से काफी ऊपर पहुंच गया है। कई क्षेत्रों में तेज गर्म हवा चलने से दिन में भीषण गर्मी पड़ रही है। आईपीएल क्रिकेट में अंतिम मैच में कोलकाता में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। कुलदीप यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Nina Arakel. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has said that India and the United States have a strong interest in combating terrorism in all its forms and manifestations. Addressing the gathering at 250th Independence Day celebration of the United States in New Delhi yesterday, Dr. Jaishankar said that India and US must always be clear about zero tolerance for terrorism, and that is why their counter-terrorism cooperation is so important. He said that both nations have a common interest in de-risking the global economy and providing the world with more choices. Mentioning the visit of U.S. Secretary of State and NSA Marco Rubio, Dr. Jaishankar said, "This visit highlights the significance of India-U.S. ties in contemporary times." He added that a year ago, Prime Minister Narendra Modi and U.S. President Donald Trump set out a pathway for the further development of both nations' enduring partnership. U.S. President Donald Trump dialed Secretary of State Marco Rubio during an event celebrating America's 250 years of independence at Bharat Mandapam in New Delhi yesterday. U.S. President described Prime Minister Narendra Modi as a friend and stated that ties between the two nations had never been closer. He even called himself a big fan of PM Modi. Mr. Trump said India can count on him 100%.
3: I just want to say hello to everybody. I love the Prime Minister. Modi is great. He's my friend. I just want to say a very good evening to everybody. It's morning here and it's evening there. And I just want to say you're great. And we've never been closer to India. And India can count on me 100% and our country.
2: U.S. President's remarks came amid Mr. Rubio's 4-day visit to India. Mr. Rubio met Prime Minister Modi on Saturday, followed by his meetings with External Affairs Minister S. Jaishankar and National Security Advisor Ajit Doval yesterday. President Draupadi Murmu will present

हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सुबह के 6:11 हुए हैं। अब लीजिए सुनिए जलयानों का यात्रा कार्यक्रम। जहाजरानी सेवा निदेशालय से प्राप्त सूचना के अनुसार यात्रियों को सूचित किया जाता है कि एमवी स्वराज द्वीप के कल 26 मई को विशाखापत्तनम जाने वाली यात्रा के लिए बचे हुए और सरेंडर किए गए टिकट्स आम लोगों के लिए आज यानी 25 मई को दिन में 11 बजे से उपलब्ध कराए जाएंगे। यात्री डीएसएस ई टिकटिंग पोर्टल के जरिए टिकट बुक करा सकते हैं। इसके अलावा टिकट स्टार्स टिकटिंग काउंटर से भी खरीद सकते हैं। ये सूचना शिपिंग सेवा निदेशालय अंडमान एवं निकोबार प्रशासन द्वारा जारी की गई है। एमवी स्वराज द्वीप विशाखापत्तनम की यात्रा पर कल यानी 26 तारीख को सुबह 10 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। अतिरिक्त सामानों का लदान आज दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक की जाएगी, जबकि यात्रियों को चढ़ाने का कार्य कल 26 तारीख को सुबह 7 बजे से 9 बजे के बीच किया जाएगा, जहां सुबह 10 बजे हेडोजेट्टी से छूटेगा। एमवी रानीचंगा शहीद द्वीप की यात्रा पर आज दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा और दोपहर बाद 1 बजे ये जलयान शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप के लिए चलेगा तथा इसकी वापसी आज ही दोपहर बाद 2:30 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी जॉली बॉय स्वराज द्वीप की यात्रा पर आज दिन में 11:30 पर श्री विजयपुरम से छूटेगा और दोपहर बाद 2 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप के लिए रवाना होगा तथा ये जलयान आज ही दोपहर बाद 3:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। शहीद द्वीप के लिए एमवी हट भी आज दोपहर बाद 2:30 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। ये जलयान आज शाम 4:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम वापस आएगा। एमवी कमोटा आज शाम 5 बजे श्री विजयपुरम से स्वराज द्वीप के लिए चलेगा। वापसी कल सुबह 5:30 पर स्वराज द्वीप से छूटकर शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी हट भी स्वराज द्वीप और लॉन्ग

0: होते हुए रंगत के लिए कल्याणी 26 मई को सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। ये जलयान कल ही दोपहर 12 बजे रंगत से छूटकर इन्हीं स्थानों से होते हुए श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। एमवी रानीचंगा शहीद द्वीप के लिए कल सुबह 6:15 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। इस जलयान की शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए वापसी होगी सुबह 8:30 पर। स्वराज द्वीप के लिए एमवी जॉली बॉय कल सुबह 6:15 पर श्री विजयपुरम से रवाना होगा। ये जलयान कल ही सुबह 8:45 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। एमवी बाराटांग कल दिन में 11 बजे शहीद द्वीप के लिए श्री विजयपुरम से रवाना होगा और दोपहर बाद 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप के लिए चलेगा तथा इसकी वापसी स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए कल ही दोपहर बाद 2:30 पर होगी। स्वराज द्वीप की यात्रा पर एमवी नॉर्थ पैसेज कल दिन में 11:30 पर श्री विजयपुरम से छूटेगा और दोपहर बाद 2 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप के लिए चलेगा तथा ये जलयान कल ही दोपहर बाद 3:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। शहीद द्वीप के लिए एमवी रानीचंगा कल दोपहर बाद 2:30 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। इस जहाज की वापसी कल शाम 4:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी और एमवी कमोटा कल शाम 5 बजे श्री विजयपुरम से स्वराज द्वीप के लिए चलेगा। वापसी परसों सुबह 5:30 पर स्वराज द्वीप से छूटकर शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। श्रोताओं, अभी आप जलयानों का यात्रा कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सुबह के 6:15 हुए हैं और अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम इंद्रधनुष।
1: इंद्रधनुष

कार्यक्रम सुनने वाले श्रोताओं को शाहिना का नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में। खिलाड़ी, एक ऐसा शब्द जो सुनते ही दिल में जोश भर दे। दोस्तों, जिंदगी भी किसी खेल से कम नहीं है। जिंदगी का खेल बड़ा दिलचस्प है। कभी हम अकेले ही मैदान मार लेते हैं और कभी दिल कहता है अब तो कोई साथी भी होना चाहिए। तो दोस्तों, थोड़ी मस्ती, थोड़ी रोमांस और ढेर सारी खिलाड़ी वाली एटीट्यूड, जहाँ एक तरफ है कॉन्फिडेंस, मैं खिलाड़ी, और दूसरी तरफ है दिल की पुकार।

दोस्तों, प्यार की दुनिया में हर दिल की अपनी एक कहानी होती है। कभी कोई अपने जज्बातों को बड़ी खूबसूरती से छुपा लेता है, तो कभी किसी की आंखें ही उसके दिल का राज बयां कर देती है। मोहब्बत में कोई खुद को बड़ा खिलाड़ी समझता है, तो कोई मासूम बनकर दिल चुरा ले जाता है। लेकिन सच तो यह है कि प्यार की राह में हर इंसान कभी न कभी थोड़ा शरारती, थोड़ा नादान और थोड़ा अनाड़ी जरूर बन जाता है।

दोस्तों, जिंदगी में वही इंसान सबसे खास माना जाता है जो हर पल में मुस्कुराना जानता हो, जो मुश्किलों को भी खेल समझकर आगे बढ़ता हो, और जो इंसान जिंदगी को खेल की तरह लेता है, हर हाल में हंसते हुए आगे बढ़ता है और अपने अंदाज में सबका ध्यान खींच लेता है, उसे लोग प्यार से खिलाड़ी कहकर बुलाते हैं।

तो दोस्तों, आज आपने खिलाड़ी थीम से जुड़े गीतों का आनंद लिया। ऐसे गीत हमें मनोरंजन ही नहीं देते, बल्कि यह सिखाते हैं कि जिंदगी में आत्मविश्वास, उत्साह और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना ही असली खिलाड़ी की पहचान है। हर इंसान अपने जीवन के खेल में एक खिलाड़ी है। कोई मेहनत से जीत हासिल करता है, तो कोई अपने अंदाज से लोगों के दिलों में जगह बना लेता है। यह जीवन की खूबसूरती है कि हर कदम पर कुछ नया सीखने और आगे बढ़ने का मौका मिलता है। इसी सकारात्मक संदेश के साथ हम आज के खिलाड़ी शीर्षक के सफर को यहीं विराम देते हैं। नमस्कार।

अभी आप इंद्रधनुष कार्यक्रम सुन रहे थे। प्रस्तुत कर रही थी शाहिना शमीम। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सुबह के 6:30 हुए हैं। अब लीजिए सुनिए रामचरित मानस गान।

पंचवटी पहुंचकर श्री राम, सीता तथा लक्ष्मण ने पर्णकुटी छवाई और एक बार पुनः सुख शांति पूर्वक निवास करने लगे। लक्ष्मण जी ने अग्रज को अपना स्वामी जानकर उनसे ज्ञान, वैराग्य और उस माया का वृत्तांत पूछा जिसके वश में होकर प्रभु भक्तों पर दया करते हैं।

0: श्रोताओं, अभी आप शोभा दे जोशी की आवाज़ में रामचरितमानस गान की 249वीं कड़ी सुन रहे थे। संगीत संयोजक थे सतीश भाटिया। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए अब सुनिए जल जीवन मिशन 2.0 से अब और सुदृढ़ होगी अंडमान निकोबार द्वीप समूह की पेयजल व्यवस्था पर समाचार वार्ता। लेखक और वाचक हैं चित्रकांत शर्मा।
1: समुद्र से घिरे और सीमित प्राकृतिक जल संसाधनों वाले अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए सुरक्षित और निरंतर पेयजल आपूर्ति हमेशा एक बड़ी चुनौती रही है। ऐसे भौगोलिक और पर्यावरणीय परिस्थितियों के बीच जल जीवन मिशन के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेश ने उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करते हुए वर्ष 2021 में सभी ग्रामीण घरों तक नल से जल पहुँचाने का लक्ष्य पूरा किया था। अब जल जीवन मिशन 2.0 के अंतर्गत केंद्र सरकार और अंडमान निकोबार प्रशासन के बीच हुआ नया समझौता ज्ञापन केवल जल आपूर्ति तक सीमित नहीं बल्कि ग्रामीण जल प्रबंधन को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और समुदाय केंद्रित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। विकसित भारत 2047 की दूरदृष्टि के अनुरूप यह समझौता पारदर्शिता, जवाबदेही और समुदाय केंद्रित ग्रामीण जल आपूर्ति मॉडल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया है। इसके अंतर्गत ग्राम पंचायत आधारित, सेवा केंद्रित और समुदाय नेतृत्व वाले ग्रामीण जल प्रबंधन मॉडल को लागू करने पर बल दिया गया है। नई दिल्ली स्थित कार्यक्रम में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल, जल शक्ति राज्य मंत्री V सोमन्ना तथा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर अंडमान निकोबार के उप राज्यपाल सेवानिवृत्त एडमिरल DK जोशी, मुख्य सचिव डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार तथा केंद्र शासित प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारी वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम में शामिल हुए। केंद्र सरकार और द्वीप प्रशासन के बीच हुआ यह समझौता जल जीवन मिशन 2.0 के सुधार संबंधी कार्यान्वयन को आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। वर्ष 2021

0: 2021 में ही केंद्र शासित प्रदेश के सभी ग्रामीण घरों में नल के माध्यम से जल आपूर्ति सुनिश्चित कर दी गई थी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने इस उपलब्धि की प्रशंसा करते हुए कहा कि अंडमान निकोबार ग्रामीण क्षेत्रों में 100% जल नल जल वितरण और सभी ब्लॉकों में हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने में अग्रणी रहा है। उन्होंने यह भी कहा, केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन ने शेष कार्यों के लिए आवश्यक वित्तीय आवंटन का पूरा वित्त पोषण किया है। केंद्रीय मंत्री ने प्रशासन से सभी मौजूदा जल अवसंरचना योजनाओं का वित्तीय मिलान शीघ्र पूरा करने और लेखांकन पारदर्शिता बनाए रखने पर बल दिया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जल जीवन मिशन केवल एक सरकारी योजना नहीं है, बल्कि जीवन में परिवर्तन लाने वाला अभियान है। अभियान की मूल समय सीमा मई 2024 थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में इसे दिसंबर 2028 तक बढ़ा दिया गया है। अंडमान निकोबार के उपराज्यपाल सेवानिवृत्त एडमिरल DK जोशी ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश ने जल जीवन मिशन के प्रारंभिक चरण को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है और आवंटित बजट का उपयोग करते हुए 40 पूर्ण ग्रामीण जल परियोजनाओं को सफलतापूर्वक लागू किया है। उन्होंने बताया कि जल जीवन 2.0 के नए चरण में समुदाय नेतृत्व वाली अवसंरचना प्रबंधन प्रणाली को मजबूत करने के लिए विकेंद्रीकरण परीक्षण शुरू किए गए हैं। सिपीघाट ग्राम पंचायत में एक व्यापक पायलट परियोजना सफलतापूर्वक पूरी हो चुकी है। उपराज्यपाल ने अंडमान निकोबार की भौगोलिक चुनौतियों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि द्वीप समूह में व्यापक नदी प्रणालियों या स्थायी प्राकृतिक अंतर्देशीय जल निकायों की कमी है, जिसके कारण यहाँ की जलापूर्ति मुख्य रूप से स्थानीय जलाशयों में संचित वर्षा जल पर निर्भर रहती है। ऐसी स्थिति में जल सुरक्षा बनाए रखना एक बड़ी चुनौती है। उन्होंने इन कमजोरियों को दूर करने के लिए केंद्र सरकार से सहयोग का अनुरोध किया और विश्वास जताया कि नया समझौता ज्ञापन जल शक्ति मंत्रालय और अंडमान निकोबार प्रशासन के बीच समन्वय को और मजबूत करेगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का अनुभव इस बात का प्रतीक है कि सीमित संसाधनों और भौगोलिक चुनौतियों के बावजूद योजनाबद्ध प्रयासों तथा प्रशासनिक समन्वय से ग्रामीण क्षेत्रों तक सुरक्षित पेयजल पहुंचाया जा सकता है। जल जीवन मिशन 2.0 के अंतर्गत समुदाय आधारित जल प्रबंधन, ग्राम पंचायतों की भागीदारी और स्थानीय स्तर पर रखरखाव व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में उठाए गए कदम भविष्य के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। वर्षा जल पर निर्भर इस द्वीप समूह में जल सुरक्षा को स्थायी बनाए रखना अब सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी और नया समझौता ज्ञापन इसी दिशा में केंद्र और स्थानीय प्रशासन की साझा प्रतिबद्धता को मजबूत करता है।
1: अभी आप जल जीवन मिशन 2.0 से अब और सुदृढ़ होगी अंडमान निकोबार द्वीप समूह की पेयजल व्यवस्था पर समाचार वार्ता सुन रहे थे। लेखक और वाचक थे चित्रकांत शर्मा। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अब लीजिए सुनिए वतन के गीत।

श्रोताओं, अभी आप वतन के गीत सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:50 हुए हैं। मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार जनसेवाओं को मौसम संबंधी चेतावनी में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के एक या दो स्थानों पर गरज के साथ बिजली चमकने की आशंका है। इस दौरान हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी, जबकि मछुआरों के लिए कोई विशेष चेतावनी नहीं है। कल शाम तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के अधिकतर स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। ये थी मौसम की जानकारी। अब लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। आपसे कुछ देर बाद यानी सुबह 7 बजे सुनिए जनसूचनाएं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन का समय रहेगा 7:05, 7:15 पर। विविध भारती मुंबई से सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम भोले बिसरेगी। ठीक उसी समय प्राइमरी चैनल पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम देश रागिनी। प्राइमरी चैनल और FM 100.9 MHz पर गुड मॉर्निंग अंडमान में सुबह 7:30 पर आप सुन पाएंगे विशेष कार्यक्रम रेडियो रागिनी 90 वर्षों की कहानी। कार्यक्रम सुगम संगीत के तहत सुबह 8:30 कलाकार होंगे पिनाज मसानी और मोहम्मद अजीज। आनंद लीजिए फिल्मी गीतों के कार्यक्रम तराने सुहाने का सुबह 9:00। 9:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम के तहत परवीन सुल्ताना का हिंदुस्तानी शैली में गायन होगा। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गाता चल सवेरे 10:00। दिन में 11:00 प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की 1291 कड़ी आप सुन पाएंगे। आनंद लीजिए फिल्मी गीतों के कार्यक्रम एक ही कलाकार का दिन में 11:30 पर, जिसके तहत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में तैयार कुछ गीत सुनवाए जाएंगे। तेलुगु में दोपहर 12:00 फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा गाना लहरी। 12:30 पर कार्यक्रम मलयालम कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा, जिसके तहत महिलाओं के लिए उपयोगी जानकारी दी जाएगी तथा रेडियो के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में विशेष प्रस्तुति होगी। दोपहर 1:10 पर समूह गान शिक्षा का कार्यक्रम आओ हिल मिल गाए। फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम दोपहर 1:30 पर। दोपहर बाद 2:30 पर मौसम की जानकारी के पश्चात प्राइमरी चैनल पर हमारे कार्यक्रमों की समाप्ति होगी, लेकिन FM 100.9 MHz पर हमारे कार्यक्रम जारी रहेंगे, जिसके तहत 2:30 पर लाइव फोन आउट प्रोग्राम होगा हेलो डियर फ्रेंड्स तथा 3:30 सुनिएगा फिल्मी गीतों का विशेष कार्यक्रम यूं ही गाते रहो। हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी शाम 4:00 निकोबारी कार्यक्रम के साथ, जिसमें सूचनाओं के अलावा ककाना विलेज के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत गीत सुनवाए जाएंगे। शाम 4:30 पर कार्यक्रम सुगम संगीत के तहत फनकारा होंगी सलमा आगा। शाम 4:40 पर कार्यक्रमों का विवरण दिया जाएगा।

4:45 पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा बहारों की शाम। शाम 5 बजे माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार वितरण का राष्ट्रपति भवन से सीधा प्रसारण होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। 5:30 बजे बांग्ला कार्यक्रम के तहत सुनिए आधुनिक गान। कृषि जगत कार्यक्रम संध्या 6 बजे, जिसमें प्रायोजित कार्यक्रम कृत्रिम गर्भाधान हर किसान की नई उड़ान की 7वीं कड़ी आप सुन पाएंगे। 6:30 पर कार्यक्रम पॉप मसाला। मौसम की जानकारी, जलियानों का यात्रा कार्यक्रम और जनसूचनाएं 7:15 पर। 7:20 पर सुनिए फिल्मी गीत दिल ने फिर याद किया। युवाणी के तहत 7:30 पर गजलों पर आधारित कार्यक्रम होगा कहकशा तथा विश्व फुटबॉल दिवस और राज बिहारी बोस की जन्म तिथि पर जानकारी दी जाएगी। आनंद लीजिए फिल्मी गीतों के कार्यक्रम चित्रपट संगीत का रात्रि 8 बजे, 8:30 बजे आप सुनेंगे रोजगार समाचार और गौरवगान, और रात्रि 10 बजे व्हाट्सएप पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा संदेशे आते।

युवाणी के तहत संध्या 7:30 पर गजलों पर आधारित कार्यक्रम होगा। कहकशां तथा विश्व फुटबॉल दिवस और राज बिहारी बोस की जन्म तिथि पर जानकारी दी जाएगी। आनंद लीजिए फिल्मी गीतों के कार्यक्रम चित्रपट संगीत का रात्रि 8:00 8:30 आप सुनेंगे रोजगार समाचार और गौरव गान, और रात्रि 10:00 व्हाट्सएप पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा संदेशे आते हैं। इन कार्यक्रमों के अलावा रात्रि 9:15 पर स्पॉटलाइट तथा 9:30 पर कार्यक्रम पब्लिक स्पीक हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। श्रोताओं, अभी आप हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह के 6:55 होने वाले हैं। अब संस्कृत में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह के 7:01 हुए हैं। जन सूचनाएं। आज सवेरे स्थानीय मौसम कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार पिछले 22 घंटों के दौरान श्री विजयपुरम और आसपास के क्षेत्रों में वर्षा 11.5 मिलीमीटर हुई। आज सवेरे 5:30 पर सापेक्ष आर्द्रता 95% और न्यूनतम तापमान 26.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल श्री विजयपुरम का अधिकतम तापमान रहा 32.5 डिग्री सेल्सियस। सूर्योदय 4:54 पर हुआ और सूर्यास्त का समय रहेगा 5:39। और अब एयर इंडिया से प्राप्त सूचना। दिल्ली से आ रहा विमान 2937 दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम पहुंचेगा तथा श्री विजयपुरम से दिल्ली के लिए विमान संख्या 2936 दिन में 11:40 पर अपनी वापसी उड़ान भरेगा।

श्रोताओं, आज सुबह 7:15 पर विविध भारती मुंबई से सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। ठीक उसी समय प्राइमरी चैनल पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम देश रागिनी। प्राइमरी चैनल और एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर गुड मॉर्निंग अंडमान में सुबह 7:30 पर आप सुन पाएंगे विशेष कार्यक्रम रेडियो रागिनी 90 वर्षों की कहानी। कार्यक्रम सुगम संगीत के तहत सुबह 8:30 कलाकार होंगे पिनाज मसानी और मोहम्मद अजीज। आनंद लीजिए फिल्मी गीतों के कार्यक्रम तराने सुहाने का सुबह 9:00।

0: चम गीत गाता चल सवेरे 10 बजे। आनंद लीजिए फिल्मी गीतों के कार्यक्रम एक ही कलाकार का दिन में 11:30 पर, जिसके तहत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में तैयार कुछ गीत सुनवाए जाएंगे। जन सूचनाएं समाप्त हुई। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स और FM 100.9 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 7:05 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में 66 विशिष्ट लोगों को वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन प्रति प्राप्त करने की अंतिम तिथि आज तक के लिए बढ़ाई। अंडमान निकोबार राज्य ओलंपिक संघ की ओर से 30 मई से जिला और राज्य स्तरीय प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी और द्वीप समूह के 1-2 जगहों पर 30 मई तक गरज के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना।

सुबह के समाचारों के साथ मैं पूजा सिंह। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में 66 विशिष्ट लोगों को वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। आज 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री अलंकरण दिए जाएंगे। राष्ट्रपति ने वर्ष 2026 के लिए 131 पद्म पुरस्कारों की स्वीकृति दी है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अलंकरण है। शेष पद्म पुरस्कार बाद में समारोह के दूसरे दौर में दिए जाएंगे। ये प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान कला, जनहित और समाज सेवा, साहित्य और शिक्षा, विज्ञान और अभियांत्रिकी, व्यापार और उद्योग, औषधि, खेल इत्यादि क्षेत्रों में विशिष्ट उपलब्धियों के लिए दिए जाते हैं। असाधारण और उत्कृष्ट सेवा के लिए पद्म विभूषण, विशिष्ट सेवा के लिए पद्म भूषण और किसी भी क्षेत्र में महत्वपूर्ण सेवा के लिए पद्मश्री से अलंकृत किया जाता है। समाज और देश की अप्रतिम सेवा की प्रेरणा देने वाले पद्म पुरस्कारों के लिए समाज के वंचित और दलित समुदाय, जनजातीय समुदाय और दूर दराज के दुर्गम क्षेत्र के लोगों का भी चयन होता है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा के उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन प्रति प्राप्त करने की अंतिम तिथि आज तक के लिए बढ़ा दी है। बोर्ड ने कहा कि छात्रों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए ये फैसला किया गया है। आज उत्तर पुस्तिका की आखिरी स्कैन प्रति उपलब्ध करा दिए जाने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख जल्द ही घोषित की जाएगी। अंडमान निकोबार प्रशासन राष्ट्रीय दिशा निर्देशों के अनुरूप टीबी मुक्त भारत अभियान 100 दिवसीय गहन अभियान को सक्रिय रूप से लागू कर रहा है। ये अभियान तपेदिक को समाप्त करने के लिए एक व्यापक और लक्षित दृष्टिकोण पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य स्क्रीनिंग के माध्यम से टीबी के सभी छूटे हुए मामलों को जल्द पहचान करना, व्यक्तिगत मरीज देखभाल, पोषण संबंधी सहायता, अन्य बीमारियों के प्रबंधन, नियमित फॉलोअप और टीबी डेथ ऑडिट के माध्यम से टीबी से होने वाली मौतों को कम करना और उनका प्रबंधन करना है। इस सिलसिले में अब तक 600 से अधिक आयुष्मान आरोग्य शिविर, स्कूल कॉलेजों और विभिन्न कार्यालयों में विभिन्न गतिविधियां आयोजित की गईं। प्रशासन ने आम जनता से इस अभियान में भाग लेने की अपील की है। मिशन वात्सल्य योजना के विभिन्न हितधारकों के लिए हाल ही में पॉक्सो अधिनियम और इसके संशोधन अधिनियम एवं नियमों के कार्यान्वयन पर 2 दिवसीय संवेदीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास संस्थान द्वारा समाज कल्याण निदेशालय के अंतर्गत राज्य बाल संरक्षण समिति के सहयोग

से आयोजित किया गया था। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य पॉक्सो अधिनियम, इसके संशोधन अधिनियम और नियमों के कार्यान्वयन को मजबूत करना तथा द्वीप समूह में बाल संरक्षण सेवाओं में लगे हितधारकों की क्षमता का विकास करना था। कार्यशाला में बाल कल्याण समितियों, किशोर न्याय बोर्ड, जिला बाल संरक्षण इकाइयों, विशेष किशोर पुलिस इकाई, चाइल्ड हेल्पलाइन, बाल गृहों के सदस्य एवं अधिकारी और मिशन वात्सल्य के तहत काम करने वाले अन्य बाल संरक्षण कर्मी शामिल थे। सत्र में यौन अपराधों से प्रभावित बच्चों के समय पर उपचार, संरक्षण, देखभाल और पुनर्वास को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न हितधारकों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों, अंतर विभागीय तालमेल और प्रभावी समन्वय सत्र पर भी जोर दिया गया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। द्वीप समूह के एक या दो जगहों पर 30 मई तक गरज के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। इस दौरान हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, जिसके बढ़कर 60 किलोमीटर प्रति घंटा होने की संभावना है। मछुआरों को इस दौरान समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। अंडमान निकोबार राज्य ओलंपिक संघ की ओर से मई जून माह में जिला और राज्य स्तरीय प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। श्री विजयपुरम में आयोजित होने वाले जिला जूनियर रग्बी सेवन फुटबॉल चैंपियनशिप 30 मई को खेली जाएगी, जिसके पंजीकरण की अंतिम तिथि 29 मई है। इसके अलावा जिला बैडमिंटन चैंपियनशिप के लिए 29 मई, ओपन सीनियर स्टेट रग्बी सेवन चैंपियनशिप के लिए 5 जून और जिला योग चैंपियनशिप के लिए 12 जून तक पंजीकरण किया जा सकता है। इच्छुक प्रतिभागी संघ से संपर्क कर सकते हैं। एनेट दक्षिण फाउंडेशन ने ग्रामीण विकास, पंचायती राज संस्थान व शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय और डॉ बी आर अम्बेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान के सहयोग से बिडनाबाद में एक दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। ये कार्यशाला पूरे दक्षिण अंडमान जिले के स्वच्छता कार्यकर्ताओं, स्वच्छता पर्यवेक्षकों, मशीन ऑपरेटरों और स्थानीय तकनीशियनों के लिए बेलिंग मशीन संचालन और रखरखाव विषय पर आयोजित की गई थी। इस कार्यशाला का आयोजन स्वच्छता कार्यकर्ताओं और स्थानीय तकनीशियनों की तकनीकी क्षमता को बढ़ाकर बेलिंग मशीनों की दक्षता, कार्यप्रणाली और दीर्घकालिक रखरखाव में सुधार करना था। इन सत्रों में डीब्रेट और सरकारी आईटीआई के तकनीकी प्रतिनिधियों के अलावा दक्षिण अंडमान जिले के विभिन्न पंचायतों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के उपलक्ष्य में डॉक्टर आरपी अस्पताल मायाबंदर में IRCA के समन्वय से आशा कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर चिकित्सा अधिकारी डॉ. एलिसबा ने तंबाकू के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभावों के बारे में जानकारी देते हुए इससे बचाव व इलाज पर जोर दिया। परियोजना समन्वयक सह व्यवसायिक परामर्शदाता सुविधा ने तंबाकू छोड़ने, पुनर्वास सेवाओं, काउंसलिंग और इसके निवारक उपायों के बारे में बताया। मनोचिकित्सक डॉ. अथीरा ने मानसिक स्वास्थ्य विकारों पर भी प्रकाश डाला। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला ये प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ FM 100.9 MHz पर भी सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार के अलावा सुबह 9 बजे, 10 बजे और 11 बजे प्रति घंटा समाचार हेडलाइंस FM रेडियो पर भी उपलब्ध है। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियां। ग्रेट निकोबार हिंद महासागर में भारत की सामरिक अग्रिम चौकी सुर्खी के साथ द डेली टेलीग्राम्स और द्वीप समाचार ने इसे अपनी बड़ी खबर बनाई है। इसके अलावा अखबार ने टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत 100 दिवसीय सघन अभियान का प्रभावी क्रियान्वयन जारी रखने के समाचार को भी प्रमुखता से प्रकाशित किया है। द अंडमान एक्सप्रेस अंग्रेजी ने पुलिस एंटी नारकोटिक्स टीम द्वारा अंतर्राज्यीय ड्रग नेटवर्क का भंडाफोड़ करने और सह आरोपी फाइनेंसर को गिरफ्तार करने के समाचार को अपने पहले पन्ने के निचले हिस्से में जगह दी है। इन्फो इंडिया ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह प्रतिनिधिमंडल के आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री से मुलाकात कर जन मुद्दा उठाए जाने के समाचार को अपनी पहली खबर बनाई है, जबकि द इको ऑफ इंडिया ने रख रखाव में कमी के कारण कटबट बे गेस्ट हाउस की दयनीय स्थिति के समाचार को प्रमुखता दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में

0: 66 विशिष्ट लोगों को वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन प्रति प्राप्त करने की अंतिम तिथि आज तक के लिए बढ़ाई। अंडमान निकोबार राज्य ओलंपिक संघ की ओर से 30 मई से जिला और राज्य स्तरीय प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी और द्वीप समूह के एक दो जगहों पर 30 मई तक तेज हवाओं के साथ वर्षा होने की संभावना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सुबह के 7:15 हुए हैं और अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम देश रागिनी।

नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम देश रागिनी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देश हम सब की पहचान है, हमारा हर अच्छा काम, हमारी मेहनत, हमारी ईमानदारी और हमारी एकता देश को आगे बढ़ाने में योगदान देती है। बच्चों को अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कार अपनाने चाहिए। युवा वर्ग को अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाकर समाज और देश के विकास में आगे आना चाहिए। इन्हीं सुंदर विचारों के साथ आइए शुरू करें आज का ये कार्यक्रम।

श्रोताओं, सच ही तो है, देश का नाम तभी ऊंचा होता है जब उसके नागरिक अपने कर्तव्यों को समझते हैं। आज के युवा ही कल का भारत है। अगर युवा मेहनत, अनुशासन और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें, तो देश नई ऊंचाइयों को छू सकता है।

तो श्रोताओं, इसी के साथ कार्यक्रम देश रागिनी अब यहीं समाप्त होता है। आइए हम सब मिलकर ये संकल्प लें कि अपने देश की प्रगति, स्वच्छता, शिक्षा और एकता के लिए हमेशा अपना योगदान देंगे। छोटे छोटे अच्छे कार्य ही मिलकर एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण करते हैं। इसी संदेश और शुभकामनाओं के साथ दीजिए श्री विद्या को इस कार्यक्रम से इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।

0: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स और FM 100.9 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह के 7:30 हुए हैं और अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम गुड मॉर्निंग अंडमान।
1: गुड मॉर्निंग अंडमान।
0: नमस्कार, गुड मॉर्निंग अंडमान। स्वागत है आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में। श्रोताओं, जीवन में कभी भी परिस्थितियां हमारे अनुसार नहीं होती। याद रखिए, असफलता कभी भी हमें पछाड़ नहीं सकती, क्योंकि सफलता पाने का हमारा दृढ़ संकल्प उससे कहीं ज्यादा मजबूत होता है। जब हमारे इरादे मजबूत होते हैं तो हर कठिनाई धीरे धीरे आसान लगने लगती है। हर छोटी कोशिश हमें मंजिल की ओर करीब ले जाती है। आज सोमवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 4वीं तिथि, तदनुसार 25 मई सन 2026। और हर सोमवार की ही तरह आज भी हम आपके लिए लेकर आए हैं विशेष प्रस्तुति रेडियो रागिनी 90 वर्षों की कहानी।

0: रेडियो रागिनी 90 वर्षों की कहानी।
1: कभी सुबह की पहली किरण के साथ तो कभी रात की खामोशी में धीमी सी गूंजती एक आवाज। रेडियो हमेशा से हमारी जिंदगी का एक ऐसा साथी रहा है जिसने हर पल को अपने पन से सजाया है। 90 वर्षों की इसी सुनहरी यात्रा का उत्सव है रेडियो रागिनी 90 वर्षों की कहानी। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम सुनेंगे कुछ ऐसे दिलों की बातें जिनके लिए रेडियो सिर्फ एक माध्यम नहीं बल्कि यादों और एहसासों का हिस्सा है। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में पहले गौरव जी ने अपने विचार साझा किए हैं। उन्होंने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में रेडियो के महत्व और लोगों से उसके गहरे जुड़ाव के बारे में बताया है।
2: नमस्कार, मैं गौरव, निकोबार का निवासी। आज मैं आकाशवाणी और हमारे जीवन में उसका योगदान विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, विशेष रूप से हमारे सुंदर द्वीप समूह अंडमान और निकोबार के संदर्भ में। आकाशवाणी, जिसे हम ऑल इंडिया रेडियो के नाम से भी जानते हैं, भारत का सबसे पुराना और विश्वसनीय रेडियो प्रसारण माध्यम है। आज भी यह देश के करोड़ों लोगों तक समाचार, शिक्षा, संगीत और मनोरंजन पहुंचाने का कार्य कर रही है। अंडमान और निकोबार जैसे द्वीपों में आकाशवाणी का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। यहाँ कई छोटे छोटे द्वीप है जहाँ हर समय इंटरनेट या टीवी की सुविधा उपलब्ध नहीं होती। ऐसे में रेडियो लोगों तक सही और आवश्यक जानकारी पहुंचाने का सबसे आसान और सस्ता माध्यम बनता है। आकाशवाणी हमें देश और दुनिया की ताजा खबरें सुनाती है। मौसम की जानकारी, समुद्र की स्थिति, तूफान या भारी बारिश की चेतावनी समय पर लोगों तक पहुंचाई जाती है।

0: हमारे द्वीपों में रहने वाले मछुआरों और दूर दराज के गांवों के लोगों के लिए यह जानकारी बहुत महत्वपूर्ण होती है और वे सतर्क रह पाते हैं। आकाशवाणी केवल समाचार ही नहीं देती बल्कि यह शिक्षा और संस्कृति को भी बढ़ावा देती है। बच्चों के लिए शिक्षा कार्यक्रम, युवाओं के लिए प्रेरणादायक बातें, किसानों और मछुआरों के लिए उपयोगी जानकारी तथा महिलाओं के लिए स्वास्थ्य और जागरूकता कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। इसके साथ ही आकाशवाणी भारतीय संस्कृति और संगीत को भी जीवित रखती है। पुराने गीत, भजन, लोक संगीत और देशभक्ति कार्यक्रम लोगों को अपनी संस्कृति से जोड़ती है। अंडमान और निकोबार में विभिन्न राज्यों और भाषाओं के लोग रहते हैं। यहाँ आकाशवाणी सभी को एकता और भाईचारे के सूत्र में बांधने का कार्य करती है। आपदा के समय भी आकाशवाणी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। जब कभी तूफान, भूकंप या सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाएं आती है, तब रेडियो लोगों तक तुरंत सूचना पहुंचाने में मदद करता है। कई बार बिजली और मोबाइल नेटवर्क बंद हो जाते हैं, लेकिन बैटरी से चलने वाला रेडियो लोगों के लिए आशा और जानकारी का साधन बन जाता है। आज के आधुनिक युग में भले ही मोबाइल और इंटरनेट का उपयोग बढ़ गया हो, लेकिन आकाशवाणी का महत्व आज भी कम नहीं हुआ है। इसकी सादगी, विश्वसनीयता और आसान पहुंच इसे हर वर्ग के लिए उपयोगी बनाती है। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आकाशवाणी केवल एक रेडियो सेवा नहीं, बल्कि यह लोगों की आवाज, जानकारी का स्रोत और समाज को जोड़ने वाला एक मजबूत माध्यम है। विशेष रूप से अंडमान और निकोबार जैसे द्वीपों में इसका योगदान हमारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।
1: तो ये थे गौरव जी, जिन्होंने रेडियो के महत्व पर अपने विचार हमारे साथ साझा किए। रेडियो की यही आत्मीयता आज भी लोगों के दिलों में अपनी खास जगह बनाए हुए हैं।

0: दिन भर सेवा और जिम्मेदारियों से भरी जिंदगी के बीच रेडियो कई लोगों के लिए सुकून का साथी बन जाता है। रेडियो रागिनी 90 वर्षों की कहानी के लिए नर्स जे मेघला ने भी अपने विचार साझा किए हैं।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज जब रेडियो अपने 90 वर्षों की कहानी के सुनहरे सफर का जश्न मना रहा है, तो आइए जानते हैं कि एक नर्स की जिंदगी में रेडियो की क्या अहमियत होती है। मेरा नाम जे मेघला है, मैं CHO पद पर हूँ। मैं सुनामी पर सब सेंटर में पोस्टेड हूँ, जो कि CHC बम्बू फ्लैट के अंदर आता है। अस्पताल की भाग दौड़, मरीजों की देखभाल, रात रात भर जाकर सेवा करना, एक नर्स की जिंदगी आसान नहीं होती। लेकिन इसी थकान भरे सफर में अगर कोई साथी हर पल हौसला देता है तो वो है रेडियो। जब ड्यूटी के लंबे घंटे मन को बोझिल कर देते हैं, तब रेडियो पर बजते मधुर गीत चेहरे पर मुस्कान ले आते हैं। कभी पुराने नगमे दिल को सुकून देते हैं, तो कभी प्रेरणादायक कार्यक्रम नई ऊर्जा भर देते हैं। रेडियो सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि जानकारी और जागरूकता का भी माध्यम है। स्वास्थ्य से जुड़े कार्यक्रम, नई जानकारियाँ और समाज की बातें एक नर्स को अपने काम में और बेहतर बनाने की प्रेरणा देती है। कई बार ऐसा होता है कि अस्पताल के शांत गलियारों में रात की ड्यूटी के दौरान रेडियो की धीमी आवाज अकेलेपन को भी दूर कर देती है। ऐसा लगता है जैसा कोई अपना साथ बैठा हो। आकाशवाणी और रेडियो ने पिछले 90 वर्षों में ना जाने कितने जीवनों को छुआ है, और एक नर्स की जिंदगी में तो एक ऐसे दोस्त की तरह है जो हर मुश्किल घड़ी में हिम्मत देता है, मुस्कान देता है और सेवा के इस सफर को थोड़ा आसान बना देता है। तो आइए रेडियो के इन 90 वर्षों को सलाम करें, क्योंकि ये सिर्फ आवाज नहीं, वो रिश्ता है जो दिल से दिल तक पहुंचता है। धन्यवाद।
0: तो ये थी जे मेघला जी, जिन्होंने रेडियो से अपने भावनात्मक जुड़ाव को हमारे साथ साझा किया और इस 90 वर्षों की खूबसूरत यात्रा को सलाम किया।

0: मिट्टी की खुशबू, खेतों की हरियाली और मेहनत से भरी जिंदगी, इन सब के बीच रेडियो हमेशा किसानों का सच्चा साथी रहा है। रेडियो रागिनी 90 वर्षों की इस विशेष प्रस्तुति में हम अब सुनते हैं अंजना माझी जी के विचार।
1: नमस्कार। हम अंडमान निकोबार के किसान लोग खेतों में मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालते हैं। यहाँ नारियल, सुपारी, केला, सब्जी और मसालों की खेती होती है, लेकिन खेती करना आसान नहीं होता। कभी मौसम बदल जाता है, कभी फसल में बीमारी लग जाती है। ऐसे समय में रेडियो हमारे बहुत काम आता है। रेडियो से हमें मौसम की खबर मिलती है, खेती की नई जानकारी मिलती है और सरकार की योजनाओं के बारे में भी पता चलता है। गांव के बहुत से लोग पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन रेडियो की बात आसानी से समझ में आ जाती है। खेत में काम करते करते भी हम रेडियो सुन लेते हैं। आकाशवाणी ने हमेशा किसानों का साथ दिया है। उसके कार्यक्रम सुनकर हमें नई बातें सीखने को मिलती है। कई बार रेडियो की सलाह से किसानों को अपनी फसल बचाने में मदद मिलती है। इतने सालों में रेडियो लोगों को जोड़ रहा है, सही जानकारी दे रहा है और सबका साथी बना हुआ है। हम यही कहेंगे कि आकाशवाणी आगे भी ऐसा ही किसानों की आवाज़ बनकर हमारे बीच रहे, जैसे पहले साथ दिया वैसे ही आगे भी देता रहे। आकाशवाणी के 90 साल पूरे होने पर बहुत बहुत बधाई।
0: तो श्रोताओं, इन्होंने सरल शब्दों में रेडियो से अपने जुड़ाव की बातें साझा की। रेडियो रागिनी की इस विशेष श्रृंखला में हम आगे भी ऐसी ही दिल से जुड़ी आवाजें आप तक पहुंचाते रहेंगे।

0: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर सूर्य घर।
2: क्यूआर कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।

0: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
1: RBI कहता है
0: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए AFCAT 2 of 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।
3: श्रोताओं, 90 वर्षों की ये यात्रा केवल रेडियो की नहीं बल्कि लाखों श्रोताओं की भावनाओं, यादों और विश्वास की कहानी है। समय बदलता रहा, माध्यम बदलते रहे, लेकिन रेडियो की आवाज़ आज भी दिलों तक उसी अपनेपन के साथ पहुंचती है।

श्रोताओं, 90 वर्षों की ये यात्रा केवल रेडियो की नहीं बल्कि लाखों श्रोताओं की भावनाओं, यादों और विश्वास की कहानी है। समय बदलता रहा, माध्यम बदलते रहे, लेकिन रेडियो की आवाज़ आज भी दिलों तक उसी अपनेपन के साथ पहुंचती है।

श्रोताओं, संगीत, संदेश और मुस्कुराहटों से सजाइए रेडियो का कारवां, यूं ही हर दिल तक पहुंचता रहे, इसी कामना और ढेरों शुभकामनाओं के साथ अब दीजिए इस कार्यक्रम से श्री विद्या को इजाजत। नमस्कार।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखा। पेट्रोल की कीमत में 2.61 रूपये और डीजल में 2.71 रूपये प्रति लीटर की वृद्धि। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 28 मई को होने वाली सीईयूटी स्नातक परीक्षा 2026 स्थगित की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत और अमरीका आतंकवाद के सभी स्वरूपों से लड़ने के लिए तत्पर। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, भारत उन पर विश्वास कर सकता है और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े प्रशंसक हैं। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हराया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री सहित 86 अलंकरण आज दिए जाएंगे। राष्ट्रपति ने वर्ष 2026 के लिए 131 पद्म पुरस्कारों की स्वीकृति दी थी। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री शामिल हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि शेष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे दौर में दिए जाएंगे।
3: इस वर्ष भारत सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है, जिसमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं, जिसकी शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी और प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर इनकी घोषणा की जाती है। ये पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान, इंजीनियरिंग, जनसेवा, व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान के लिए दिए जाते हैं। सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: आकाशवाणी से पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी श्रृंखला के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में प्रतिदिन अलग अलग पद्म पुरस्कार विजेता के जीवन और कृतित्व की जानकारी दी जाती है। कार्यक्रम सवेरे 9:10 से आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने

0: सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखने के विशेष प्रावधान किए हैं। इसका उद्देश्य उनके अधिकारों को पूरी तरह संरक्षित रखना है। श्री शाह ने ये बात नई दिल्ली में कल जनजातीय सांस्कृतिक समागम में कही।
1: नरेंद्र मोदी सरकार के गृह मंत्री नाते स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, यूसीसी की कोई पाबंदी वनवासी जगत पर, वनवासी व्यक्ति पर लगने वाली नहीं। यूसीसी से कोई वनवासी अधिकारों का अतिक्रमण नहीं होने वाला है।
0: गृह मंत्री ने धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की विरासत का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने संदेश दिया था कि वन भूमि पर जनजाति समुदाय का स्वामित्व तो होना चाहिए। श्री शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जनजाति कल्याण के लिए बजट बढ़ाने का काम किया है।
2: नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रकार से जनजाति कल्याण को आगे बढ़ाने का काम किया है। कांग्रेस के जमाने में जनजातियों के कल्याण का कुल बजट 28,000 करोड़ था और नरेंद्र मोदी जी ने उसको 1,50,000 करोड़ तक बढ़ाने का काम।
0: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फालता विधानसभा सीट 1,00,000 से अधिक वोट से जीत ली है। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोट से हराया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान फालता में मतदान में धांधली के बाद निर्वाचन आयोग ने इस सीट पर पुनर्मतदान के आदेश दिए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फालता विधानसभा चुनाव रिकॉर्ड अंतर से जीतने पर देवांशु पांडा को बधाई दी है। पेट्रोल की कीमतों में आज 2.61 रूपये और डीजल में 2.71 रूपये प्रति लीटर की वृद्धि की गई है। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में ये पिछले 2 सप्ताह में चौथी वृद्धि है। अब दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रूपये प्रति लीटर और डीजल 95.20 रूपये प्रति लीटर मिलेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तिथि आगे बढ़ा दी है। एनटीए ने कहा कि बकरीद की तिथि में बदलाव के कारण ये निर्णय लिया गया। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना शीघ्र ही दी जाएगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की स्कैन उत्तर पुस्तिकाओं को प्राप्त करने की अंतिम तिथि आज तक के लिए बढ़ा दी है। बोर्ड ने कहा कि विद्यार्थियों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए ये निर्णय लिया गया। स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख शीघ्र घोषित की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमरीका आतंकवाद के हर रूप का मुकाबला करने को तत्पर हैं। नई दिल्ली में कल अमरीका के 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों को आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर दृढ़ रहना होगा।
5: भारत और अमेरिका आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। आतंकवाद के खिलाफ हमारी कतई बर्दाश्त न करने की नीति रही है। ऐसा इसलिए कि आतंकवाद के खिलाफ आपसी सहयोग बहुत जरूरी है। हमारे संबंधों में आपसी सहयोग की बहुत बड़ी भूमिका है। ये हमारी राजनीतिक समझ को बनाने में सेतु का काम करता है।
0: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को जोखिम से बचाने और विश्व को अधिक विकल्प उपलब्ध कराने में दोनों देशों का हित है। विदेश मंत्री ने कहा कि अनेक स्थितियों में दोनों देशों को विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावी रणनीतिक साझेदार बनाया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में अमरीकी राजदूत सर्जियो गोर को फोन किया। श्री ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा प्रशंसक बताते हुए कहा कि वे भारत से प्रेम करते हैं और भारत उन पर शत प्रतिशत भरोसा करता है।

0: सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने अपने प्रतिनिधियों को ईरान के साथ किसी समझौते में जल्दबाजी नहीं करने को कहा है। 3 महीने से जारी संघर्ष में अमेरिकी प्रशासन ने फिलहाल किसी बड़े समझौते की संभावना से इनकार किया है। श्री ट्रंप ने कहा कि उनके प्रशासन के अंतर्गत ईरान के साथ किसी भी संभावित समझौते में कोई वित्तीय छूट नहीं दी जाएगी।
1: मीडिया के अनुसार विचाराधीन समझौते में 60 दिन के लिए युद्ध विराम बढ़ाना, हॉर्मुज जलडमरू मध्य को फिर खोलना और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आगे की बातचीत शामिल है। हालांकि इस प्रस्ताव को लेकर रिपब्लिकन पार्टी में भी मतभेद हैं। कुछ का कहना है कि प्रस्ताव ईरान के प्रति बहुत नरम रुख अपनाता है। सीनेटर ट्रेड क्रूज ने इसे एक बड़ी गलती बताया है, जबकि सीनेट सशस्त्र सेवा समिति के अध्यक्ष रोजर विकर ने कहा कि 60 दिन का युद्ध विराम ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की उपलब्धियों को निरर्थक कर देगा। विदेश मामलों की समिति के प्रतिनिधि माइक लॉलर ने कहा कि अमेरिकी प्रशासन ईरान को बातचीत करने के लिए विवश करने में सफल रहा है। अमेरिका और इसराइल ने 28 फरवरी को ईरान पर व्यापक हमले शुरू किए थे। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: 5 दिन की वार्षिक हज यात्रा आज से शुरू हो रही है। भारत सहित पूरे विश्व से मुस्लिम समुदाय के 10,60,000 से अधिक लोग मक्का से हज यात्रा शुरू करेंगे और सऊदी अरब के मीना में एकत्र होंगे। इस वर्ष हज में भारत से लगभग 1,75,000 जायरीन भाग ले रहे हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के कई भागों के लिए लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, तटवर्ती आंध्र प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और तेलंगाना में भी भीषण गर्मी का अनुमान है। पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में गर्मी और उमस रहेगी। पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी क्षेत्र, सिक्किम, केरल, माहे, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज वर्षा हो सकती है। जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और लक्षद्वीप में गरज के साथ आंधी और वर्षा का अनुमान है। आईपीएल क्रिकेट के अंतिम लीग मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। कोलकाता में कल दिल्ली कैपिटल्स के 204 रन के लक्ष्य के जवाब में कोलकाता की टीम 163 रन पर सिमट गई। कुलदीप यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। एक अन्य मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से हरा दिया। इसके साथ ही राजस्थान रॉयल्स प्लेऑफ में पहुंचने वाली चौथी टीम बन गई है। पहले क्वालिफायर मुकाबले में कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों को एकीकृत डिजिटल सहायता प्रदान करने की पहल जीवन और शतायु ऐप पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव मोनाली पी ढाकाटे परिचर्चा में भाग लेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद मुकेश। भारत और अमेरिका के विदेश मंत्रियों की बैठक पर हिंदुस्तान की सुर्खी है, हॉर्मुज सबके लिए खुला रहे। विदेश मंत्री जयशंकर और मार्को रूबियो ने बैठक के बाद जताई सहमति। पत्र के अनुसार ईरान बोला, नियंत्रण हमारा ही रहेगा। नवभारत टाइम्स के अनुसार कड़े वीजा नियम पर यूएस ने कहा, भारत टारगेट नहीं। जनसत्ता लिखता है, भारत अमेरिका व्यापार समझौता को जल्द अंतिम रूप मिलेगा। पंजाब केसरी ने डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से दिया है, 60 दिन के सीज फायर पर लगभग सहमति, हॉर्मुज जल डमरू मध्य खोला जाएगा। ईरान यूरेनियम प्रोग्राम छोड़ने को तैयार, फिजिशियन बोले, हम परमाणु हथियार नहीं चाहते। नवभारत टाइम्स ने सबसे बड़ी राहत शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, अमरीका और ईरान के बीच हॉर्मुज खोलने के लिए सैद्वांतिक सहमति बनना पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी राहत है। हालांकि ईरान के पास मौजूद एनरिच्ड यूरेनियम समेत कुछ संवेदनशील मुद्दों पर अभी सहमति नहीं बन पाई है, फिर भी संकेत बताते हैं कि दोनों पक्ष इस बार मामले को सुलझाने के लिए गंभीर हैं। लोकसत्ता ने ऐतिहासिक जीत शीर्षक से लिखा है, पश्चिम बंगाल में ममता का आखिरी किला ढहा, फालता में भाजपा की 1,00,000 वोटों से विजय। दैनिक जागरण ने घुसपैठियों की वापसी शीर्षक से लिखा है, ये अच्छा है कि पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार पहले दिन से ही राज्य के हालात सुधारने वाले ठोस फैसले लगातार ले रही है। ऐसे समय की मांग भी है क्योंकि ममता बनर्जी ने 15 साल के शासन में राज्य को पटरी से उतारने का काम किया था। देशबंधु की सुर्खी है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ट्रेन विस्फोट, 30 की मौत, 100 से अधिक घायल, प्रतिबंधित अलगाववादी संगठन बीएलए ने ली हमले की जिम्मेदारी।

0: राजस्थान पत्रिका ने विडंबना शीर्षक से लिखा है, फीस से ज्यादा स्कूल आने जाने और किताब यूनिफॉर्म का खर्च, कई राज्यों में स्कूल ट्रांसपोर्ट सबसे बड़ा बोझ, आंकड़े बता रहे हैं कहां है सुधार की जरूरत। दैनिक भास्कर ने सीबीएसई द्वारा री एवल्यूशन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 25 मई करने की खबर मुख्य पृष्ठ पर दी है। पत्र के अनुसार स्कैन कॉपी आने के बाद 2 दिन और मिलेंगे। अमर उजाला की सुर्खी है, नौतपा आज से शुरू, कई राज्यों में पारा 46 डिग्री के पार, शुक्रवार तक राहत नहीं, उत्तर प्रदेश में लू और आंधी की दोहरी मार, 46.8 डिग्री के साथ बांदा सबसे गर्म।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखा। पेट्रोल की कीमत में 2.61 रूपये और डीजल में 2.71 रूपये प्रति लीटर की वृद्धि। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 28 मई को होने वाली सीयूईटी स्नातक परीक्षा 2026 स्थगित की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत और अमरीका आतंकवाद के सभी स्वरूपों से मुकाबले के लिए तत्पर। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े प्रशंसक हैं और भारत उन पर पूरी तरह विश्वास कर सकता है। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस: President Draupadi Murmu to present Padma Awards at Rashtrapati Bhavan in New Delhi today. Union Home Minister Amit Shah says government has excluded all tribal communities from ambit of Uniform Civil Code. Petrol price hiked by 2.61 rupees per litre, while that of diesel by 2.71 rupees per litre. National Testing Agency postpones CUET UG 2026 examinations scheduled for the 28th of this month. External Affairs Minister S. Jaishankar says India and US have strong interest in combating terrorism in all its forms and manifestations. US President Donald Trump says India can trust on him, also says he's a big fan of Prime Minister Modi. And in IPL cricket, Delhi Capitals beat Kolkata Knight Riders by 40 runs at Eden Gardens in Kolkata. President Draupadi Murmu will present the Padma Awards at the first civil investiture ceremony at Rashtrapati Bhavan this evening. Padma Awards, one of the highest civilian awards of the country, are conferred in three categories: Padma Vibhushan, Padma Bhushan and Padma Shri. In the first civil investiture ceremony of 2026 today, the President will confer 66 Padma Awards, including 2 Padma Vibhushan, 6 Padma Bhushan and 58 Padma Shri. The remaining Padma Awards will be given in the second round of the civil investiture ceremony to be held later. We have a report.
3: This year, the government has announced a total of 131 Padma Awards. These include 5 Padma Vibhushan, 13 Padma Bhushan and 113 Padma Shri Awards. Among the awardees, 19 are women, while 16 individuals will be awarded posthumously. The Padma Awards, namely Padma Vibhushan, Padma Bhushan and Padma Shri, are amongst the highest civilian awards of the country. Instituted in the year 1954, these awards are announced on the occasion of Republic Day every year. The award seeks to recognize work of distinction and is given for distinguished and exceptional achievements in various fields and disciplines, including art, literature, education, sports, medicine, social work, science and engineering, public affairs and trade and industry. Priya Mondal, Akashwani News, Delhi.
2: News Services Division of Akashwani will broadcast special programs as part of a series, People's Padma, on Akashwani.
4: We launched an environmental protection movement, forest conservation, for about 6 years together. Because the importance of Darjeeling Hill Forest had hardly been known.
5: मेरा शोध विशेष रूप से इस क्षेत्र में रहा, जिसमें पत्ती के झुलसा और झोंका रोग के लिए रोगरोधी किस्मों का विकास मैंने किया।
6: फिर हम गुरुजी के पास आ गए, उन्होंने फिर हमें गांव में सत्संग करने के लिए लगा दिया कि नशे के खिलाफ हर गांव में जाइए, तो हम इस अभियान में जुट गए।
2: In these episodes, we provide listeners insights into the work and life of Padma awardees. To listen to the episodes, tune into 100.1 Akashwani Gold today from 9:10 a.m. onwards. It can also be heard on News on AIR app and News on AIR official YouTube channel. Union Home Minister Amit

हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सुबह की 9 बजे हैं और अब लीजिए सुनिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम तराने सुहाने। कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है फिल्म डॉन से। आवाज है आशा भोसले की। इंदीवर के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया कल्याण जी आनंद जी ने।

सुगम संगीत के कार्यक्रम के तहत आज के कलाकार थे पिनाज मसानी और मोहम्मद अजीज। श्रोताओं, इसी के साथ ही कार्यक्रम सुगम संगीत अब यहीं समाप्त होता है।

श्रोताओं, अब हम आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म बेमिसाल का एक गीत, बोल आनंद बख्शी की व धुन तैयार की आर डी बर्मन ने।

श्रोताओं, अब प्रस्तुत है आनंद बख्शी की लिखी एक गीत रचना, जिसे संगीत से सजाया लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ने। फिल्म का नाम है कूली और आवाजें शब्बीर कुमार और अनुराधा पौडवाल की है।

0: श्रोताओं, इस समय आप आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से सुन रहे हैं कार्यक्रम तराने सुहाने। समय बता दें आपको, इस समय सुबह के 9:15 हुए हैं। अब कार्यक्रम में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
1: नमस्ते कविता, अच्छा लगा कि आप आयुष्मान आरोग्य मंदिर में सर्विकल कैंसर की जांच के लिए आईं।
2: अरे दीदी, मेरी बेटी ने मुझे प्रोत्साहित किया।
1: आपकी बेटी तो बहुत समझदार है। बेटा, तुम कितने साल की हो?
3: मैं 14 साल की हूँ।
1: अब आपको अपनी बेटी को सर्विकल कैंसर से बचाने के लिए टीका लगवाने लाना होगा।
2: क्या कैंसर के लिए भी टीका होता है?
1: हाँ, ये एक ऐसा कैंसर है जिससे HPV की वैक्सीन के जरिए बचाव किया जा सकता है।
2: धन्यवाद दीदी।
4: जरूर, अपनी बेटी को HPV का टीका लगवाने के लिए वैक्सीन पोर्टल UWIN पर रजिस्टर करना मत भूलना।
5: भारत सरकार ने सर्विकल कैंसर से बचाव के लिए 14 साल की लड़कियों के टीकाकरण को सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर निशुल्क उपलब्ध किया है। आज ही www.uvin.mohfw.gov.in पे जाके HPV वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर करवाएं। ये संदेश भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
6: It's raining offers on the new age Baleno this season. Upgrade to the bold and techie new age Baleno and get amazing benefits, easy finance options and incredible exchange deals. Rush to your nearest Nexa showroom today and take home the new age Baleno with amazing offers and a 1 lakh kilometer or 3-year warranty. TNC apply.

किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में लीजिए सुनिए कस्मे वादे फिल्म का एक गीत। आर डी बर्मन के संगीत निर्देशन में तैयार इस गीत को लिखा गुलशन बावरा ने।

शर्मो हया का पर्दा दुश्वार नहीं है, अजी हल्का सा एक पर्दा है, दीवार नहीं है।

हम वो हैं जिंदगी में कभी साथ न छोड़ेंगे, थामेंगे अगर हाथ तो फिर हाथ न छोड़ेंगे।

कार्यक्रम के आखिर में आपने सुना किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी और मुकेश की आवाज़ों में फिल्म अमर अकबर एंथोनी का ये गीत, और इसी के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम तराने सुहाने अब यहीं समाप्त होता है।

हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सवेरे के 9:30 हुए हैं। शास्त्रीय संगीत इस कार्यक्रम के तहत आज हम आपको परवीन सुल्ताना का हिंदुस्तानी शैली में गायन सुनवा रहे हैं। इनके साथ तबले पर निज़ामुद्दीन खान और हारमोनियम पर संताराम जाधव ने संगति की है। तो आइए सुनते हैं परवीन सुल्ताना का हिंदुस्तानी शैली में गाया राग रंजनी कल्याण।

Mama,

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप हिंदुस्तानी शैली में परवीन सुल्ताना का गायन सुन रहे थे।
1: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
2: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
3: RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सवेरे के 10 बजे हैं। अब प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गाता चल। कार्यक्रम का आगाज हम कर रहे हैं प्यार इम्पॉसिबल इस फिल्म के शीर्षक गीत से। इस गीत को गाया है डोमिनिक सर्जियो और विशाल ददलानी ने।

आइए अब सुनते हैं ऐश किंग और सुनिधि चौहान की आवाज़ों में दम मारो दम। इस फिल्म का ये गीत बोल जयदीप शाहनी के हैं, वधुन बनाई है प्रीतम ने।

अभी आप जावेद अली और साथियों को सुन रहे थे। फिल्म का नाम था दे दना दिन। अब पेश है समीर का लिखा एवं सचिन जिगर का संगीतबद्ध किया हुआ ये गीत नीरज श्रीधर की आवाज़ में। फिल्म का नाम है फालतू।

बैंड बाजा बारात। आइए अब सुनते हैं इस फिल्म का ये गीत। इस गीत को सुरों में पिरोया है अमिताभ भट्टाचार्य और सलीम मर्चेंट ने। अमिताभ भट्टाचार्य के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है सलीम सुलेमान ने।

मिथुन के संगीत निर्देशन में तैयार, लीजिए अब सुनिए वजह तुम हो। इस फिल्म का ये गीत मिथुन, अमिताभ, अल्तमश फरीदी और तुलसी कुमार की आवाज़ों में बोल मनोज मुंतशिर के हैं।

अब पेश है मनोज मुंतशिर का लिखा एवं राजेश रोशन का संगीतबद्ध किया हुआ ये गीत, जुबिन नौटियाल की आवाज़ में। फिल्म का नाम है काबिल।

जॉली LLB 2। आइए अब सुनते हैं इस फिल्म का ये गीत। इस गीत को सुरों में पिरोया है जुबिन नौटियाल और नीति मोहन ने। जुनैद वासी के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है चिरंतन भट्ट ने।

अभी आप अरिजीत सिंह को सुन रहे थे, फिल्म का नाम था दंगल। और अब आइए सुनते हैं ओके जानू। इस फिल्म का ये गीत अरिजीत सिंह की आवाज़ में, बोल गुलजार के हैं, वधुन बनाई है AR रहमान ने।

पेश है आतिश कपाड़िया का लिखा एवं मनन शाह का संगीतबद्ध किया हुआ ये गीत अरमान मलिक की आवाज़ में। फिल्म का नाम है कमांडो 2।

सत्यमेव जयते टू। आइए आप सुनते हैं इस फिल्म का ये गीत। इस गीत को सुरों में पिरोया है जुबिन नौटियाल और नीति मोहन ने।

इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गाता चल अब यहीं पर समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय दिन के 11 बजे हैं। अब प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की 1291 कड़ी।

0: खैरागढ़ राज लालपुर छत्तीसगढ़ से मोतीलाल भीमटे और सुशीला भीमटे जी ने लिखा है,
1: आपका उमंग कार्यक्रम मुझे बेहद उपयोगी, ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद लगता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से नई नई जानकारी मिलती है जो काफी लाभदायक सिद्ध हो रही है। साथ ही साथ गीत संगीत से कार्यक्रम की रोचकता बनी रहती है। आप सभी की अथक मेहनत, लगनशीलता और अनुपम प्रस्तुति को हम दिल से नमन करते हैं। इस कार्यक्रम का प्रसारण यूं ही बरकरार रहे।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेश के लिए। गांव गणेश धाम परसूली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जय दास, देवेश दास, धर्मंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी जी ने लिखा है। सप्रेम अजीत साहेब और विमलेश मैडम जी, वंदगी जी आगे लिखते हैं।
1: अजीत साहेब जी का कार्यक्रम आप दोनों के साथ शुरुआत होता है और बहुत शानदार रहता है। इस सप्ताह विमलेश मैडम कोई भी कार्यक्रम में नहीं आया। आप दोनों का वाणी विचार इस कार्यक्रम को और खूबसूरत बनाता है। आप दोनों का स्नेह श्रोताओं को मिलता रहे। 30 अप्रैल 2026 को एक टोकरी मिट्टी कहानी सुनने को मिला, बहुत प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद लगा। दिल से धन्यवाद।
0: आपको भी दिल से धन्यवाद। अगला संदेश हमें मिला है केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास जी का।
1: हिंगोली महाराष्ट्र से साहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे, हनुमान बोड़खे और उत्तम जमदाड़े।
0: और साथ ही साथ खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का संदेश हमें मिला है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं, संदेश लगातार भेजने के लिए आपसे निवेदन है। इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे और आपके उमंग कार्यक्रम से। आइए अब जानते हैं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। तो हमारा पहला प्रश्न था, पीसा की मीनार कहाँ है और ये तिरछी क्यों है?
1: इसका उत्तर है, पीसा की मीनार इटली में स्थित है। इसकी नींव नरम और दलदली मिट्टी पर बनी हुई थी। इसकी मिट्टी कम गहरी है। जब इसे और ऊंचा बनाया गया तो ये धीरे धीरे तिरछी होनी शुरू हो गई।
0: जी, और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न था, अधिकांश वर्षा वन पृथ्वी के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं?
1: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। अधिकांश वर्षा वन भूमध्य रेखा के आसपास पाए जाते हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों में गर्मी बहुत पड़ने की वजह से वर्षा भी खूब होती है।
0: और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमने आपसे पूछा था, अमेजन वर्षा वन के क्षेत्र में अमेजन नदी पर पुल क्यों नहीं बनाए जाते हैं?
1: अमेजन क्षेत्र में भारी वर्षा होने के कारण अक्सर अमेजन नदी अपना तटबंध बदलती रहती है, इसलिए निश्चित करना बहुत कठिन हो जाता है कि पुल कहाँ से कहाँ तक बनाया जाए।
0: जी, और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न जो हमने आपसे पूछा था। हमारा प्रश्न था, मातृवृक्ष किसे कहते हैं?
1: इसका उत्तर है साथियों, मातृवृक्ष उन पेड़ों को कहा जाता है जो बहुत पुराने और बड़े होते हैं। उनकी जड़ें जमीन पर दूर दूर तक फैली हुई होती हैं। वे छोटे पेड़ पौधों को अपनी जड़ों से पोषण देते हैं।
0: और श्रोताओं, अब सुनिए हमारा अंतिम प्रश्न। हमारा अंतिम प्रश्न था, साधारण पेड़ खारे पानी में मर जाते हैं लेकिन मैंग्रोव वन के पौधे खारे पानी में भी जीवित रह पाते हैं, ऐसा क्यों?
1: इसका उत्तर भी बड़ा अनोखा है साथियों। मैंग्रोव वनों के पेड़ों की पत्तियां खारे पानी के नमक को छानकर निकाल देती हैं और उन्हें मीठे पानी में बदल देती हैं, जिसके कारण वहां के पेड़ खारे पानी में भी जीवित रहते हैं। ये प्रकृति का अद्भुत चमत्कार है।
0: तो श्रोताओ, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। तो प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से बने रहिए उमंग कार्यक्रम के साथ। जरूर बताइएगा कि आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है। तो आप सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है,
1: दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कहाँ पर है?
0: प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कहाँ पर है?
0: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। आप हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश और पत्रों के उत्तर भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIT NCERT को जरूर फॉलो करें। इससे आपको हमारी गतिविधियों की जानकारी मिलती रहेगी।
0: और श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो हमारा पहला कार्यक्रम है, शेर और चूहे की दोस्ती।
2: शेर मतवाली चाल से चला जा रहा था। अचानक उसे एक हल्की सी चीख सुनाई दी। एक चूहे की पूंछ उसके पंजे के नीचे आ गई थी।

0: सबदंग।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार।
2: कस्बा बराड़ा, जिला अम्बाला, हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, नूर, नमन, सिमरत, गुरकीरत राहुल, गुरु शब्द सिंह जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
3: जीवन में सवाल करने वाले तो बहुत मिलते हैं, लेकिन बिना सवाल किए ख्याल रखने वाले मुश्किल से मिलते हैं। सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नज़र का इलाज तो मुमकिन है, लेकिन नजरिए का इलाज आसान नहीं है।
2: जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले और श्रोताओं के नाम हैं।

0: आप तो जंगल के राजा हैं, मुझे छोड़ दीजिए। देखना एक दिन मैं आपके काम जरूर आऊंगा। हाँ, छोड़ दीजिए।
1: मेरे काम आओगे? ये छोटा सा चूहा, ये

0: अब मेरे क्या काम आएगा। ठीक है ठीक है, जाओ तुम्हें आजाद किया, जाओ।
1: धन्यवाद महाराज, पर एक दिन मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। हाँ, मदद करूंगा।
2: शेर ने अपना पैर हटाया, चूहा फुदक कर झाड़ियों में चला गया।

एक दिन शिकारी ने शिकार पकड़ने के लिए जाल बिछाया। उस जाल में शेर फंस गया। वो जोर जोर से दहाड़ने लगा।

0: जंगल में रहने वाले हाथी, भालू, हिरण, खरगोश, लोमड़ी, बंदर और अजगर समेत सभी पशु पक्षियों ने दहाड़ सुनी, पर कोई भी शेर की सहायता को नहीं आया।
1: ये कहां फंस गया मैं? अरे कोई तो मेरी मदद करो, मैं जाल में फंस गया हूं, निकालो मुझे यहां से।
0: हाँ, चूहा जरूर भागा भागा वहां आया।
2: अरे महाराज, आप यहाँ? लेकिन आप चिंता ना करें, मैं आपको अभी इस जाल से आजाद कर देता हूँ।
0: वो अपने पहने दांतों से जल्दी जल्दी जाल कुतरने लगा। कुछ ही पल में सारा जाल कट गया और शेर आजाद हो गया।
1: धन्यवाद, धन्यवाद मेरे नन्हे दोस्त, धन्यवाद
2: महाराज।
3: तो साथियों, सुना आपने, हम जिनसे आशा भी नहीं करते वे भी हमारे बहुत बड़े सहायक सिद्ध हो सकते हैं, है ना? तो इसलिए हमें सबका सम्मान करना चाहिए। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शेर और चूहे की दोस्ती। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, कलाकार बाबला कोचर, मुइनुल हसन नियाजी और परवेज गौहर, ध्वन्यांकन मयंक कुमार, निर्माण सहयोग मीनाक्षी कुकरेती, मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शेर और चूहे की दोस्ती।

0: दीक्षा शिक्षा की डिजिटल आधारिक संरचना, पीएम ई विद्या कार्यक्रम और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत एनसीईआरटी शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की एक पहल। दीक्षा दीक्षा।
1: और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। हमारा अगला कार्यक्रम है
2: अर्देशीर बुड़जोड़जी तारापुर। ये कार्यक्रम परमवीर चक्र विजेता भारतीय सेना के जांबाज कर्नल अर्देशीर बुड़जोड़जी तारापुर के जीवन और भारत पाक युद्ध के दौरान उनके अप्रतिम शौर्य और रण कौशल के प्रदर्शन की जानकारी देता है।

0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है श्रृंखला वीर गाथा। इस श्रृंखला में सुनते हैं कार्यक्रम लेफ्टिनेंट कर्नल अर्देशीर बुरजोरजी तारापोर।
1: भारत भूमि की जितनी वंदना की जाए कम है। कुछ तो ऐसा जरूर है इसकी माटी में जो अनगिनत प्रतिभाओं, वीरांगनाओं, वीरों, कलाकारों, मेधावियों और योद्धाओं को पैदा करती है।
2: आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भारत माता के सपूत और पराक्रमी सैन्य योद्धा अर्देशीर बुरजोरजी तारापोर के बारे में, जिन्होंने सन 1900

0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है श्रृंखला वीर गाथा। इस श्रृंखला में सुनते हैं कार्यक्रम लेफ्टिनेंट कर्नल अर्देशीर बुरजोरजी तारापोर।
1: भारत भूमि की जितनी वंदना की जाए कम है। कुछ तो ऐसा जरूर है इसकी माटी में जो अनगिनत प्रतिभाओं, वीरांगनाओं, वीरों, कलाकारों, मेधावियों और योद्धाओं को पैदा करती है।
2: आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भारत माता के सपूत और पराक्रमी सैन्य योद्धा अर्देशीर बुरजोरजी तारापोर के बारे में, जिन्होंने सन 1915

0: एक बार की बात है, उनकी यूनिट में हथगोला फेंकने का प्रशिक्षण चल रहा था।
1: जवानों,
2: जी सर।
1: हथगोला फेंकने के लिए बहुत अभ्यास की जरूरत होती है। जितना अधिक अभ्यास आप करेंगे, उतना ही सटीक आपका निशाना होगा।
2: जी सर, हमने सुना है कि यदि हथगोले को ठीक से नहीं फेंका गया तो।
1: तुमने ठीक सुना है, यदि इसे ठीक से नहीं फेंका गया तो यह जानलेवा हो सकता है। अच्छा चलो, अब अभ्यास शुरू करते हैं।
3: जी सर।
1: ध्यान रहे, जब आप गोला फेंकते समय अपने हाथ को घुमाते हैं तो गोले को सही समय पर फेंकिए। चलो राम सिंह, तुमसे शुरू करते हैं।
3: जी जनाब।
1: हथगोला हाथ में लो।
3: ले लिया जनाब।
1: अब पिन रिलीज करो।
4: फेंको।
3: फेंका जनाब।
4: अरे अरे, ये क्या हुआ?
5: ये क्या हुआ?
6: अरे बच्चों बच्चों बच्चों,
7: फट जाओ,
6: सभी जाओ, पीछे हटो,
7: जमीन पर लेट जाओ,
6: वहाँ निकल जाओ, तू वहाँ निकल
8: जाओ। साथियों, हुआ ये था कि वो सैनिक ग्रेनेड ठीक से नहीं फेंक सका और ग्रेनेड वापस अभ्यास स्थल पर ही आ गिरा।
0: कि तभी आदि तत्काल उठे, बिजली की सी गति से उस ग्रेनेड के पास पहुंचे।
3: ये आदि क्या कर रहा है?
0: और उसे उठाकर सुरक्षित दूरी पर फेंक दिया। हालांकि इसमें वो थोड़े घायल भी हुए।
9: वाह आदि, तुमने तो कमाल कर दिया।
3: तुमने साहस ना दिखाया होता तो शायद बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती आदि।
10: सही में
3: बहादुर सैनिक हो तुम। हाँ।
8: घटना स्थल पर मेजर जनरल एल एंड्रयूज भी उपस्थित थे। वो आदि की सजगता, बहादुरी और निर्णय कुशलता से बहुत प्रभावित हुए। अभ्यास सत्र के समाप्त होने पर मेजर जनरल एल एंड्रयूज ने आदि को अपने कार्यालय में बुलवाया।
11: May I come in, sir?
9: Yes, come in.
11: Sir.
9: जवान, मैं तुम्हारी बहादुरी पर तुम्हें शाबाशी देना चाहता हूँ। तुम एक सच्चे सिपाही हो।
11: सर।
9: Well done, Eddie. तुम बहुत आगे जाओगे। ट्रेनिंग में खूब मन लगाओ।
11: Thank you, sir. Sir, क्या मैं एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ?
9: हाँ हाँ, कहो।
11: मुझे लगता है कि किसी आर्मर्ड रेजिमेंट में मैं और ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगा।
9: ओके ओके, तुम हैदराबाद इंपीरियल सर्विस लांसर्स ज्वाइन करने की तैयारी करो। शाम तक तुम्हें ऑर्डर्स मिल जाएंगे।
11: थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।
9: गो अहेड यंग मैन।
11: सर।
8: दूसरे ही दिन आदि का तबादला हैदराबाद इंपीरियल सर्विस लांसर्स में हो गया। ये उनके लिए ऐसा था मानो कोई बहुत बड़ा सपना पूरा हो गया हो। अपनी कर्मठता, अनुशासन प्रियता और विनम्रता के कारण वो लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर पहुंच गए। रेजिमेंट में उन्हें लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर के नाम से जाना जाता था।
0: भारत आजाद हो गया और हैदराबाद राज्य का भारतीय संघ में विलय हो गया। इसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल तारापुर की पोस्टिंग पूना हॉर्स रेजिमेंट में हो गई। पूना हॉर्स रेजिमेंट को उसके रण कौशल और बहादुरी के लिए बड़े सम्मान से जाना जाता है।
8: और फिर आया सन 1965। भारत की पश्चिमी सीमा पर युद्ध के बादल मंडराने लगे। 27 अगस्त 1965 को भारत और पाकिस्तान के बीच भीषण युद्ध शुरू हो गया। पूना हॉर्स रेजिमेंट को फौरन भारत पाकिस्तान सीमा की ओर कूच करने का आदेश दिया गया।
0: लेफ्टिनेंट कर्नल तारापुर को निर्देश दिया गया कि वो पंजाब के सियालकोट सेक्टर के चौविंडा इलाके पर नियंत्रण करें। 13 सितंबर 1965 को भीषण युद्ध शुरू हुआ।
3: साथियों, ये खास तौर पर ध्यान रखा जाए कि इस युद्ध में हमारी ओर से जन सामान्य को किसी तरह की हानि न पहुंचे। ये युद्ध दो सेनाओं के बीच में है।

0: सर।
1: हम पूरा ध्यान रखेंगे।
0: हमें अचानक हमला करना है ताकि दुश्मन को तैयार होने का भी मौका न मिले। आज रात होते ही हमारे सारे टैंक बिना कहीं रुके उनकी सीमा के अंदर घुसेंगे। और इस बीच याद रहे, इस बीच वायरलेस पर कोई मैसेज नहीं जाएगा।
2: जी जनाब।
3: सर, सुबह होने को है, जल्द ही उजाला हो जाएगा। हमारे सारे टैंक उन घने पेड़ों के पीछे पहुंच चुके हैं।
0: अब समय आ गया है हमला करने का। हमारे टैंक तीन दिशाओं से दुश्मन की ओर बढ़ेंगे ताकि उनका ध्यान बट जाए, और मैं खुद अपने टैंक पर रहूंगा।
1: जी सर, हम आपके टैंक को खबर देंगे। सर वो देखिए, सामने से दुश्मन के टैंक आ रहे हैं।
0: लगता है उन्होंने हमें देख लिया है। टैंक को आगे बढ़ाओ प्रेमलाल, और जस्ट द गन निशाना लगाओ उस तीसरे टैंक पर।
1: यस सर, वो टैंक निशाने पर आ गया है सर।
0: फायर।
1: सर ये टैंक तो गया।
0: गुड, तो अब निशाना लगाओ उस टैंक पर, बहुत स्पीड में है। जल्दी करो प्रेमलाल, फायर, समय मत गवाओ, फायर।
1: सर ये टैंक तो गया।
0: गुड, शाबाश शाबाश प्रेमलाल, अब हमें बिना रुके उन दो टैंकों पर फायर करना है। गो एंड सेंड देम टू हेल, फायर।
1: यस सर।
4: उस दिन टैंकों का भीषण युद्ध हुआ जिसमें दुश्मन के 13 टैंक ध्वस्त कर दिए गए, जिसके कारण पाकिस्तानी सेना की आक्रमण करने की क्षमता लगभग समाप्त हो गई और वो चौबिंडा छोड़कर चली गई।
5: इस तरह चौबिंडा क्षेत्र पर भारत का अधिकार हो गया। अब लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर के नेतृत्व में सेना बुटूर और डोगरांडी की ओर आगे बढ़ी, और अब समय आ गया था लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर के शौर्य के चरमोत्कर्ष का। बुटूर और डोगरांडी के अलावा उन्हें वजीराली और जसोरन क्षेत्र पर भी कब्जा करना था ताकि पाकिस्तानी सेना को निर्णयात्मक रूप से पराजय दी जा सके।
4: सितंबर 1965 का दिन। उधर पाकिस्तानी सेना भी युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार थी। जीवन मरण की स्थिति सामने थी। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर ने अपनी रेजिमेंट के साथ पूरी शक्ति से हमला किया और बहुत बहादुरी से लड़े। उस दिन उन्होंने दुश्मन के 60 पैटन टैंकों को ध्वस्त कर दिया। भारत के भी 9 टैंक ध्वस्त हुए।

0: युद्ध अब पूरी तरह से भारत के पक्ष में आ चुका था।
1: कुछ देर युद्ध स्थल पर मानो शांति सी छा गई थी। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापुर अपने प्रिय टैंक खुशाब पर खड़े होकर चाय का घूंट ले रहे थे कि तभी
0: पेड़ों की झुरमुट में छिपे पाकिस्तानी सैनिकों ने उनके टैंक पर तोप से आक्रमण किया। इस टैंक पर पाकिस्तानी सेना की विशेष नजर थी। गोला लगते ही उनका टैंक खुशाब आग की लपटों से घिर गया। तारापोर को आग की लपटें निकल गईं और वो सदा के लिए चिर निद्रा में सो गए।
1: आंसुओं के साथ सैनिकों ने अपने नायक को विदाई दी।
0: मरणोपरांत उन्हें प्रदान किए गए प्रशस्ति पत्र में उनकी शौर्य गाथा के कुछ अंश इस

0: कार हैं।
1: युद्ध में आहत होने पर भी उन्होंने पीछे ले जाए जाने से इनकार कर दिया। घातक रूप से आहत होने पर भी उन्होंने अपनी चोटों की चिंता नहीं की। उनके टैंक पर अनेक वार हुए, किंतु वो डटे रहे और केवल 9 टैंक खोकर दुश्मन के 60 टैंक ध्वस्त कर दिए। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर द्वारा प्रदर्शित शौर्य भारतीय सेना की उच्चतम परंपराओं के अनुरूप था।
0: लेफ्टिनेंट कर्नल अर्धशीर बुरजोर जी तारापोर को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च युद्ध शौर्य पदक परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। कृतज्ञ राष्ट्र का उन्हें शत शत नमन।
2: लेफ्टिनेंट कर्नल अर्धशीर बुरजोर जी तारापोर।
3: अकादमिक समन्वय डॉक्टर राजेंद्र पाल। तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो। कलाकार बावला कोचर, शिमाइला परवेज, परवेज गौहर, किशोर साहिजानी और असर नवाज उस्मानी। ध्वनियांकन मयंक कुमार। आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो। निर्देशन विमलेश चौधरी। निर्माण कुसुमलता। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।
2: अभी आपने सुना ये कार्यक्रम और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
4: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
5: उमंग उमंग उमंग उमंग।
6: अभी आप प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की 1291 कड़ी सुन रहे थे।

हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय दिन के 11:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही कलाकार। इस कार्यक्रम के तहत आज हम आपको लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में तैयार चंद गीत सुनवा रहे हैं। श्रोताओं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हिंदी फिल्म संगीत के इतिहास के सबसे सफल और लोकप्रिय संगीतकार जोड़ी हैं। इस जोड़ी ने लगभग 600 से अधिक फिल्मों में शानदार संगीत दिए हैं। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इनके संगीत निर्देशन में तैयार फिल्म चालबाज का ये गीत। आवाजें दी हैं मोहम्मद अजीज और कविता कृष्णमूर्ति ने।

श्रोताओं, लक्ष्मीकांत और प्यारेलाल दोनों ही 1950 के दशक में मशहूर संगीतकार जोड़ी हुसनेलाल भगतराम और अन्य निर्देशकों के साथ सहायक के रूप में काम करते थे। इसी दौरान एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो में दोनों की मुलाकात हुई और गहरी दोस्ती हो गई। उन्होंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल नाम से जोड़ी बनाई और 1963 में फिल्म पारस मनी से स्वतंत्र संगीतकार के रूप में अपने सफर की शुरुआत की। आइए अब सुनते हैं अमित कुमार और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ों में फिल्म जमाई राजा का ये गीत।

श्रोताओं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल इस जोड़ी ने 1960 के दशक से लेकर 1990 के दशक तक बॉक्स ऑफिस पर राज किया है। प्यारेलाल वायलिन और अन्य वाद्य यंत्रों को संभालने में मशहूर थे, तो वहीं लक्ष्मीकांत धुनों को तराशने और गीत चयन में उत्कृष्ट थे। आइए अब सुनते हैं फिल्म नागिन का ये गीत। इस गीत को गाया है आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी ने।

श्रोताओं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामांकित किए जाने के बाद इस दिग्गज संगीतकार जोड़ी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपने करियर में उन्होंने लगभग 635 फिल्मों के लिए संगीत तैयार किए और कई प्रमुख फिल्मों निर्माताओं के साथ काम किए। आइए अब सुनते हैं मनहर और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ों में फिल्म रामलखन का ये गीत।

श्रोताओं, और अब अंत में सुनते हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में तैयार फिल्म खलनायक का ये गीत। और इस गीत को गाया है अलका याग्निक और साथियों ने।

0: श्रोताओं, अभी आप एक ही कलाकार कार्यक्रम के तहत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में तैयार चंद गीतों का आनंद ले रहे थे। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 12 बजे हैं। अब प्रस्तुत है तेलुगु कार्यक्रम।
1: आकाशवाणी श्री विजयपुरम केंद्रम प्रियमैन श्रोतलकु नमस्कारम।

0: अभी आप तेलुगु कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय दोपहर के 12:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए मलयालम कार्यक्रम।
1: മീഡിയം വേവ് 438.6 meter അഥവാ 684 kHz ൽ ഇത് ആകാശവാണി ശ്രീ വിജയപുരം നിലയം.

अभी आप मलयालम कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 1 बजने वाले हैं। अब से थोड़ी ही देर में समाचारों का प्रसारण हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

समाचार के साथ मैं कनकलता। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट परीक्षा में बार बार हो रही चूक पर चिंता जताते हुए कहा कि यह खेदजनक है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनटीए ने पिछले पेपर लीक विवाद से कोई सबक नहीं सीखा है। न्यायाधीश पीएम नरसिम्हा और आलोक आराधे की पीठ ने केंद्र सरकार, राष्ट्रीय जांच एजेंसी और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से उन याचिकाओं पर जवाब मांगा है जिनमें मेडिकल प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए जांच एजेंसी की जगह किसी सशक्त और स्वायत्त संस्था को लाने की मांग की गई है। न्यायालय ने एजेंसी को बृहस्पतिवार तक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि बार बार पेपर लीक होने से 22 लाख से ज्यादा छात्रों के अधिकारों पर असर पड़ा है। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के बाद रद्द कर दी गई थी। एनटीए ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तारीख आगे बढ़ा दी है। एजेंसी ने कहा कि बकरीद की तिथि में बदलाव के कारण यह निर्णय लिया गया है। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना जल्द ही दी जाएगी। ताजा जानकारी के लिए विद्यार्थी एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं की बोर्ड परीक्षा की स्कैन उत्तर पुस्तिकाओं को प्राप्त करने की आज अंतिम तिथि है। बोर्ड ने कहा कि विद्यार्थियों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए यह तारीख बढ़ाई गई थी। स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख जल्द घोषित की जाएगी।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री सहित 66 अलंकरण आज दिए जाएंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि शेष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे चरण में प्रदान किए जाएंगे।
1: सरकार ने इस वर्ष कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। इन पुरस्कारों की शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी। प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस पर इन पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान, अभियांत्रिकी, जनसेवा, व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान के लिए ये पुरस्कार दिए जाते हैं। सौम्या शरण की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
0: क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि बैठक में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने वाली पहलों की प्रगति की समीक्षा करने और आपसी हित के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के क्वाड समूह का प्रमुख उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता कायम करना है। पेट्रोल के मूल्य में आज 2.61 रूपये और डीजल में 2.71 रूपये की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में अब पेट्रोल 102.12 रूपये और डीजल 95.20 रूपये प्रति लीटर मिलेगा। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में पिछले 2 सप्ताह में ये चौथी वृद्धि है। सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल उस मैसेज का खंडन किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को भारत के समर्थन के संबंध में बयान दिया है। सरकार ने नागरिकों को ऐसी भ्रामक जानकारियों से सावधान रहने की सलाह दी है। इस संबंध में केवल सरकारी सूत्रों पर ही विश्वास करने को कहा गया है। आईपीएल क्रिकेट के अंतिम लीग मैच में कल दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। दूसरे मैच में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से हराया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 1.1% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 845 अंक की वृद्धि के साथ 76,260 जबकि निफ्टी 244 अंक बढ़कर 23,964 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. President Draupadi Murmu will present the Padma Awards at Rashtrapati Bhavan this evening. Padma Awards, one of the highest civilian awards of the country, are conferred in 3 categories, Padma Vibhushan, Padma Bhushan and Padma Shri. In the first round of the civil investiture ceremony of 2026 today, the President will confer 66 Padma Awards, including 2 Padma Vibhushan, 6 Padma Bhushan and 58 Padma Shri. The remaining Padma Awards will be given in the second round of the civil investiture ceremony to be held later. The Supreme Court today expressed concern over repeated lapses in the conduct of the NEET examination, saying it was sad that the National Testing Agency, NTA, had not learnt any lesson from the earlier paper leak controversy. A bench of Justices P.S. Narasimha and Alok Aradhe sought responses from the Centre, the NTA and the CBI on petitions demanding replacement of the testing agency with a more robust and autonomous body to conduct the medical entrance examination. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar has said India and the United States have a strong interest in combating terrorism in all its forms and manifestations. Addressing the gathering at the 250th Independence Day celebrations of the United States in New Delhi yesterday, Dr. Jayashankar said India and the US must always be clear about zero tolerance for terrorism.
3: We must always be clear about zero tolerance for terrorism. And that

0: Aquí, aquí. Musilo. अब पहला अंतर आएगा इसके बाद दूर आकाहार ये जो ना आकाश श को बोलते हैं वहां ख की तरह से तो आकार ये ख और ह के बीच में आकाखार भी नहीं आकाहार भी नहीं आकाहार आकाहार लिखो दूर आकाहार रोहन कियोनु लागे लागे खागोर तोलीर खागोर खागोर ख नहीं बोलना ह खागोर तोलीर खागोर मतलब समुद्र के तल में तो खागोर तोलीर मानिक कियो मानिक कियो नू मानिक कियो नू लागे लागे
1: लागे लागे
0: इसके आ गया है आहा आहा मातिर बुकुत
1: मातिर बुकुत
0: हां मातिर बुकुत मोनोर मालोती
1: मालोती
0: बूटोलो
1: बूटोलो
0: मोनोर मालोती बुटोलो इसके बाद फिर वही आ जाएगा एई माती रे मोरो मोते फिर दूसरा अंतर है मोनोर
1: मोनोर
0: कोरोनी रे
1: कोरोनी रे
0: हुरोर हुर और पापोरी रे
1: पापोरी रे
0: पापोरी रे आजी
1: आजी
0: इतना हो गया ना
1: जी हां
0: आगे हुकुमार
1: हुकुमार
0: थापो
1: थापो
0: नाहुजुवा हुकुमार थापो नाहु जुवा आगे लिखा है ना
1: जी
0: हुंदोर
1: हुंदोर
0: खुदीनोर
1: खुदीनोर
0: खुदीनोर नहीं ख नहीं ख खुदीनोर
1: खुदीनोर
0: नौतून दृष्टि
1: दृष्टि
0: ये ट को जरा त जैसा बोलना सॉफ्ट करके दृष्टि
1: दृष्टि
0: दृष्टि शनि सही बोलना दृष्टि
1: दृष्टि
0: कौनो
1: कौनो
0: ना हुआ
1: ना हुआ
0: आगे ना
1: जी हां
0: अच्छा ठीक है अब गाना सिखाना शुरू करते हैं स्वर दीजिए जरा

से कोनो ना हुआ खून, ऐसे बोलना एक बार, और दूसरे ना हुआ दूसरे में ऐसे लंबा कर लेना, खून दौर से लो, एक दो तीन।

अभी आप सुन रहे थे समूहगान शिक्षा का कार्यक्रम आओ हिलमिल गाएं। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय दोपहर के 1:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम।

दोस्तों, अगर आप भी हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं और अपने पसंदीदा गीत सुनना चाहते हैं तो हमें मैसेज कर सकते हैं इस नंबर पर। हमारा नंबर है 9474234000। नंबर एक बार फिर सुन लें, 9474234000। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए लेते हैं आज का पहला SMS, जिसे हमें भेजा है संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव ने। ये सुनना चाहते हैं फिल्म चुपके चुपके का ये गीत, और इस गीत को गाया है लता मंगेशकर ने।

आइए अब सुनते हैं पूर्णिमा और कुमार सानू की आवाज़ों में कुली नंबर वन। इस फिल्म का ये गीत और इस गाने की फरमाइश की है हमें मेरिट कैंट से, दिग्दर्शन और कविता ने।

अगले गाने की फरमाइश की है हमें गोलाघाट आसाम से रोमेश पत्रो और रानू पत्रो ने। ये सुनना चाहते हैं फिल्म खूबसूरत का ये गीत, और इस गीत को गाया है कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति ने।

आइए अब सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फ़िल्म लोफर का ये गीत, और इस गाने की फरमाइश की है हमें सदर बाज़ार मारवाड़ बिलाड़ा राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, जय नारायण चौहान, तरुण चौहान और प्रतीक चौहान ने।

अगले गाने की फरमाइश की है हमें असम से बैकॉन मुंडा ने। ये सुनना चाहते हैं फिल्म राजा भैया का ये गीत, और इस गीत को गाया है उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति ने।

इस गीत के साथ ही आज का हमारा फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम यहीं पर समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 2 बजने वाले हैं। अब से थोड़ी ही देर में समाचारों का प्रसारण हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: Khajuraho and Nogaon turned out to be the hottest spot in the state, with temperatures hitting 45.8 degrees Celsius. In the state capital Bhopal, it was 42.7 degrees, Gwalior recorded 44.1 degrees, and Jabalpur saw 43.3 degrees. The weather department says the heat is only going to get worse between May 25th and 28th, and there is no sign of any relief till 31st May. Abhinav Goyal, Akashvani News, Bhopal.
1: Millions of pilgrims from across the world, including India, are converging at Mina in Saudi Arabia as the annual five-day Hajj pilgrimage began today amidst regional tension in West Asia. Benchmark domestic equity indices were trading around 1.2% higher during afternoon trade today amid hopes of a possible agreement to end the U.S.-Iran conflict. The Sensex surged 944 points to 76,360, while the Nifty climbed 270 points to 23,989 when reports last came in. The Norway Chess 2026 kicks off in Oslo today with round one matches. The tournament will officially begin at 8:30 p.m. IST. For the first time in its 13-year history, the Super Tournament has moved from Stavanger to the capital city of Oslo, hosting its matches at the iconic Deichman Bjørvika Public Library. India created history at the International Association of Ultra Runners 24-Hour Asia Oceania Championships held in Japan. And now before we end the bulletin, the headlines once again. President Draupadi Murmu to present Padma Awards at Rashtrapati Bhavan in New Delhi this evening. Supreme Court seeks responses from Centre, NTA and CBI in NEET paper leak case, says lessons still not learnt from earlier paper leak cases. Assam Assembly introduces Uniform Civil Code Bill. IMD issues yellow alert in Delhi for next 3 days. Heat wave conditions to also persist over Haryana, Bihar, Madhya Pradesh, Odisha and Telangana. And Norway Chess 2026 tournament to begin in Oslo this evening. With that, we end the midday news.
2: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक मामले में केंद्र, एनटीए और सीबीआई से जवाब मांगा। कहा एजेंसियों ने पहले के पेपर लीक मामलों से अब तक कोई सबक नहीं सीखा। असम में विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किया गया। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन के लिए दिल्ली में गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया। हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना में लू चलने की संभावना। और नॉर्वे शतरंज 2026 टूर्नामेंट आज शाम ओस्लो में शुरू होगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री सहित 66 अलंकरण आज दिए जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शेष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे चरण में प्रदान किए जाएंगे।
3: सरकार ने इस वर्ष कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। इन पुरस्कारों की शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी। प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस पर इन पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान, अभियांत्रिकी, जनसेवा, व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान के लिए ये पुरस्कार दिए जाते हैं। सौम्या शरण की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
2: आकाशवाणी पर पीपल्स पद्म और आकाशवाणी श्रृंखला के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में अलग अलग पद्म पुरस्कार विजेता के जीवन और कृतित्व की जानकारी दी जाती है। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट परीक्षा में बार बार हो रही चूक पर चिंता जताते हुए कहा कि ये खेदजनक है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनटीए ने पिछले पेपर लीक विवाद से कोई सबक नहीं सीखा। एक

0: रिपोर्ट।
1: न्यायाधीश पीएस नरसिम्हा और आलोक आराधे की पीठ ने केंद्र सरकार, राष्ट्रीय जांच एजेंसी और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से उन याचिकाओं पर जवाब मांगा है जिनमें मेडिकल प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी की जगह किसी सशक्त और स्वायत्त संस्था को लाने की मांग की गई है। न्यायालय ने एजेंसी को बृहस्पतिवार तक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि बार बार पेपर लीक होने से 22 लाख से अधिक विद्यार्थियों के अधिकारों पर असर पड़ा है। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के बाद रद्द कर दी गई थी। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में पुणे निवासी भौतिकी विषय के लेक्चरर मनीषा संजय हवलदार को 6 दिन के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की हिरासत में भेज दिया है। एनटीए ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तारीख आगे बढ़ा दी है। एजेंसी ने कहा कि बकरीद की तिथि में बदलाव के कारण यह निर्णय लिया गया है। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना जल्द ही दी जाएगी। ताजा जानकारी के लिए विद्यार्थी एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं की बोर्ड परीक्षा की स्कैन उत्तर पुस्तिकाओं को प्राप्त करने की आज अंतिम तिथि है। बोर्ड ने कहा कि विद्यार्थियों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए यह तारीख बढ़ाई गई थी। स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख जल्द घोषित की जाएगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। असम सरकार ने आज विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाना और लिव इन रिलेशनशिप का पंजीकरण करना अनिवार्य है। विधेयक में ये प्रावधान है कि ये असम में रहने वाली किसी भी अनुसूचित जनजाति पर लागू नहीं होगा। विवाह के लिए विधेयक में पुरुषों के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष और महिलाओं के लिए 18 वर्ष निर्धारित की गई है और बहुविवाह पर रोक लगाई गई है। कानूनी अधिकारों की रक्षा के लिए विधेयक में विवाह और तलाक का पंजीकरण अनिवार्य करने का प्रस्ताव है जो जीवन साथियों के लिए भरण पोषण, विरासत और अन्य कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण होगा। राज्य के कैबिनेट मंत्री अतुल बोरा ने मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा की ओर से सदन में समान नागरिक संहिता असम विधेयक 2026 पेश किया। भारतीय जनता पार्टी ने आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर देश को कमजोर करने का आरोप लगाया। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि सरकार स्थिर और मजबूत है। उन्होंने कहा कि ऐसे वैश्विक संकट के बीच जब कई देशों की अर्थव्यवस्थाएं कमजोर पड़ गई हैं, देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस वैश्विक चुनौती का मजबूती से सामना कर रहा है। बीजू जनता दल बीजेडी के नेता और राज्यसभा सांसद देवाशीष सामंतराय ने आज पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने राज्यसभा की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। बीजेडी अध्यक्ष नवीन पटनायक को लिखे अपने इस्तीफे में देवाशीष सामंतराय ने आरोप लगाया कि पार्टी के भीतर उन्हें जानबूझकर नीचा दिखाया जा रहा था। क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वॉन्ग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: विदेश मंत्रालय ने बताया कि बैठक में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने वाली पहलों की प्रगति की समीक्षा करने और आपसी हित के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। क्वाड समूह भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान का प्रमुख उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता कायम रखना है। भारत इस गठबंधन के वर्तमान अध्यक्ष के तौर पर इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। वर्ष 2024 में अमेरिका के विल्मिंगटन में आयोजित पिछले क्वाड शिखर सम्मेलन में इस समूह के शीर्ष नेताओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सहयोग का विस्तार करने के लिए कई बड़े कदमों की घोषणा की थी। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज पश्चिम एशिया संकट के बीच ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर अधिक ध्यान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि घरेलू अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। मुंबई में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी के 37वीं वर्षगांठ समारोह के एक कार्यक्रम में वित्त मंत्री ने कहा कि

0: डीजल और पेट्रोल के उत्पाद शुल्क में कटौती से राजस्व पर 1,00,000 करोड़ रुपए का असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सोने की अधिक कीमत बाहरी मोर्चे पर कुछ चुनौतियां उत्पन्न कर रही हैं। उन्होंने कहा कि देश के नीतिगत प्रतिक्रिया को घरेलू विकास को बनाए रखने के हिसाब से तैयार किया गया है। वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परोपकार संबंधी अपीलों के बाद एक संशयपूर्ण और निराशावादी माहौल बनाने वालों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारत डर फैलाने का जोखिम नहीं उठा सकता। पेट्रोल के मूल्य में आज 2.61 रूपये और डीजल में 2.71 रूपये की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रूपये और डीजल 95.20 रूपये प्रति लीटर मिलेगा। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में पिछले 2 सप्ताह में ये चौथी वृद्धि है। सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल उस मैसेज का खंडन किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को भारत के समर्थन के संबंध में बयान दिया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि दावा भ्रामक है। इकाई ने कहा कि रक्षा मंत्री और सरकार ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। सरकार ने नागरिकों को ऐसी भ्रामक जानकारियों से सावधान रहने की सलाह दी है। इस संबंध में केवल सरकारी सूत्रों पर ही विश्वास करने को कहा गया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका और ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए वार्ता में महत्वपूर्ण प्रगति की है। संवाददाताओं से बातचीत में मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा पर प्रारंभिक समझौता व्यापक वार्ता का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और विकल्पों पर विचार करने से पहले कूटनीति को हर मौका देंगे। होर्मुज जलडमरू मध्य से विश्व की ऊर्जा आपूर्ति का लगभग 20% हिस्सा गुजरता है। इस वर्ष की शुरुआत से ईरान पर अमरीका और इसराइल के संयुक्त हमलों के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य बाधित हुआ है। विदेश मंत्री रूबियो भारतीय नेताओं के साथ बैठक करने के लिए इस समय भारत में हैं। वे नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए 3 दिन का लू का येलो अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी में तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। अगले 2 दिन के दौरान हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी लू की स्थिति बनी रहने की आशंका है। आज पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में मौसम गर्म और उमस भरा रहेगा। इस बीच आज पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, केरल, माहे, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज वर्षा का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और लक्षद्वीप के कुछ स्थानों पर आज बिजली चमकने और आंधी तूफान आने की संभावना है। भीषण गर्मी नौतपा की आज से शुरुआत हो गई है। ये अगले महीने की 2 तारीख तक जारी रहेगा। मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
1: मध्य प्रदेश में आज से नौतपा शुरू हो गया है। ये सिलसिला 2 जून तक चलेगा। नौतपा यानी साल की वो 9 दिन जब सूरज की तपिश सबसे ज्यादा होती है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 44 जिलों में लू चलने की चेतावनी दी है। निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सतना में हालात सबसे गंभीर हैं। इसीलिए इन 5 जिलों में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट घोषित किया है। मौसम विभाग का कहना है कि 25 से 28 मई के बीच गर्मी और भी बढ़ेगी और 31 मई तक किसी भी तरह की राहत की उम्मीद नहीं है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी न्यूज, भोपाल।
0: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 1.2% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 944 अंक की वृद्धि के साथ 76,360 जबकि निफ्टी 270 अंक बढ़कर 23,989 पर था। नॉर्वे शतरंज प्रतियोगिता 2026 का शुभारंभ आज नॉर्वे के ओस्लो शहर में हो रहा है। टूर्नामेंट भारतीय समय के अनुसार रात 8:30 बजे शुरू होगा। 13 वर्ष के इतिहास में पहली बार ये प्रतियोगिता स्टावांगर के बजाय ओस्लो में आयोजित की गई है। इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता के ओपन और महिला दोनों वर्गों में शामिल खिलाड़ियों में मैग्नस कार्लसन, डी गुकेश और आर प्रज्ञानानंद जैसे विश्व के दिग्गज ग्रैंड मास्टर भी हैं।

0: भारत ने जापान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अल्ट्रा रनर्स एसोसिएशन IAU एशिया तथा ओशिनिया चैंपियनशिप में इतिहास रच दिया। भारत ने कुल 5 पदक जीते और पुरुषों की श्रेणी में दबदबा कायम रखा। अमर सिंह देवंदा ने स्वर्ण पदक जीता। गिनो एंटनी ने रजत पदक हासिल किया जबकि कांस्य पदक भी भारत के खाते में गया। महिलाओं की श्रेणी में भारतीय टीम ने कांस्य पदक जीता। तेंजिन डोलमा शीर्ष भारतीय खिलाड़ी रहीं और व्यक्तिगत रूप से 4th स्थान पर रहीं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों को एकीकृत डिजिटल सहायता प्रदान करने की पहल जीवन और शतायु ऐप पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। संयुक्त सचिव सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव मोनाली पी धकाटे परिचर्चा में भाग लेंगी। वार्षिक हज यात्रा के लिए भारत सहित दुनिया भर से लाखों जायरीन सऊदी अरब के मीना में इकट्ठा हो रहे हैं। हज सुविधा मोबाइल ऐप के माध्यम से भारतीय जायरीनों को जानकारी और शिकायत दर्ज कराने की सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने महान क्रांतिकारी रास बिहारी बोस की जयंती पर उन्हें नमन किया है। श्री शाह ने कहा कि राष्ट्र उनके अदम्य साहस और मातृभूमि के प्रति समर्पण को हमेशा याद रखेगा। जम्मू कश्मीर में घाटी की रसदार और गहरे लाल रंग की चेरी अब मुंबई के बाजारों तक पहुंचेगी। मौसम के पहले चेरी फल का विशेष पार्सल वाहन आज जम्मू से रवाना हुआ। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट UG परीक्षा पेपर लीक मामले में केंद्र NTA और CBI से जवाब मांगा। कहा पहले के पेपर लीक मामलों से अब तक कोई सबक नहीं सीखा गया। असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन के लिए दिल्ली में गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया। हरियाणा बिहार मध्य प्रदेश उड़ीसा और तेलंगाना में लू की स्थिति बनी रहेगी। और नॉर्वे शतरंज 2026 टूर्नामेंट आज शाम ओस्लो में शुरू होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार जनसेवाओं और मछुआरों के लिए कोई विशेष चेतावनी नहीं है। परसों सुबह तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के अधिकतर स्थानों पर वर्षा होने या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। ये थी मौसम की जानकारी। इस समय 2:31 हुए हैं। अब प्राइमरी चैनल पर हमारी पहली सभा समाप्त होती है। अपनी दूसरी सभा में शाम 4 बजे हम आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे अनुमति चाहते हैं, लेकिन अब से लेकर शाम 4 बजे तक हम आपसे जुड़े रहेंगे 100.9 मेगाहर्ट्ज़ FM पर स्थानीय कार्यक्रमों के साथ। नमस्कार।

दोस्तों, शौक केवल समय बिताने का माध्यम नहीं बल्कि तनाव को दूर करने और मन को खुश रखने का सबसे सुंदर तरीका भी है। अक्सर हम जिम्मेदारियों और व्यस्तताओं के बीच अपने दिल की छोटी छोटी इच्छाओं को कहीं पीछे छोड़ देते हैं, लेकिन वही इच्छाएं और वही जुनून हमारे जीवन में नई ऊर्जा और नई पहचान लेकर आते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब मन अपने पसंदीदा रास्ते पर चल पड़ता है तो सफर और भी खूबसूरत लगने लगता है।

दोस्तों, कई बार हमारे भीतर छिपा हुआ हुनर ही हमारी सबसे बड़ी पहचान बन जाती है। वो कला जिसे हम अक्सर केवल एक शौक समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, वही आगे चलकर हमारे व्यक्तित्व की सबसे खूबसूरत पहचान बन सकती है। इसलिए दोस्तों, अपने भीतर की कला को सपनों की उड़ान बनने दीजिए, अपने मन की खुशी बनने दीजिए। और जब हम अपने भीतर की खुशी को पहचान लेते हैं, तो जीवन के डगर में हमारे कदम लगातार बढ़ते जाते हैं।

0: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 4 बजे हैं। अपनी दूसरी सभा में हम आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करते हैं। सभा के आरंभ में लीजिए सुनिए निकोबारी कार्यक्रम।
1: सिल्लामनिन्दी रोखरा हमांग इंग्रे ता लामक तेलंगी मीडियम वेव 438.6 मीटर हेक 684 किलोहर्ट्ज़ रामांगलंगी आकाशवाणी श्री विजयपुरम अनि निकोबारी प्रोग्राम तहांग

0: 이 프로그램
1: 인조된 민카텔마 다미네

0: ngachinta hi hangmine ta haleleng program ingila harap halele me holi asa pe ha hoye hangetel ha ang in ngachinta mu hek in huraj hangrong itaka sate ita fan kanro tala harap ngayen
1: श्रोताओं अभी आप निकोबारी कार्यक्रम का आनंद ले रहे थे। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। शाम के 4:30 हुए हैं। सुगम संगीत इस कार्यक्रम में आज की फनकारा हैं सलमा आगा। तो आइए सुनते हैं इनकी आवाज़ में ये गज़ल।

सलमा आगा की गाई इस गज़ल के साथ सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 4:40 हुए हैं। अब सुनिए हमारे केंद्र से आज के शेष व कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। पहले आज के शेष कार्यक्रम, अब से कुछ देर बाद यानी 4:45 पर सुनिए कार्यक्रम बहारों की शाम। शाम 5 बजे आप सुनेंगे माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा नागरिक अलंकरण समारोह भाग एक में पद्म पुरस्कार वितरण का राष्ट्रपति भवन से सीधा प्रसारण, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। बांग्ला में शाम 5:30 पर आप सुनेंगे युवाणी कार्यक्रम। संध्या 6 बजे कृषि जगत कार्यक्रम में आप सुन पाएंगे लाइव फोन इन कार्यक्रम कृत्रिम गर्भाधान हर किसान की नई उड़ान की 7वीं कड़ी। कार्यक्रम में अतिथि होंगे वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नागनाथ थोजने। विषय रहेगा लिंग के आधार पर वर्गीकृत वीर्य और कृत्रिम गर्भाधान। पॉप मसाला कार्यक्रम का समय रहेगा 6:30। मौसम की जानकारी, जलयानों का यात्रा कार्यक्रम एवं जन सूचनाएं दी जाएंगी 7:15 पर। फिल्मी गीतों के कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया प्रसारित होगा 7:20 पर। 7:30 पर युवाणी में विश्व फुटबॉल दिवस और रास बिहारी बोस पर चर्चा के बाद होगा गजलों पर आधारित कार्यक्रम कहकशा। चित्रपट संगीत कार्यक्रम का आनंद लीजिए रात 8 बजे। 8:30 पर सुनिए रोजगार समाचार, तत्पश्चात होगा कार्यक्रम गौरव गान और रात 10 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम संदेश से आते हैं। इन कार्यक्रमों के अतिरिक्त रात 9:15 पर स्पॉटलाइट और 9:30 पर पब्लिक स्पीक कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे, जबकि रात्रि 10 बजे FM 100.9 MHz पर आप सुनेंगे विविध भारती मुंबई से प्रसारित प्रायोजित कार्यक्रम छाया गीत। और अब एक नजर कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। कल हमारी पहली सभा आरंभ होगी प्रातः 5:23 पर। 5:30 पर अनमोल विचार, तत्पश्चात होगा भक्ति गीतों का कार्यक्रम प्रभाती वंदना। 5:55 पर एग्री टिप्स कार्यक्रम में जानकारी का विषय होगा रजन ज्योत का उपयोग। जलानों की यात्रा कार्यक्रम से हम आपको अवगत कराएंगे सवेरे 6:10 पर। 6:15 पर इंद्रधनुष कार्यक्रम बादल शीर्षक पर केंद्रित होगा। रामचरितमानस गान की 250वीं कड़ी प्रसारित की जाएगी 6:30 पर। वतन के गीत कार्यक्रम का समय रहेगा 6:40 सवेरे 7 बजे सुनिए जन सूचनाएं। 7:15 पर प्राइमरी चैनल पर आप सुनेंगे कार्यक्रम देश रागिनी, जबकि इसी समय पर FM 100.9 MHz पर आप सुन पाएंगे विविध भारती।

मुंबई से प्रसारित प्रायोजित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत 7:30 पर प्राइमरी चैनल और FM 100.9 मेगाहर्ट्ज पर आप आनंद ले सकेंगे गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम का। सुगम संगीत के कार्यक्रम में 8:30 पर फनकार होंगे अनुराधा और हरिहरन। फिल्मी गीतों का लुत्फ लीजिए सुबह 9 बजे तराने सुहाने कार्यक्रम में। 9:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में एन रमणी का कर्नाटक शैली में बांसुरी वादन प्रसारित किया जाएगा। गीत गाता चल कार्यक्रम का समय रहेगा सुबह 10 बजे। दिन के 11 बजे आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की 1252वीं कड़ी। चित्रगीत कार्यक्रम का लुत्फ लीजिए 11:30 पर। दोपहर 12 बजे आप सुनेंगे तेलुगु कार्यक्रम। तत्पश्चात 12:30 पर समय रहेगा मलयालम कार्यक्रम का। सुगम संगीत के कार्यक्रम में दोपहर 1:10 पर कलाकार होंगे जगजीत सिंह और चित्रा सिंह। आपके नाम फिल्मी पैगाम कार्यक्रम का समय रहेगा 1:30। इन कार्यक्रमों के अतिरिक्त रात 9:15 पर स्पॉटलाइट, 9:30 पर मनी टॉक और 9:45 पर मंथन कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। जबकि रात्रि 10 बजे FM 100.9 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन पाएंगे विविध भारती मुंबई से प्रसारित प्रायोजित कार्यक्रम छाया गीत। श्रोताओं, ये थे हमारे केंद्र से आज के शेष व कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 4:45 हुए हैं। अब आरंभ होता है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं कुमार सानू और अलका याग्निक के गाए राजू बन गया जेंटलमैन फिल्म के इस गीत से, जिसे लिखा है मदन पाल ने, धुन बनाई जतिन ललित ने।

जुदाई फिल्म का ये शीर्षक गीत था हरिहरन अलका याग्निक और साथियों की आवाज़ों में, बोल समीर के धुन बनाई नदीम श्रवण ने। और अब कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं एसपी बाला सुब्रमण्यम और चित्रा को, फिल्म का नाम लव। मजरू सुल्तानपुरी के लिखे गीत को संगीत से सजाया है आनंद मिलिंद ने।

एसपी बाला सुब्रमण्यम, चित्रा और साथियों की आवाज़ों में ये गीत था लव फिल्म से। इस गीत के साथ ही बहारों की शाम कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का श्रीविजयपुरम केंद्र है। शाम के 5 बजने को है। अब कुछ ही पलों में अगला कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: ये आकाशवाणी है। अब हम आपको राष्ट्रपति भवन लिए चलते हैं, जहां से आप भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की गरिमामय उपस्थिति में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह का सजीव विवरण सुन सकेंगे। विवरण दे रहे हैं महेंद्र सिंह लालस और लालिमा अनेजा। आइए राष्ट्रपति भवन चलें।
1: नमस्कार, राष्ट्रपति भवन के गणतंत्र मंडप से मैं महेंद्र सिंह लालस अपने साथी कमेंटेटर लालिमा अनेजा डैंग के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू आज यहां 66 विभूतियों को पद्म अलंकरण प्रदान करेंगी, जिनमें 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री शामिल हैं। नागरिक अलंकरण समारोह का ये पहला चरण है और दूसरे चरण में शेष रहे पद्म अलंकरण प्रदान किए जाएंगे। अभी हमारे बीच माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय उपराष्ट्रपति जी, लोकसभा अध्यक्ष, माननीय गृह मंत्री जी, ये तमाम अतिथि आ चुके हैं और कुछ ही क्षणों में यहाँ पर पधारेंगी राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू।
2: नमस्कार एंड अ वार्म वेलकम टू पार्ट 1 ऑफ द सिविल इन्वेस्टिचर सेरेमनी as we broadcast from the Ganatantra Bhavan at Rashtrapati Bhavan in the august presence of dignitaries and the proud recipients of the prestigious awards and their family members. And friends, today is the day when Padma Awards, the highest civilian awards of the country, shall be presented by the first citizen of the country, Honorable President Srimati Draupadi Murmuji. The awards are given in various disciplines like art, social work, public affairs, science and engineering, trade and industry, medicine, literature and education, sports, civil services, etc. Padma Vibhushan is awarded for exceptional and distinguished service, and Padma Shri and Padma Bhushan is for distinguished service of high order, and Padma Shri is for distinguished service in any field. Friends, the awards are announced on Republic Day every year.
1: इस वक्त राष्ट्रपति जी का यहाँ पर इंतजार। हम ये बता दें कि राष्ट्रपति भवन का ये ऐतिहासिक गणतंत्र मंडप, जहाँ पर 1947 में स्वतंत्र भारत के पहले कैबिनेट ने शपथ ली थी, ठीक यहाँ पर राष्ट्रपति जी के आसन के ठीक पीछे 5वीं शताब्दी की मथुरा की ऐतिहासिक बुद्ध की प्रतिमा, जो कि गंधार शैली में बनी है, और ठीक बीच में यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर शैंडिलियर और इसके ठीक ऊपर सांची के स्तूप से प्रेरित गुंबद और 12 बहुत ही सुंदर जैसलमेरी पत्थर के बने स्तंभ। और अब पधार रही हैं माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू गणतंत्र मंडप में।

0: राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान प्रस्तुत किया था महार रेजिमेंट सेंटर सागर के बैंड ने। सुबेदार पीवी गुरुंग इसका कर रहे थे।
1: माननीय राष्ट्रपति महोदय, आपकी आज्ञा हो तो पद्म पुरस्कार 2026 के अलंकरण समारोह की कार्यवाही आरंभ की जाए।
0: राष्ट्रपति जी ने कार्यक्रम शुरू करने की स्वीकृति दी। उन्होंने सुनहरे रंग की फिरोजी रंग के बॉर्डर वाली साड़ी पहनी है और मंच पर आसीन। अब कुछ ही पलों में प्रस्तुतिकरण शुरू होने वाला है।
1: श्री धर्मेंद्र सिंह देओल मरणोपरांत कला फिल्म अभिनय, उनकी पत्नी श्रीमती हेमा मालिनी।
0: सबसे पहले महान अभिनेता हीमन के नाम से मशहूर, जिन्होंने 6 दशक तक कैरियर रखा है, 300 से भी ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया है। 86 वर्ष की उम्र में उनका निधन हुआ। उनकी पत्नी श्रीमती हेमा मालिनी पद्म विभूषण प्राप्त करने जाती हुई।
2: Shri Dharmendra served as a member of parliament in the 14th Lok Sabha, representing the Bikaner constituency in Rajasthan from 2004 to 2009. And he was known for his emotional bond with his constituency.

0: डॉक्टर श्रीमती एन राजम कला वायलिन।
1: 87 वर्षीय डॉक्टर श्रीमती एन राजम भारतीय शास्त्रीय संगीत की पहचान है और वायलिन के क्षेत्र में एक अनूठा नाम है। आप एर्नाकुलम में जन्मी थी और पंडित ओंकारनाथ ठाकुर से आपने वायलिन की शिक्षा प्राप्त की।
2: Beyond her illustrious performing career, Dr. Rajam served with distinction as a professor in the Faculty of Performing Arts at the Banaras Hindu University for nearly 4 decades and rose to become the head of department and subsequently dean of faculty, earning the prestigious title of Emeritus Professor by BHU.
0: Padma Bhushan, Shatavdhani Dr. R. Ganesh, Kala Avdhan.
1: अवधान के विशेषज्ञ 64 वर्षीय शतावधानी डॉक्टर आर गणेश कलम और कागज की किसी भी सहायता से उसकी सहायता के बिना छंद लिखते हैं और इन्होंने 1300 से ज्यादा अष्टावधान और 5 शतावधान लिखे हैं और 70 से ज्यादा पुस्तकें भी।
2: डॉक्टर आर गणेश इज आल्सो अ प्रोलिफिक ऑथर हैविंग मोर देन 70 बुक्स टू हिज क्रेडिट।
0: श्री भगत सिंह कोशियारी लोक कार्य।
1: भगत सिंह कोश्यारी जिन्हें भगत दा के नाम से जाना जाता है, आप उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रहे 74 वर्षीय और लोक सेवा का अनूठा काम किया है, राष्ट्रवादी नेता है।
2: श्री कोश्यारी स्टार्टेड टीचिंग एट सरस्वती शिशु मंदिर कासगंज उत्तर प्रदेश वेयर ही वर्क्स टू इम्पार्ट भारतीय वैल्यूज अलोंग विद मॉडर्न एजुकेशन टू यंग चिल्ड्रन।
0: श्री उदय सुरेश कुमार कोटक व्यापार एवं उद्योग।
1: 67 वर्षीय कोटक, आपने कोटक महिंद्रा फाइनेंस लिमिटेड से शुरुआत की और आज कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड जैसा एक बड़ा आयोजन इन्होंने किया है।
2: श्री कोटक हैज प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन डिफाइनिंग एंड डेवलपिंग इंडियाज बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर ओवर 4 decades एंड ही लीड्स सेवरल की बॉडीज सर्विंग एज को चेयरमैन ऑफ इंडो यूके फाइनेंशियल पार्टनरशिप।
0: विजय कुमार मल्होत्रा मरणोपरांत लोक कार्य, उनके पुत्र श्री अजय कुमार मल्होत्रा।
1: बीते 30 सितंबर 2025 को श्री मल्होत्रा का निधन जरूर हो गया था, लेकिन आप एक खेल प्रशासक थे और एक राजनीतिज्ञ और अकादमिक भी थे। उनके बिहाफ पर अजय कुमार मल्होत्रा पद्म भूषण प्राप्त करते।
2: A pioneer in sports, Professor Malhotra served over 40 years as the president of Archery Association of India.
0: रामास्वामी पल्लीस्वामी चिकित्सा गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी।
1: 77 वर्षीय डॉक्टर पलनी स्वामी देश के प्रतिष्ठित गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट हैं। आपने 2007 में पद्मश्री सम्मान भी प्राप्त किया था।
2: He also served as president of the Society for Gastrointestinal Endoscopy of India, where he initiated a task force to form
0: guidelines.
2: श्री
0: पीयूष पांडे मरणोपरांत कला विज्ञापन, उनकी पत्नी श्रीमती नीता जोशी।
1: पीयूष पांडे कौन नहीं जानता उन्हें, विज्ञापन की दुनिया में एक अनूठा नाम। 70 वर्ष की उम्र में 24 अक्टूबर 2025 को इनका निधन हो गया। नीता जोशी उनके बिहाफ पर ये पुरस्कार प्राप्त करती हैं।
2: श्री पांडे वाज नेम्ड एज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एडवर्टाइजिंग मैन इन इंडिया बाय द इकोनॉमिक टाइम्स।
0: श्री विश्वबंधु मरणोपरांत कला लोक नृत्य, उनकी पत्नी श्रीमती इंदु देवी।
1: विश्वबंधु जी लोक कला के एक बड़े अनूठे हस्ताक्षर थे और बिहार में लोक कलाओं की, खास तौर पर लोक नृत्यों की बहुत सेवा की। 95 वर्ष की उम्र में आपका निधन जरूर हो गया, लेकिन राष्ट्र आज कर रहा है उनका सम्मान पद्मश्री देकर मरणोपरांत।
2: श्री विश्वबंधु वाज द फाउंडर ऑफ सुरंगन, वन ऑफ बिहार्स मोस्ट रिस्पेक्टेड कल्चरल इंस्टीट्यूशंस एंड रिमेन्स सो ओवर 6 decades।
0: श्री भरत सिंह भारती कला लोक गायन।
1: भरत सिंह भारती 90 वर्ष की उम्र में भी आप सांस्कृतिक विरासत और खास तौर पर भोजपुरी गायन और भोजपुरी लोक शैलियों का अभी भी संरक्षण कर रहे हैं। आपने गुलाबी रंग का जैकेट पहना हुआ है, सबका अभिवादन करते हुए और राष्ट्रपति जी के सामने जाते हुए गुरुजी का इन्हें संबोधन दिया जाता है।
2: श्री भरत सिंह भारती रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द सागर फेस्टिवल इन मॉरिशस इन 1987 व्हेयर हिज एल्बम पुरबिया तान वाज रिलीज्ड। He has also guided

0: created a new generation of artists as a judge and mentor.
1: Shri Tagaram Bhil Kala Algoza Vadan.
2: जैसलमेर के तगाराम ढील अलगोजा बजाते हैं, कितना सुंदर साज जो कि शीशम और कैर की सूखी लकड़ी से बना होता है। इन्होंने जैसलमेरी पट्टू पहना है और ऊपर जैसलमेरी साफा चुंदड़ी का।
0: श्री तगाराम इज द रेसिपिएंट ऑफ न्यूमरस अवार्ड्स एंड ऑनर्स एंड अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट्स। ही हैज रिसीव्ड अ महरावाल गिरधर अवार्ड इन 2013 बाय महरावाल गिरधर ट्रस्ट जैसलमेर एंड मेनी मेनी अदर अवार्ड्स।
1: हरमनप्रीत कौर भुल्लर खेल क्रिकेट।
2: कौन नहीं जानता हरमनप्रीत कौर को, जिन्होंने राष्ट्र के लिए विश्व कप की ट्रॉफी उठाई थी। 37 वर्षीय हरमनप्रीत कौर भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान, सुनहरे रंग का परिधान पहना हुआ राष्ट्रपति जी के सामने जाकर अपना पद्मश्री स्वीकार करती हुई।
0: Her achievements have not only strengthened India's presence in international cricket, but have also contributed significantly to the growth.
1: Shri Ratilal Mohanlal Borisagar, Sahitya Evam Shiksha.
2: 88 साल के हैं रतिलाल मोहनलाल बोरीसागर, और गुजरात में कितने ही बच्चों के चेहरों पर इन्होंने मुस्कान पैदा की है, क्योंकि ये कॉमिक्स और हास्य लेखन के लिए मशहूर हैं।
0: Yes, he has received many awards and honors, and after 36 years, his students have established a foundation in 2011 for literary and educational activities. He's also written a biography, Raman Bhai Nilkant.
1: Shri Kumar Bose कला तबला।
2: कुमार बोस तबले में एक बहुत बड़ा नाम है। आप 4 अप्रैल 1954 को जन्मे थे और पिता विश्वनाथ बोस से सीखा, लेकिन बाद में ये पद्म विभूषण पंडित किशन महाराज के भी शागिर्द रहे।
0: श्री बोस's quiet dignity, ethical integrity and unwavering commitment to classical values have earned him top grade status in All India Radio, the Sangeet Natak Academy Puraskar and Pandit Dinanath Mangeshkar Award, along with immense respect within the artistic community.
1: Shri Janardan Bapurao Bothe, Samaj Seva.
2: मशहूर सामाजिक कार्यकर्ता हैं बोथे जी, 77 साल के हैं, और पूज्य राष्ट्र संत टुकड़ो जी महाराज द्वारा स्थापित पवित्र गुरुकुंज आश्रम में आप सेवा दे रहे हैं।
0: श्री बोथे अकंपनीड राष्ट्र संत श्री टुकड़ो जी महाराज ऑन सिग्निफिकेंट विजिट्स अक्रॉस इंडिया, इंक्लूडिंग गोवा, राष्ट्रपति भवन, मेजर कुंभ मेलास, साधु सम्मेलन एंड द फाउंडिंग मीटिंग ऑफ संस्था ऑफ द विश्व हिंदू परिषद इन मुंबई। He has also served as full-time personal secretary
1: Swami Brahmadev Samaj Seva.
2: Swami Brahmadev, 82 साल के हैं आप, श्रद्धे हैं, राजस्थान के श्री गंगानगर से आते हैं, और आपने राष्ट्र के कई अंचलों में आध्यात्मिक मार्गदर्शन भी दिया है और समाज की सेवा भी की है।
0: And during spiritual practice while completing bachelor degree at college in Amritsar, which was adjacent to a blind school, being compassionate with blind children, he decided to dedicate his life for upliftment of specially abled children. Swami Brahmadev.
2: केसरिया रंग का आपने साफा पहना है और केसरिया ही परिधान है। राष्ट्रपति जी के सामने उन्हें अभिवादन करते हुए इस संत पद्मश्री से सम्मानित होता हुआ।
1: श्री प्रोसेनजीत चैटर्जी कला फिल्म अभिनय।
2: प्रोसेनजीत चैटर्जी इन्हें बुम्बा दा नाम से ज्यादा जानते हैं, और भारतीय सिनेमा की एक अनूठी पहचान इन्होंने बनाई है, और खास तौर पर बंगाली सिनेमा में आपने बहुत काम किया है, और दूसरे के लिए आपको राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला है।
0: इन द डिजिटल एरा श्री चैटर्जी सक्सेसफुली रीइन्वेंटेड हिमसेल्फ थ्रू हिंदी स्ट्रीमिंग प्रोजेक्ट्स लाइक जुबली, स्कूप एंड खाकी।
1: श्रीमती देवकी अम्मा जी समाज सेवा।
2: वन उत्पादक हैं आप, 82 साल की हैं, लेकिन रुकी नहीं है, वन दादी नाम से जानी जाती है। 3,000 से ज्यादा पेड़ों और स्वदेशी औषधियों और दुर्लभ पौधों की प्रजातियों को बचाने का काम आपने किया है, और केरल के

0: गोवा से आती हैं।
1: श्रीमती देवकी अम्मा relied on traditional knowledge and close observation of soil and climate conditions for growing plant saplings and used mulching, organic manuring from home cattle, careful retention of leaf litter and thoughtful water management. She was also conferred the Nari Shakti Puraskar in 2018.
2: डॉक्टर रामचंद्र गोडबोले एवं श्रीमती सुनीता गोडबोले चिकित्सा।
0: डॉक्टर रामचंद्र गोडबोले और उनके साथ सुनीता गोडबोले, आप एक
2: डॉक्टर सामाजिक
0: कार्यकर्ता हैं, 66 साल के हैं और आदिवासी समुदायों के लिए खास तौर पर छत्तीसगढ़ में आपने बहुत काम किया है।
1: In 1990, soon after their marriage, Dr. Godbole and his wife, Srimati Sunita Godbole, decided to move to Bastar to serve tribal communities medically.
2: Srimati Sunita Godbole.
0: ये भी कितना गौरव का क्षण है। उनके साथ आ रही हैं सुनीता गोडबोले। एक साथ दोनों को पद्मश्री मिलता हुआ। आपने भी समाज के लिए बहुत कार्य किया है और खास तौर पर अपने पति डॉक्टर रामचंद्र गोडबोले के साथ महाराष्ट्र में 12 साल और छत्तीसगढ़ में 30 सालों से आपने सेवा की है।
2: श्री तेची गुबिन समाज सेवा।
0: अरुणाचल प्रदेश से आते हैं और वास्तुकार और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आपने बहुत ही कार्य किए वहाँ पर और पारंपरिक अरुणाचली परिधान पहनकर जिसमें सिर पर पंख भी है हॉर्नबिल का नमस्कार करते हुए तेची गुबिन 62 वर्षीय पद्मश्री प्राप्त करते हुए।
1: श्री गोबिन ऑर्गेनाइज्ड एंड लेड द सीमांत दर्शन यात्रा इन 2010 एंड 2021 विजिटिंग रिमोट विलेजेस बॉर्डरिंग चाइना म्यांमार एंड भूटान। He also led a team of delegations to meet the vice president to report on the security
2: needs. Dr. H.V. Hande, Chikitsa.
0: 99 साल के हैं आप और ध्यान रखिए 99 वर्षों से इस शख्स ने भारत की सेवा की है। मशहूर चिकित्सक हैं और साथ में राजनीतिज्ञ भी हैं, लेकिन इन सब के अलावा डॉक्टर हंडे ने संपूर्ण कंब रामायण जो कि तमिल में है मूल रूप से उसका अंग्रेजी गद्य में अनुवाद भी किया है। राष्ट्रपति जी के ADC उनका हाथ पकड़ कर ले जाते हुए उन्होंने हल्के हरे रंग का जैकेट पहना है और राष्ट्रपति जी का अभिवादन करते हुए आगे अपना पद्मश्री प्राप्त करने के लिए धीरे धीरे जाते हुए।
1: While Dr. Hande was the health minister of Tamil Nadu between 1980 and 1986, he brought the state into the first slot consecutively for 3 years in reducing infant mortality rate and maternal mortality rate, in drastically reducing the incidence of leprosy and other communicable diseases. Thereafter, he received the prestigious Dr.
2: Shri
1: B.C. Roy
2: Award. Shri Ghafruddin Mewati Jogi Kala Bhapang Vadan.
0: राजस्थान में अलवर से गफरुद्दीन जी आते हैं। इन्होंने राजस्थानी साफा पहना है, नमस्कार करते हुए जाते हुए जोगी परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हैं और भपंग बजाते हैं जिसे महादेव का वाद्य कहते हैं और खास तौर पर महाभारत और कृष्ण लीला अली बख्शी परंपरा जैसी कथाओं का वाचन करते हैं।
1: When through his sustained artistic practice, Shri Ghafruddin has contributed significantly to the preservation of nearly 20 endangered folk musical instruments and oral narrative traditions. His work has supported academic research including PhD level studies.
2: Meer Hazi Qasim Kala Dholak.
0: 75 साल के मीर हाजी कासम, इन्हें हाजी रामकडू नाम से बुलाते हैं, आप जूनागढ़ के एक महान और मशहूर लोक संगीतकार हैं। 75 वर्ष के हो चुके हैं लेकिन इन्होंने पूरा जीवन गुजरात के पारंपरिक संगीत को समर्पित किया है और खास तौर पर बहुत अच्छी ढोलक बजाते हैं।
1: श्री कासम हैज बीन इंस्ट्रूमेंटल इन कैरिंग गुजराती फोक म्यूजिक टू ग्लोबल ऑडियंसेस परफॉर्मिंग अक्रॉस कंट्रीज सच एज द USA, UK, साउथ अफ्रीका, कनाडा, UAE, ओमान एंड सेवरल अदर्स। He has also received many state-level honors, including the Gujarat Gaurav Puraskar, Gujarat Rajya Sangeet Natak Academy Award, Gujarat Lokala Rashtriya Puraskar.
2: Shri Raghuveer Khedkar, Kala Theatre.
0: रघुवीर खेड़कर को महाराष्ट्र के लोग अच्छी तरह जानते हैं। आप एक मशहूर तमाशा कलाकार हैं और तमाशा की एक मंडली भी चलाते हैं और लोक कला और खास तौर पर मराठी लोक कला को संरक्षित करने के लिए कटिबद्ध हैं।
1: During the COVID-19 pandemic, when public performances halted and many artists faced

0: hunger and unemployment, Shri Khedkar stood up as a staunch advocate. He led appeals for financial support and leveraged solace and solidarity for folk artists.
1: Shri R. Krishnan Kitna Marnoprant, Kala Kurumba Tribal Painting, Unki Patni Srimati Sushila Krishnan.
2: R. Krishnan Kitna, जिनका 20 मार्च 2025 को निधन हो गया था, आप तमिलनाडु से आते हैं और बचपन से ही चित्रकारी करते आए थे और दीवारों पर इन्होंने बहुत चित्र बनाए. सुशीला कृष्णन उनकी पत्नी पद्मश्री प्राप्त करती हुई.
0: श्री आर कृष्णन किटना इज नोन फॉर यूजिंग नेचुरल पिगमेंट्स इन हिज आर्ट फॉर्म एंड हिज स्किल्स एज अ स्टोरी टेलर. ही इज
1: प्रोफेसर डॉक्टर लार्स क्रिश्चियन कोच, कला म्यूजिकोलॉजी.
2: एथनो म्यूजिकोलॉजिस्ट हैं आप, बंगाल से प्रेम करते हैं और खास तौर पर गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर के साथ इनका एक आत्मिक संबंध है. बॉन में टैगोर इंस्टीट्यूट में आपने पढ़ाई की और शांति निकेतन पश्चिम बंगाल से भी जुड़े रहे.
0: प्रोफेसर कोच इज डायरेक्टर ऑफ द स्टेट एथनोग्राफिक कलेक्शंस इन द स्टेट आर्ट कलेक्शंस सैक्सोनिया इन ड्रेसडन जर्मनी सिंस अक्टूबर 2025.
1: प्रोफेसर मामीडाला जगदीश कुमार, साहित्य एवं शिक्षा.
2: 66 वर्षीय जगदीश कुमार, आपने एनसीईआरटी में बहुत काम किया है, सुप्रसिद्ध शिक्षाविद है और राष्ट्र की जो शिक्षा नीति है उसमें भी आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है.
0: Well, Professor Mamidala Jagadish Kumar framed and operationalized models under NEP 2020 and the four-year undergraduate program with flexible structure and the academic bank of credits.
1: Shri Praveen Kumar, Khel Athletics Divyang.
2: Aur ab bari is 23 varshiya khiladi ki T44 unchi kood mein vishwa mein aap number 1 hain aur para olympic padak jeetne wale sabse kam umr ke bharatiya para athlete hain Praveen Kumar.
0: Shri Praveen Kumar went on to claim gold at the World Para Athletics Grand Prix with a leap of 2.05 meters, setting an Asian record. At Tokyo Paralympics, he won a silver medal.
1: Shri K. Vijay Kumar, Civil Seva.
2: Vijay Kumar ji, CRPF के पूर्व महानिदेशक रहे हैं और संकटपूर्ण मिशनों में आपने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.
0: As Commissioner of Chennai, Shri K. Vijay Kumar reformed crime control practices, cracked down on organized gangs and enhanced public safety and reduced road fatalities by 40%. As additional DG Law and Order, he strengthened public safety strategies.
1: Deva Lord, Dada Lord, Krishi.
2: Deva Lord, किसानी खेती करते हैं और ग्रामीण विकास और स्थायी कृषि और सामाजिक कार्यों में बहुत योगदान दिया है. परभणी जिले के मालसोना गांव में आप जन्म हैं, 79 वर्ष के हैं.
0: श्रीरंग देवा लाड इन्वेंटेड न्यू टेक्नोलॉजी इन कॉटन कल्टीवेशन व्हिच वाज यूज्ड बाय फार्मर्स इन ऑल कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ इंडिया. ही हैड डन रिसर्च वर्क इन जवार एंड तूर एज वेल.
1: श्री अंके गौड़ा एम, समाज सेवा.
2: 77 साल के अंके गौड़ा अब माननीय राष्ट्रपति जी से अपना पद्मश्री प्राप्त करने के लिए जाते हुए आपने अपना पूरा जीवन पुस्तकों के संरक्षण, संग्रह और उसे लोगों तक पहुंचाने में दे दिया है.
0: श्री अंके गौड़ा जी हैज पर्सनली कलेक्टेड मोर देन 20 लाख बुक्स ओवर द लास्ट 50 ईयर्स यूजिंग हिज इंटायर पर्सनल अर्निंग्स फॉर दिस पर्पज एंड हिज कलेक्शन इंक्लूड्स बुक्स इन Kannada, English, Hindi, Tamil, Telugu and several other Indian languages and diverse subjects such as literature, history, art, culture and philosophy.
1: Professor Dr. Saroj Mandal, Chikitsa, Cardiology.
2: 69 वर्षीय Dr. Mandal, Interventional Cardiologist. आपने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में देश की खूब सेवा की है.
0: Professor Dr. Mandal has served over 6 lakh patients in OPD over 35 years and independently performed and supervised 50,000 coronary angiograms and 50,000 angioplasties.
1: Professor Buddh Rashmi Mani, Puratattva Vigyan.
2: Bharatiya Puratattva Vigyan ke ek mahatvapurna hastakshar, Professor Buddh Rashmi Mani.

0: राष्ट्रीय संग्रहालय के महानिदेशक भी आप रहे हैं और कहां कहां उत्खनन इन्होंने नहीं किया हमारी सभ्यता के अवशेष खोजने में।
1: While working in the Archaeological Survey of India, Professor Mani conserved about 150 centrally protected monuments in Maharashtra, Goa, Delhi and Jammu and Kashmir and discovered 200 archaeological sites and he directed 20 excavations.
2: Shri Nilesh Vinod Chandra Mandlewala, Samaj Seva.
0: Organ Man ke roop mein jane jaate hain aur Donate Life Sansthan ke roop mein इन्होंने बहुत कार्य किया है, खास तौर पर गुजरात और भारत में शव अंगदान के बारे में जागरूकता फैलाई है।
1: श्री मांडलेवाला, he has a long term vision that by 2047 no citizen should lose life because of the non availability of organs. For that he has traveled extensively across India.
2: डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्र, साहित्य एवं शिक्षा।
0: लुप्त प्राय जनजातीय आवाजों को आधुनिक शिक्षा शास्त्र में आपने शामिल किया है और आवाजों को संरक्षण करने में 4 दशक से अधिक का समय दिया है डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्र ने।
1: Internationally, Dr. Mishra has advised Nepal's MLE policy, lectured at China's CAS, Hanyang University, South Korea, Thailand's Mahidol University, and Russia's Academy of Sciences.
2: Shrimati Tripti Mukherjee, Kala. कंथा एम्ब्रॉयडरी।
0: कंथा ऐसी कढ़ाई है जो पूरे विश्व में भारत की पहचान है और उसे आगे बढ़ाने में, उसे नए स्वरूप देने में तृप्ति मुखर्जी का बहुत योगदान रहा है।
1: श्रीमती मुखर्जी इज द रेसिपिएंट ऑफ न्यूमरस अवार्ड्स सच एज द नेशनल अवार्ड सर्टिफिकेट इन 2010 एंड शिल्प गुरु अवार्ड इन 2016 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। शी इज ऑल्सो बीन एक्नॉलेज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल by conferring on her the Bangashri Award.
2: Hari Madhav Mukhopadhyay, Kala Theatre, unke putra Shri Krishnendu Mukhopadhyay.
0: आप मशहूर थिएटर निर्देशक, नाटककार और अभिनेता थे। 85 वर्ष की उम्र में 17 मार्च 2025 को आपका निधन हो गया। उनकी बिहाव पर पद्मश्री प्राप्त करने जाती हुई कृष्णेंदु मुखोपाध्याय।
1: Well, Shri Mukhopadhyay is
2: Shri Satya Narayan Nandlal Nuwal, Vyapar Evam Udyog.
0: 74 वर्षीय नुवाल सोलर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के संस्थापक और अध्यक्ष हैं। आज इन्हें सम्मानित किया जा रहा है पद्मश्री से।
1: Under Shri Nuwal's leadership, Solar became the first Indian company to design, develop and manufacture fully weaponized variants of the Nagastra loiter munition.
2: श्री के पजानीवेल खेल सिलंबम।
0: सिलंबम 5000 साल पुरानी भारतीय मार्शल आर्ट है और युद्ध शस्त्र आधारित पद्धति है। इसे आगे बढ़ा रहे हैं के पजानीवेल।
1: Well, Shri Pajanivel was conferred the Academy Puraskar Award of Sangeet Natak Academy, presented by the Honorable President of India in 2023. And he also found the Mamallan Silambam and Folk Arts Development Club in Pondicherry. He has also trained youths who were interested in Silambam.
2: Shri Dharmik Lal Chunilal Pandya, Kala Man Akhyan.
0: 94 वर्ष के हैं आप, धार्मिक लाल चुनीलाल पंड्या, और गुजरात की प्राचीन मान भट्ट मान आख्यान परंपरा के सर्वश्रेष्ठ उस्ताद हैं। आपने पगड़ी पहनी है और व्हील चेयर पर जाते हुए राष्ट्रपति जी खुद अपने आगे आकर श्री पंड्या का सम्मान।
1: In addition to preserving classical repertoire, Shri Pandya has composed new akhyans on contemporary social themes like water conservation.
2: Shri Kailash Chandra Pant, Sahitya Evam Shiksha.
0: प्रसिद्ध पत्रकार और लेखक हैं कैलाश चंद्र पंत, मध्य प्रदेश से आते हैं और शुरू से ही पत्रकारिता और खास तौर पर निष्पक्ष पत्रकारिता में आपने अपना अनूठा नाम बनाया है।
1: In 1977, Shri Kailash Chandra Pant launched weekly Jan Dharam from November 1980s as secretary of Madhya Pradesh Rashtra Bhasha Prachar Samiti. He revitalized Hindi Bhavan and upgraded the quarterly literary magazine Akshara.
0: Rashtrapati ji swayam ek seedhi utar ke niche aati hui aur Pant ji jo ki 90 saal ke hain unka samman karti hui aur ye kartal dhwani is baat ka pratik

0: कि राष्ट्र ऐसे सेवकों का ऋणी है।
1: His work earned him the विश्व हिंदी सम्मान।
2: श्री गरी मेल्ला बाल कृष्ण प्रसाद मरणोपरांत कला गायन, उनके पुत्र श्री गरी मेला अनिला कुमार।
0: अनिला कुमार उनके ब्याह पर लेगी ये पुरस्कार। गली मेला बालकृष्ण प्रसाद 78 वर्ष की उम्र में ये देह तो छोड़ गए, लेकिन अपने महत्वपूर्ण कार्यों को राष्ट्र के लिए सौंप गए। प्रतिष्ठित भारतीय शास्त्रीय और भक्ति संगीत गायक थे आप।
1: Over a career spanning six decades, Shri Prasad presented more than 6,000 concerts across India and internationally.
2: Professor Dr. Rajendra Prasad, Chikitsa, Tuberculosis.
0: 76 वर्षीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक सुप्रसिद्ध चेस्ट फिजिशियन है और क्षय रोग और खासतौर पर क्षय रोगियों की देखभाल और उनकी चिकित्सा में आपने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है।
1: प्रोफेसर डॉक्टर प्रसाद वाज़ द फर्स्ट इन इंडिया टू एस्टैब्लिश द एसोसिएशन ऑफ बीडी स्मोकिंग एंड द यूज ऑफ बायोमास फ्यूल स्मोक विद क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज ट्यूबरकुलोसिस एंड लंग कैंसर। He has worked on 35 research projects and supervised 185 MD, MS and DM.
2: Dr. Gunduru Venkat Rao, Chikitsa Gastroenterology.
0: अब एक और चिकित्सक का सम्मान होता हुआ 66 वर्षीय वेंकट राव एक प्रमुख सर्जीय गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट हैं और आपने अपनी सर्जरी के जरिए कई लोगों की जान बचाई है।
1: Well, he has performed more than 12,000 complex gastrointestinal surgeries and nearly 16,000 advanced endoscopic procedures. He has also held several important leadership positions.
2: Deepika Reddy, Kala Nritya.
0: 60 वर्षीय दीपिका रेड्डी एक मशहूर कलाकार है, कोरियोग्राफर भी हैं और समर्पित गुरु और एक सांस्कृतिक राजदूत भी है। शास्त्रीय नर्तकों की तीन पीढ़ियों से आप ताल्लुक रखती हैं।
1: श्रीमती रेड्डी वाज़ द फर्स्ट वुमन चेयरपर्सन ऑफ तेलंगाना संगीत नाटक अकादमी, गवर्निंग काउंसिल मेंबर संगीत नाटक अकादमी दिल्ली, एंड हैज रिसीव्ड प्रेस्टिजियस अवार्ड्स लाइक संगीत नाटक अकादमी अवार्ड एंड मेनी मोर।
2: डॉक्टर पलकोंडा विजय आनंद रेड्डी, चिकित्सा ऑन्कोलॉजी।
0: अगले चिकित्सक पद्मश्री प्राप्त करने जा रहे हैं डॉक्टर पलकोंडा विजय आनंद रेड्डी। 67 साल के हैं और आप मशहूर ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। इनकी यात्रा क्लिनिकल उत्कृष्टता से कहीं आगे जानी जाती है और हैदराबाद में आपने बहुत कार्य किया है।
1: Well, Dr. Reddy has delivered over 921 CME lectures, authored 112 plus publications and organized numerous international conferences to bring cutting edge technology to Indian practitioners. His advocacy efforts
2: श्री हरिचरण शाइकिया, कला सत्रिया नित्य।
0: सत्रिया असम की एक सुप्रसिद्ध कला और हरिचरण शाइकिया जी जो कि 94 वर्ष के हैं, व्हीलचेयर पर जाते हुए आपने इस कला का न सिर्फ संरक्षण किया है बल्कि इसे लोगों तक भी पहुंचाया है और बहुत सारे लोगों को सत्रिय कला का प्रशिक्षण भी दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, उनको नमस्कार करते हुए आगे जाते हुए और राष्ट्रपति जी आकर उन्हें पद्मश्री प्रदान करती हैं।
1: श्री हरिचरण साइकिया परफॉर्म्ड सत्रिय डांस बिफोर इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर एंड सेकंड प्रेसिडेंट डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आल्सो ही परफॉर्म्ड द भरगीत विद मणिराम गायन मोक्तर एट ऑल इंडिया रेडियो इन 1948।
2: प्रोफेसर वेम्पटी कुटुंब शास्त्री,
0: 86 साल के शास्त्री जी,
2: साहित्य एवं शिक्षा
0: विद्वानों में से हैं। आपने अद्वैत वेदांत दर्शन और संस्कृत काव्य शास्त्र में बहुत सारे कार्य किए हैं। नमस्कार करते हुए, अभिवादन करते हुए अमित शाह जी और माननीय प्रधानमंत्री जी का, और अब मुड़कर अभिवादन करते हुए राष्ट्रपति जी का पद्मश्री प्राप्त करने जाते हुए।
1: प्रोफेसर वेम्पटी कुटुंब शास्त्री हैज ऑथर्ड एंड एडिटेड 15 बुक्स एंड मोर देन 50 रिसर्च पेपर्स। He has also guided numerous doctoral scholars and delivered hundreds of lectures.
2: Professor Shafi Shauk, Sahitya evam Shiksha.
0: 100 से ज्यादा किताबें आपने लिखी हैं और कश्मीर से आते हैं और कश्मीरी, अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू सब भाषाओं में आपने खूब लिखा है, प्रोफेसर शफी शौक।
1: His translations include his series of books under the title The Best of Kashmiri Literature. He has also written scripts for numerous TV serials and films.
2: Shri Baldev.

0: देव सिंह खेल हॉकी कोच।
1: बलदेव सिंह जी ने बहुत सारे हॉकी खिलाड़ी इस राष्ट्र को दिए हैं, एक अनुभवी कोच हैं और आज इन्हें मिलता हुआ पद्मश्री और ये तालियां इस बात का प्रमाण कि उनका कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है।
2: Shri Baldev Singh ji is widely recognized for developing the Shahbad Markanda Hockey Nursery into one of India's most productive centers for hockey talent.
0: Shri Yumnam Jatra Singh Marnopranth Kala Nat Sankirtan, unke putra Shri Yumnam Bishan Bhor Singh.
1: Aap Manipur ke paramparik Vaishnav nritya aur sangeet ke pratishthit pratipadak the aur बीते वर्ष 11 अक्टूबर को हमारे बीच नहीं रहे, सम्मानित होते हुए युवनाम जात्रा सिंह मरणोपरांत।
2: His contributions to Nata Sankirtan are timeless. His efforts played a significant role in UNESCO's recognition of Sankirtan as an intangible cultural heritage in 2013.
0: Dr. Ashok Kumar Singh, विज्ञान एवं इंजीनियरिंग।
1: अशोक जी ने भारत में बासमती चावल की खेती का कायाकल्प करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है और इस कंट्रीब्यूशन के लिए आज राष्ट्र उन्हें सम्मान दे रहा है पद्मश्री का।
2: डॉक्टर सिंह हैज गाइडेड 34 पीएचडी एंड 5 एमएससी स्टूडेंट्स मेकिंग सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशंस टू ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड मेंटोरिंग न्यूमरस यंग प्रोफेशनल्स।
0: श्रीमती शिव शंकरी साहित्य एवं शिक्षा।
1: अबारी श्रीमती शिव शंकरी जी की। आप 1942 में जन्मी हैं और चेन्नई में इन्होंने बहुत कार्य किया और खास तौर पर लेखन में सभी भाषाओं में खासतौर पर तमिल में बहुत सारा इन्होंने लिखा है। 30 से ज्यादा उपन्यास, 40 से ज्यादा लघु उपन्यास, 100 से ज्यादा लघु कथाएं, 16 यात्रा वृत्तांत बहुत लिखा है इन्होंने।
2: Shrimati Shiv Shankari completed her Bachelor of Science degree as a university rank holder, reflecting her early academic excellence. She was also selected as the Woman of the Year 2000 by the International Women's Association. She was also one of the four writers who were recorded in her own voice for the archives of the U.S. Library of Congress.
0: Dr. R. Sridhar, Community Radio.
1: श्रीधर जी आकाशवाणी के उप महानिदेशक रहे और विज्ञान का एक लंबा सीरियल इन्होंने बनाया जो किसी भी देश में बना हुआ सबसे ज्यादा बड़ा सीरियल था, विज्ञान सीरियल।
2: डॉक्टर श्रीधर इज इन एसोसिएशन विद द नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलप द लॉन्गेस्ट रेडियो साइंस सीरियल फॉर चिल्ड्रन टाइटल्ड द ह्यूमन एवोल्यूशन मानव का विकास, ब्रॉडकास्ट इन 18 इंडियन लैंग्वेजेस साइमल्टेनियसली थ्रू 200 रेडियो स्टेशंस। ही हैज आल्सो प्लेड अ सेंट्रल रोल इन लॉन्चिंग ज्ञान दर्शन ग्रुप ऑफ चैनल्स, द फर्स्ट 24-आवर एजुकेशनल टेलीविजन चैनल।
0: प्रोफेसर श्याम सुंदर, चिकित्सा कालाजार।
1: आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में मेडिसिन के मानद प्रोफेसर हैं। संक्रामक रोगों खासतौर पर विसरल लिशमैनियासिस कालाजार में आपने बहुत कार्य किया है।
2: प्रोफेसर सुंदर इज रैंक्ड एट द टॉप इन द वर्ल्ड इन द फील्ड ऑफ लिशमैनियासिस एंड कालाजार फ्रॉम द ईयर 2013 टू डेट। ही हैज पब्लिश्ड एक्सटेंसिवली इन एकेडमिक जर्नल्स इंक्लूडिंग NEJM।
0: डॉक्टर एस जी सुशील अम्मा, समाज सेवा।
1: 24 मई 1939 को आप कर्नाटक में जन्मी हैं और प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्ता और खास तौर पर अपने सेवा आश्रम के जरिए बहुत समाज सेवा का आपने कार्य किया है। 5 दशक कोई कम समय नहीं होता लालिमा जी, 5 दशक से ज्यादा इन्होंने समाज सेवा की है और अब हाथ पकड़कर आगे जाती हुई और सफेद साड़ी इन्होंने पहनी और झुककर अभिवादन करती हुई माननीय गृह मंत्री जी का और माननीय प्रधानमंत्री जी का और अब माननीय राष्ट्रपति जी का अभिवादन करती हुई।
2: Dr. Sushil Amma has also implemented extensive rural development and women empowerment programs across Karnataka, including adult literacy campaigns, formation of self-help groups and Mahila Mandals, and vocational and entrepreneurship training, microcredit initiatives, and panchayat leadership development. She has also worked closely with tribal

0: communities through sustainable agriculture and livelihood projects.
1: Shri N. Swaminathan, Kala Bhakti Sangeet.
2: तंजावुर से आते हैं और तमिल संगीत के क्षेत्र के प्रतिष्ठित कलाकार हैं और आपने तमिल भाषा में भगवान शिव के भजनों का पारंपरिक एक प्रामाणिक भजन संग्रह भी निकाला है.
0: He became a master of the art and served as Othuvar in many temples of Tamil Nadu and later worked at Thiruthani Lord Murugan Temple for nearly 26 years. He has served as a teacher in VS Trust, a charitable trust to Lord Nataraja Temple in Chidambaram.
1: Dr. Eval Krishna Thakral, Chikitsa Ayurved.
2: Dr. Thakral, Ayurvedic Padhati ke Shalya Chikitsak hai aur Bharat mein Kshar Sutra Chikitsa ke madhyam se kai rogon ke upchar aur khas kar bronchial asthma ke upchar ke liye inhone ek laghu shalya prakriya karma vedan bhi आगे बढ़ाई है.
0: डॉक्टर केवल कृष्ण ठकराल मूव टू सैन फ्रांसिस्को यूएसए इन 1976 एज अ रिसर्च सर्जन. ही हैज बीन इनवाइटेड टू ओवर 80 सेमिनार्स एंड कॉन्फ्रेंसेस टू शेयर हिज नॉलेज एंड हिज प्रोफाइल हैज बीन पार्ट ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस आल्सो.
1: डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी मरणोपरांत विज्ञान एवं इंजीनियरिंग, उनके पुत्र श्री रमन कुमार त्रिवेदी.
2: ज्यादा दिन नहीं हुए, 12 मई को ही आपका निधन हो गया था. डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी एक कृषि वैज्ञानिक थे और राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति रह चुके हैं. पुरस्कार प्राप्त करते हुए इनके पुत्र रमण कुमार त्रिवेदी.
0: डॉक्टर त्रिवेदी सिंस द लास्ट 5 इयर्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ थिंक ग्लोबल एक्ट लोकल इनिशिएटेड अ प्रोग्राम टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ मेज.
1: श्री अरविंद वैद्य, कला थिएटर.
2: वरिष्ठ कलाकार हैं और 6 दशकों से ज्यादा समय से आपने गुजराती रंगमंच, हिंदी टेलीविजन और फिल्मों के क्षेत्र में काम किया है. काले रंग का जोधपुरी सूट पहना हुआ.
0: श्री वैद्य फाउंडेड द नाट्य संपदा, हिज ओन प्रोडक्शन कंपनी थ्रू विच ही प्रोड्यूस्ड, डायरेक्टेड एंड एक्टेड इन मोर देन 75 फुल लेंथ प्लेज. ईच वर्क कैरीड द क्वाइट वेट ऑफ डेडिकेशन, गैदरिंग रिकॉग्निशन अलोंग द वे. In 1993, Mumbai beckoned him and opened a wider horizon. He's multilingual and
1: Professor
0: very adaptable.
1: Jujhar Vasi, Vigyan Evam Engineering.
2: Professor Jujhar Vasi, IIT Bombay mein Professor Emeritus hain. Aur aapne micro electronics aur semiconductor aur solar photovoltaics ke kshetron mein bahut kaarya kiya hai.
0: Professor Vasi, throughout his career in both semiconductors and solar photovoltaics, he stressed the importance of interdisciplinary, collaborative and inclusive research, which he thought was necessary, especially on major national missions. He has published about 200 papers in leading journals.
1: Dr. Narayan Vyas, Puratattva Vigyan.
2: Dr. Narayan Vyas, विश्व के सुप्रसिद्ध पुरातत्वविदों में से एक है. खास तौर पर मध्य प्रदेश में भीमबेटका और सांची और गुजरात के रानी जीरी वाव सीढ़ी कुआं के योगदान में आपने बहुत ही योगदान दिया है.
0: डॉक्टर व्यास वाज एसोसिएटेड विद द नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडियन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड कमेटी, डोमेन एक्सपर्ट मेंबर इन नेशनल स्क्रीनिंग एंड इवैल्यूएशन कमेटी. ही वाज अवार्डेड द प्रेस्टिजियस डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकंकर अवार्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश.
1: प्रोफेसर गंभीर सिंह योन्जन, साहित्य एवं शिक्षा.
2: गंभीर सिंह जी दार्जिलिंग पहाड़ियों के एक प्रतिष्ठित वनस्पति शास्त्री, शिक्षाविद, पर्यावरणविद और संस्थान के निर्माता हैं और खास तौर पर वनस्पति विज्ञान में आपने बहुत कार्य किया है.
0: प्रोफेसर योन्जन्स कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशनल एंड इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट ऑफ दार्जिलिंग हिल रीजन आर पायनियरिंग एंड फार रीचिंग. A passionate advocate of scientific temper and environmental awareness, he led a 6-year conservation movement that was a huge, huge success.
1: Shri Halley Warr, Samaj Seva.
2: अब बारी Halley Warr जी की. आप पर्यावरणविद और खासी लोगों के स्वदेशी ज्ञान के लिए एक प्रतिष्ठित नाम है.
0: Shri Warr has spent more than 50 years nurturing and building the iconic living route bridges of the

0: East Khasi Hills. Since the age of 10, he has meticulously guided the aerial roots of the Ficus elastica tree to create durable living structures. His most celebrated work, the Omkar Living Root Bridge, stands as a testament to his patience and profound understanding of natural ecosystems.
1: और अब सचिव महोदय आते हुए, क्योंकि ये अंतिम सम्मान था आज का, और राष्ट्रपति,
2: माननीय राष्ट्रपति महोदय, आपकी आज्ञा हो तो समारोह की कार्यवाही समाप्त की जाए। धन्यवाद महोदय।

0: we can see everybody's standing.
1: राष्ट्रपति जी इस वक्त धीरे धीरे दरबार इस गणतंत्र मंडप से प्रस्थान करती हुई सबका अभिवादन करती हुई उनके ठीक पीछे उपराष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री जी अभिवादन करते हुए ठीक पीछे अमित शाह जी और मनसुख मांडविया जी ये तमाम और अब आ रहे हैं ओम बिरला जी पीछे श्री वेंकैया नायडू जी तमाम गणमान्य अतिथि धीरे धीरे सबका अभिवादन करते हुए गणतंत्र मंडप से बाहर जाते हुए
0: There is a palpable excitement in the hall, which was jam-packed with the awardees and their relatives who had come to receive the prestigious Padma Awards. It is indeed a moment of pride.
2: So please pay your attention, please. I request all the award winners to move towards your right side.
1: The second part of the ceremony. आकाशवाणी से उसका आंखों देखा हाल भी सुनना ना भूले तकनीकी टीम के सदस्य थे अशोक कुमार मिश्र कमल सिंह और हेमराज मीणा ओबी इंचार्ज हमारे साथ तुषार पराशर और इस कार्यक्रम के प्रोड्यूसर प्रमोद कुमार मैं महेंद्र सिंह लालस अपनी साथी कमेंटेटर लालिमा अनेजा डैंग के साथ अब आपको लिए चलता हूं आकाशवाणी के स्टूडियो वापस नमस्कार
3: अभी आप राष्ट्रपति भवन से भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की गरिमामयी उपस्थिति में आयोजित हुए नागरिक अलंकरण समारोह का सजीव विवरण सुन रहे थे विवरण दे रहे थे महेंद्र सिंह लालस और लालिमा अनेजा ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया
4: ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है श्रोताओं आइए अब सुनते हैं एक देशभक्ति गीत

श्रोताओं, अभी आप एक देशभक्ति गीत सुन रहे थे। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। संध्या के 6 बजने को है। अब कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कृषि जगत कार्यक्रम।

0: कृषि जगत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है।
1: अरे वाह, तुम्हारी गाय तो इस बार खूब दूध दे रही है। राज क्या है भाई?
2: राज नहीं, समझदारी है। मैंने AI अपनाया।
1: AI? ये क्या है?
2: AI यानी अच्छी नस्ल और समय पर गर्भाधान।
1: मतलब कम खर्च में ज्यादा फायदा।
2: बिल्कुल, दूध भी बढ़ा, हर साल बछड़ा भी, बीमारियां कम हुई और आमदनी डबल।
3: हाँ, AI अपनाओ, खुशहाली लाओ, अच्छी नस्ल से लाभ कमाओ।
4: पशु चिकित्सक की सलाह लें, समय पर कृत्रिम गर्भाधान कराएं और पशुपालन को बनाएं मुनाफे का मजबूत साधन। कृत्रिम गर्भाधान, हर किसान की नई उड़ान।
0: किसान साथियों, आज लाइव फोन इन कार्यक्रम के माध्यम हम आपको सुनवाने जा रहे हैं पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवा विभाग द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम

0: ये आई, ये क्या है?
1: AI यानी अच्छी नस्ल और समय पर गर्भाधान।
0: मतलब कम खर्च में ज्यादा फायदा।
1: बिल्कुल, दूध भी बढ़ा, हर साल बछड़ा भी, बीमारियां कम हुई और आमदनी डबल।
2: हाँ, AI अपनाओ, खुशहाली लाओ, अच्छी नस्ल से लाभ कमाओ।
3: पशु चिकित्सक की सलाह लें, समय पर कृत्रिम गर्भाधान कराएं और पशुपालन को बनाएं मुनाफे का मजबूत साधन। कृत्रिम गर्भाधान, हर किसान की नई उड़ान।
4: किसान साथियों, आज लाइव फोन इन कार्यक्रम के माध्यम हम आपको सुनवाने जा रहे हैं पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवा विभाग द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम कृत्रिम गर्भाधान, हर किसान की नई उड़ान की 7वीं कड़ी। लाइव फोन इन कार्यक्रम का विषय है लिंग के आधार पर वर्गीकृत वीर्य और कृत्रिम गर्भाधान। इस विषय से संबंधित जानकारी हमें देंगे पशुपालन विभाग के वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नागनाथ भोजनी। विषय से संबंधित प्रश्न पूछने के लिए हमारे किसान भाई कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर 03192232558। नंबर हम पुनः दोहराते हैं 03192232558। लीजिए सुने कृत्रिम गर्भाधान, हर किसान की नई उड़ान की 7वीं कड़ी।
5: नमस्कार साथियों, पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विभाग द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम कृत्रिम गर्भाधान, हर किसान की नई उड़ान की 7वीं कड़ी में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज का विषय है लिंग के आधार पर वर्गीकृत वीर्य और कृत्रिम गर्भाधान। इस विषय पर विस्तार से बताने के लिए हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं पशुपालन विभाग के वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नागनाथ भोजने। डॉक्टर साहब, सबसे पहले कार्यक्रम में हम आपका स्वागत करते हैं।
6: नमस्कार मैम।
5: साथियों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि ये लाइव फोन इन प्रोग्राम है, इस विषय से संबंधित आपके मन में कोई सवाल हो तो आप डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि कृत्रिम गर्भाधान होता क्या है।
6: मैम, कृत्रिम गर्भाधान यानी आर्टिफिशियल इंसिमिनेशन एक ऐसी वैज्ञानिक टेक्निक है जिसमें साइंटिस्ट जो सुपीरियर बुल्स रहता है, सुपीरियर गोट रहता है, सुपीरियर सुअर रहता है, उसका सीमेन निकाल के एक टेक्निक, एक प्रायोगिक विधि का उपयोग करके जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है, चाहे वो गोट हो, बुल हो, काउ हो, बफेलो हो या सुअर हो, उसमें डाला जाता है और हम लोगों को जो एक अच्छा नस्ल पैदा करने में उसका मदद होता है। और ये गर्भधान जो होता है इसमें नस्ल सुधार, अच्छा दूध देने वाला बछड़ा आगे चल के फ्यूचर में, और उसमें जो है रोग नियंत्रण करने वाला सिस्टम है।
5: अच्छा।
6: ताकि आगे चल के कुछ कुछ जो खतरनाक बीमारी है जैसे ब्रुसोलोसिस है, IBR है, ट्यूबरकुलोसिस है, ये बीमारी फैलता नहीं।
5: अच्छा, तो हमारे किसान साथियों को ये बताया कि सेक्स सेंटेंट सीमेन क्या है और ये सामान्य सीमेन से कैसे अलग होता है।
6: मैम, सेक्स सॉर्टेड सीमेन ऐसा सीमेन है
5: जी,
6: जैसे इसमें नाम में ही लिखा है कि सॉर्टेड किया रहता
5: जी।
6: है जो हम लोग का जो नॉर्मल सीमेन रहता है उसमें एक्स क्रोमोजोम और वाई क्रोमोजोम दोनों रहते हैं, ये मिक्स रहते हैं।
5: अच्छा।
6: और ये जो सीमेन है इसमें एक्स क्रोमोजोम और वाई क्रोमोजोम एक मशीन में डाला जाता है। तो और जैसा हम लोगों को ज्ञात है एक्स क्रोमोजोम और वाई क्रोमोजोम में, तो एक्स क्रोमोजोम में DNA की मात्रा 2-3% ज़्यादा रहते हैं, इवन हम लोग 3-4% भी बोल सकते हैं। एक्स क्रोमोजोम में ये DNA की संख्या ज़्यादा रहने की वजह से वो फ्लो साइटोमेट्री में जब हम लोग सीमेन डालते
5: जी
6: तो ये सेपरेट हो जाता है। उसमें एक टेक्निक रहता है फ्लो साइटोमेट्री में, तो जो DNA एक्स्ट्रा रहता है तो सेपरेट हो जाता है, एक्स क्रोमोजोम सेपरेट हो जाता है, वाई क्रोमोजोम सेपरेट हो जाता है। और इसका जो एक्यूरेसी है नियर अबाउट 85-90% एक्यूरेसी है इसका।
5: अच्छा।
6: तो इसमें जिसको समझो मेल चाहिए तो वाई क्रोमोजोम सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसको फीमेल चाहिए उसको एक्स क्रोमोजोम सेलेक्ट कर सकते हैं।
5: अच्छा। डॉक्टर साहब, यहाँ हम आपको रोकना चाहेंगे, एक श्रोता हमारे से जुड़ चुके हैं, देखते हैं कहाँ से कौन हमसे जुड़ रहा है।
7: हेलो।

0: हाँ
1: हेलो
0: नमस्कार।
1: हेलो
2: नमस्कार नमस्कार मैडम, मैं दामोदर बोल रहा हूँ आटमपाड़ से।
1: जी दामोदर जी, आप अपना प्रश्न डॉक्टर साहब से पूछिए।
2: डॉक्टर साहब नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: सर ये जो सेक्सोटेड जो सीमेन है, अभी जो ईटीटी जो कर रहे हैं ना सर, वो ईटीटी का जो प्रक्रिया क्या है और ईटीटी में जो है उसको कैसा गर्भाधान करने का प्रक्रिया क्या है और उसमें कितना सक्सेस रेट कितना है और उसमें कितना फीमेल आएगा और कितना मेल आएगा,
0: ओके
2: ये
0: ओके
2: थोड़ा सा मेरे को डाउट था सर।
0: ठीक है ठीक है। अभी आपने इसमें दो सवाल पूछे हैं सर। जैसे हम लोग अभी डिस्कशन कर रहे हैं सिक्स सॉर्टेड सीमेन में,
2: जी
0: तो और आपने पूछा है दूसरा एक सवाल कि एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी में। ये दोनों मैं कवर कर लेता हूँ। सिक्स सॉर्टेड सीमेन में हम लोग फिलहाल अंडमान निकोबार में जो फीमेल बच्चा पैदा करने के लिए हम लोग सिक्स सॉर्टेड सीमेन यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो जिस दिन गाय गर्म होता है
2: जी
0: उसी दिन हम लोग सेक्स सॉर्टेड सीमेन जो रिसिपिएंट फीमेल है उसमें हम लोग डिपॉजिट कर लेते हैं। तो
2: अच्छा
0: उसमें जो है जैसे हम लोग का नॉर्मल आर्टिफिशियल इंसिमिनेशन होता है उसी
2: जी
0: तरह सेक्स सॉर्टेड सीमेन का इंसिमिनेशन भी होता है। फ़र्क इतना ही है कि जो नॉर्मल आर्टिफिशियल इंसिमिनेशन करते हैं उसमें जो हम लोग कन्वेंशनल सीमेन स्ट्रॉ यूज़ करते हैं उसमें 20 मिलियन स्पर्म रहते हैं। ठीक है,
2: अच्छा
0: और जो
2: जी
0: सेक्स सॉर्टेड सीमेन है उसमें खाली हम लोग फीमेल के लिए जो हम लोग इच्छित मादा पैदा करना चाहते हैं हम लोग, तो उसमें खाली 2 to 4 मिलियन एक्स क्रोमोजोम रहते हैं। और उसमें
2: जी
0: कभी कभार ऐसा होता है कि उसका जो एक्यूरेसी है जैसे हमने बताया 85% to 90% एक्यूरेसी रहता है। कभी कभार उसमें 15% जो है वाई क्रोमोजोम भी रहते हैं, तो उसमें मेल बछड़ा भी पैदा होने का चांसेस 10 से 15% है। और इसके अलावा आपने एक दूसरा सवाल पूछा है
2: जी
0: कि
2: वो एम्ब्रियो ट्रांसफर के
0: एम्ब्रियो
2: लिए भी।
0: ट्रांसफ़र के लिए, ये थोड़ा
2: हाँ
0: अलग टेक्निक है। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं, जो रिसिपिएंट काऊ है उसको हम
2: जी
0: लोग पहले सेलेक्ट करते हैं कि वेदर वो गाय हेल्दी है, कि उसमें हम लोग डाल सकते कि नहीं। और उसमें सेक्स और सॉरी एम्ब्रियो ट्रांसफ़र जब हम लोग करते हैं तो 3 लैक्टेशन तक हम लोग गाय सेलेक्ट करते हैं। तो
2: अच्छा
0: अगर 3 लैक्टेशन के ऊपर अगर कोई गाय है तो हम लोग जनरली उसको सिलेक्शन में नहीं लेते। ठीक है, और उसको सिलेक्शन करने के बाद हम लोग उसका हम लोग स्ट्रेस सिंक्रोनाइजेशन करते हैं। जैसे एक पहला दिन में एक इंजेक्शन देने के बाद फिर हम लोग 10वां दिन दूसरा इंजेक्शन देते हैं, और उसमें बाद उसमें सीएल फॉर्मेशन हुआ है कि नहीं वो देख लेते हैं। क्योंकि हम लोग जो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं वो 7 दिन का बच्चा हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं उसमें। तो
2: अच्छा
0: जब
2: अच्छा
0: तक हम लोग सीएल तैयार नहीं होता, मतलब सीएल मतलब वो क्या करता है कि जो हार्मोन ऑफ प्रेगनेंसी है प्रोजेस्टेरॉन वो रिलीज़ करता है, तो वो
2: अच्छा
0: रिलीज़ होने के बाद ही हम लोग उसमें अगर सीएल है तभी हम लोग उसमें 7 दिन का एम्ब्रियो डालते हैं। ठीक है।
2: सर मेरा मेरा और एक डाउट था सर, ये जो एम्ब्रियो ट्रांसफर जो कर रहे हैं
0: हाँ
2: सस्पेंड, जो आप अभी जो अभी इंसेट करते हैं ना 7 दिन का जो बच्चा है एम्ब्रियो मेरा
0: हाँ हाँ
2: एम्ब्रियो, तो वो क्या उनका मदर का लैक्टेशन क्या है, मदर रिकॉर्ड क्या रहेगा, उनका मदर का मिलकर रिकॉर्ड क्या है, यूटीपी वाला बच्चा क्या भी हमारा इंडिया में क्या दूध दे रहा है क्या है।
0: अभी देखो ये आज ये जो प्रोजेक्ट है उसमें
2: जी
0: जो हम लोग का अंडमान निकोबार में जो 7 दिन का एम्ब्रियो आता है वो एनडीडीबी आनंद से आता है। ठीक है, तो
2: अच्छा
0: उन्होंने जो जो सायर और डैम मतलब जो बुल है वो
2: जी
0: एक अच्छा नस्ल वाला रहता है, और जो मदर है वो भी असल अच्छा नस्ल वाला रहता है। उसका पीडिग्री रहता है, मतलब उसका अम्मा कितना दूध देता है अब्बा कितना दूध देता है उसमें सब अब्बा कैसा है वो सब उसका पीडिग्री हिस्ट्री रहता है। तो वो हिसाब से अच्छा नस्ल वाला का ही फीमेल उसमें भी सेक्स सॉर्टेड वाला ही एम्ब्रियो हम लोग डालते हैं। मेल अगर गलती से मेल भी पैदा हुआ तो वो भी अच्छा नस्ल का ही होता है।
2: सर ये कौन सा ब्रीड का होता है सर, साहीवाल या
0: ब्रीड
2: देसी
0: ब्रीड आप जैसा चाहोगे वो हिसाब से, जैसा होलस्टेन फ्रिजन का रहेगा, जर्सी का रहेगा, गिर का रहेगा, साहीवाल का रहेगा। फिलहाल हम लोग अंडमान निकोबार में जर्सी क्रॉस और साहीवाल क्रॉस का और गिर क्रॉस का एम्ब्रियो हम लोग यूज कर रहे हैं।
2: जी जी सर इसमें कितना मतलब सक्सेस रेट रहता है।

0: एम्ब्रियो ट्रांसफर करने से
1: अभी जो हम लोग का स्कीम चल रहा है, हम लोग 40 काउज में ये ट्रांसफ़र किया था, तो अब तक हम लोग को 50% सक्सेस रेट मिला है, लेकिन ऑफिशियली उसका जो सक्सेस रेट है 25-30% है।
2: बहुत बहुत धन्यवाद दामोदरन जी। सर, हम अगला प्रश्न आपसे यही जानना चाहेंगे कि जो सीमेंट जो तकनीक है, ये क्यों महत्वपूर्ण मानी जाती है?
1: मैडम, जैसे हम लोग आजकल देख रहे हैं कि बैल का यूज बहुत कम हुआ है,
2: अच्छा।
1: क्योंकि पावर टिलर आया है, ट्रैक्टर आया है,
2: जी।
1: और इससे बैल का जो वैल्यू था बहुत कम हुआ। अननेसरली वो फार्मर को पालना पड़ रहा है, क्योंकि उसका कोई काम बचा नहीं है अभी ज़्यादा।
2: अच्छा।
1: तो जैसे हम लोग ये सेक्स सॉर्टेड यूज़ करेंगे, हम लोग को जितना चाहिए उतना मादा फीमेल मिल जाएगा, बच्चा मिल जाएगा, ताकि अननेसरली जो बुल्स हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं वो कम हो जाएंगे, और आगे चल के जो ये अच्छा नस्ल का ऑफस्प्रिंग हम लोग को मिल रहा है, तो उससे हम लोग को भविष्य में अच्छा दूध भी मिलेगा और डायरेक्टली हम लोग को इनकम भी बढ़ जाएगा इससे।
2: तो चलिए, बहुत ही अच्छी बात है डॉक्टर साहब। एक कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं, देखते हैं कहाँ से हैं। हेलो,
3: हेलो, नमस्कार।
2: नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं?
3: मैं शिमला से बात कर रहा हूँ, राकेश।
2: शिमला से राकेश बात कर रहे हैं भाई, बहुत दूर से फोन मिला है हमें। राकेश जी, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं?
3: तो सबसे पहले तो मेरा डॉक्टर साहब को नमस्कार जी।
1: नमस्कार।
3: तो मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि अगर कोई जो गाय जो है बछड़ा को पैदा करती है, तो सबसे पहले हमें बछड़े को किस तरह से स्वास्थ्य करना चाहिए, और जब हम गाय का दूध बछड़े को पिलाते हैं तो किस तरह से पिलाना चाहिए, क्या क्या सावधानी रखनी पड़ती है हमको? जैसे हम कई बार बछड़े को दूध पिलाते हैं और गाय गाय जो है बछड़े को साफ करती है, तो इस तरह से जो है किस तरह से हमें ध्यान रखना चाहिए, ये मेरा
1: ठीक है,
3: प्रश्न है।
1: ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है आपका सर जी।
3: जी
1: जब भी गाय बछड़ा दे देती है,
3: जी जी
1: तो आपको पहला काम करना है कि वो बछड़ा को 1 घंटा के अंदर उसको आपका माँ का दूध पिला देना चाहिए, ठीक
3: जी
1: है,
3: जी
1: जो
3: जी
1: हम लोग उसको कोलेस्ट्रम बोलते हैं उसको।
3: जी जी
1: तो कोलेस्ट्रम जो है उसमें सभी प्रकार के इम्यूनोग्लोबुलिन्स रहते हैं, मतलब उसका जो ताकत बढ़ने वाला जो नेचुरल दवा है ना,
3: जी
1: गाय का दूध में 1 घंटा के अंदर पिलाने से सब कुछ उसको मिल जाएगा, और वो ज़िंदगी में कभी बीमार नहीं पड़ेगा,
3: जी
1: ठीक है। एक गट क्लोजर फिनोमिनन यूज़ होता है एनिमल्स में, जैसा ये जो कोलेस्ट्रम है ना, अगर आप जितना लेट से उसको पिलाओगे
3: जी
1: उतना वो जो गट का अंदर जो विलाय रहता है क्लोज हो जाता है, तो जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स अब्सॉर्ब करने वाला जो कोलेस्ट्रम में रहता है ना, पहला वाला दूध में, वो एक्सेप्ट नहीं होता है। तो इसलिए बाद में बछड़ा को डायरिया लग जाना, ये हो जाना, ऐसा बीमारी आ जाता है, ई कोलाई इन्फेक्शन हो जाना, वो सब कुछ आ जाता है। तो इसलिए जो पहला वाला दूध है, आप 1 घंटा के अंदर आप बछड़ा को पिला लीजिए।
3: जी
1: दूसरा चीज़ है, जो बच्चा का नाभि रहता है ना,
3: हाँ
1: कभी भी आप काटते समय अच्छा एक आयोडीन साथ में रख लेना,
3: जी
1: साफ सुथरा ब्लेड रख देना, काटने के बाद आयोडीन से उसको पूछने के बाद एक जो हम लोग का पास धागा रहेगा उससे बांध देना, ताकि टिटैनस का जो बीमारी है वो नहीं होगा, ठीक है। और आपका जो जो बचना रहेगा बाद में, जितना भी हम लोग का वैक्सीन रहेगा, वैक्सीन प्रॉपरली लगवा दीजिए, ताकि आगे फ्यूचर वाला जो जो होने वाला बीमारी है वो नहीं होगा।
3: जी, धन्यवाद जानकारी देने के लिए।
1: ठीक है,
2: बहुत बहुत
1: थैंक यू।
2: धन्यवाद राकेश जी। सर, अब हम आगे बढ़ते हैं और इसी इससे संबंधित क्वेश्चन आपसे करना चाहेंगे कि इस तकनीक से जो है हम इच्छित बछड़ा या बछड़ी कैसे प्राप्त कर सकते हैं?
1: जैसे हमने बताया मैम कि ये जो फ्लो साइटोमेट्री से हम लोग सीमेन एक्स क्रोमोसोम अलग करते, वाई क्रोमोसोम अलग करते। समझो कोई फार्मर चाहता है कि मुझे बुल चाहिए,
2: जी।
1: अच्छा क्वालिटी का बुल चाहिए, तो हम लोग वाई क्रोमोसोम वाला सीमेन यूज़ करेंगे,
2: अच्छा।
1: और जिसको समझो मादा चाहिए तो उसमें हम लोग एक्स क्रोमोसोम वाला सीमेन यूज़ करेंगे। बाय चांस ऐसा होता है कि कभी कभार फ्लो साइटोमेट्री में एक थोड़ा सा एरर आ जाता है, 10-15% एरर आ जाता है, तो उस टाइम अभी जो जो सुपीरियर सीमेन में भी स्पर्म रहेगा उसमें अगर बाय चांस उसने ओवा के साथ क्रॉस कर लिया, तो प्रेगनेंसी पकड़ लिया, तो मेल होने का भी चांस उसमें 15% है, और आपने वाई क्रोमोसोम यूज़ किया तो फीमेल होने का भी चांस 15% है।
2: अच्छा, तो अब हम यही जानना चाहते हैं।

0: बताएंगे कि सेक्स सेटिंग की जो प्रक्रिया होती है वो किस सिद्धांत पर आधारित होती है?
1: जैसे हमने पहले बताया मैम, जैसे ही कोई जो सुपेरियर बुल रहता है उससे हम लोग सीमेन कलेक्शन कर लिया, तो करने के बाद हम लोग एक जो विशिष्ट मशीन रहता है उसको फ्लो साइटोमीटर में बोलते हैं, उसमें से हम लोग ये सीमेन पास कर लेते हैं, और सीमेन पास करने के बाद जो उसमें जो मैग्नेटिक एनर्जी रहते हैं उससे, और जैसा बताया कि हमने कि एक्स क्रोमोसोम में 3-4% डीएनए एक्स्ट्रा रहता है, तो वो जो टेक्निक है उसमें वो फ्लो साइटोमीटर बराबर डिटेक्ट कर लेते हैं कि जिस क्रोमोसोम ज़्यादा है एक्स में वो सेपरेट कर लेता है और वाई सेपरेट कर लेता है।
0: अच्छा।
1: ये एक सिद्धांत है उसका।
0: ओके।
1: तो उसी में से वो सेपरेट हो जाते हैं।
0: डॉक्टर साहब, एक कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं। हेलो।
2: हाँ जी मैडम, नमस्ते।
0: नमस्कार सर, कहाँ से बोल रहे हैं?
2: मैं डॉलीगंज शिव कॉलोनी से बोल रहा हूँ मैडम।
0: डॉलीगंज शिव कॉलोनी से यादव जी बोल रहे हैं। यादव जी, पूछिए अपना प्रश्न डॉक्टर साहब से।
1: हाँ नमस्ते।
2: हाँ नमस्ते सर।
1: हाँ बोलिए बोलिए
2: सर। हम ये जानना चाहते थे कि ये जो कृत्रिम सेक्स सॉर्टेड सीमेन से जो गाय का जो एआई होता है, तो इसमें जो है पशुपालक को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और जो एआई करता है, जो पशु चिकित्सक आते हैं जो एआई करते हैं, तो उनको किस उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि जो है वो एआई जब करते हैं तो वो सफल हो, मतलब
1: अच्छा।
2: उससे जो गर्भाधान ठहरे गाय का।
1: हाँ ठीक, जैसे आपने सही सवाल पूछा है, जब भी आपका गाय गर्म होता है, हम लोग लोकल लैंग्वेज में उसमें गर्म बोलते हैं, स्ट्रेस में आ जाता है, तब ओनर ने ध्यान रखना चाहिए कि उनका जो गाय है वो गाय कितना बजे हीट में आया, ठीक है, तो अच्छा अच्छा ओनर रहने से उसका गाय के ऊपर उनका ध्यान रहता है, सुबह शाम तो ध्यान रहता है, ये चारा डालते समय ध्यान रहता है। तो जब गाय गर्म हो जाता है तो एक AMPM रूल हम लोग को फॉलो करना चाहिए, जब सुबह गाय गर्म होती है तो शाम को हम लोग को आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन नहीं तो सेक्स सॉर्टेड सीमेन हम लोग को डालना चाहिए, ठीक है। दूसरा चीज़ है कि वो गाय हम हेल्दी रहना चाहिए, और उसका पहले आपने डीवर्मिंग किया वाला रहना चाहिए। कभी कभार ऐसा होता है गाय हेल्दी नहीं रहने से, पेट में कीड़ा रहने से, ये गाय में गर्भधान की चांसेस बहुत कम रहते हैं। अगर हेल्दी गाय रहेगा तो गर्भधान बराबर हो जाएगा। दूसरा सवाल आपने पूछा था कि पशु चिकित्सक या वेटनरी कंपाउंडर के बारे में, वो जब भी पूछता है कि आपका गाय कब गर्म हुआ है, तो आपका जिम्मेदारी बनता है कि सही टाइम बता दे, क्योंकि हम लोगों को टाइम बहुत मायने रहता है, क्योंकि जो ओहा रिलीज होता है गाय गर्म होने के बाद बराबर 12-18 घंटा के अंदर ओहा रिलीज होता है, उसका पहले अगर आपने AI करवाया तो भी उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, उसका बाद में भी आपने AI करवाया तो भी उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो इसलिए हम लोग को ये टाइमिंग फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। 12-18 घंटा के अंदर हम लोग को आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करना चाहिए, ठीक है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद यादव जी, आपके उत्तर आपको मिल गए होंगे, धन्यवाद।
3: अरे वाह, तुम्हारी गाय तो इस बार खूब दूध दे रही है, राज क्या है भाई?
4: राज नहीं, समझदारी है, मैंने AI अपनाया।
3: AI? ये क्या है?
4: AI यानी अच्छी नस्ल और समय पर गर्भाधान,
3: मतलब कम खर्च में ज्यादा फायदा।
4: बिल्कुल, दूध भी बढ़ा, हर साल बछड़ा भी, बीमारियां कम हुई और आमदनी डबल।
5: हाँ, AI अपनाओ, खुशहाली लाओ, अच्छी नस्ल से लाभ कमाओ।
6: पशु चिकित्सक की सलाह लें, समय पर कृत्रिम गर्भाधान कराएं और पशुपालन को बनाएं मुनाफे का मजबूत साधन। कृत्रिम गर्भाधान, हर किसान की नई उड़ान।
3: अरे वाह, तुम्हारी गाय तो इस बार खूब दूध दे रही है, राज क्या है भाई?
4: राज नहीं, समझदारी है, मैंने AI अपनाया।
3: AI? ये क्या है?
4: AI यानी अच्छी नस्ल और समय पर गर्भाधान,
3: मतलब कम खर्च में ज्यादा फायदा।
4: बिल्कुल, दूध भी बढ़ा, हर साल बछड़ा भी, बीमारियां कम हुई और आमदनी डबल।
5: हाँ, AI अपनाओ, खुशहाल

0: लाओ, अच्छी नस्ल से लाभ कमाओ।
1: पशु चिकित्सक की सलाह लें, समय पर कृत्रिम गर्भाधान कराएं और पशुपालन को बनाएं मुनाफे का मजबूत साधन। कृत्रिम गर्भाधान, हर किसान की नई उड़ान।
2: किसान साथियों, आइए आगे बढ़ाते हैं कार्यक्रम को। और डॉक्टर साहब से अब हम ये जानना चाहेंगे कि पशुपालकों को इस तकनीक का उपयोग करते समय कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए।
3: मैम, सही सवाल है। जब भी पशुपालक अपना गाय पालते हैं
2: जी,
3: तो उनको ध्यान रखना चाहिए कि पहले संतुलित आहार गाय को देना चाहिए। तो संतुलित आहार मतलब क्या है कि सुबह गाय को अगर आपने हरा चारा दिया है तो शाम को आपको सूखा चारा देना है। और गाय जब खुद का मेंटेनेंस के लिए उसका गाय को 1.5 kg का कॉन्सेंट्रेट फीड देना चाहिए। कॉन्सेंट्रेट फीड मतलब यहाँ लोकल लैंग्वेज में दाना बोलते हैं
2: जी,
3: तो वो भी बहुत ज़रूरी है। और जैसा आपका गाय अगर 6 लीटर दूध देता है तो तीन लीटर दूध का पीछे और 1 kg एक्स्ट्रा कॉन्सेंट्रेट फीड देना चाहिए। मतलब 6 kg दूध देता है तो उसके लिए आपको 2 kg एक्स्ट्रा मतलब 2.5 से 3 kg के आसपास आपको कॉन्सेंट्रेट फीड देना चाहिए, ताकि उसका जो हेल्थ स्टेटस है अच्छा रहेगा, कमज़ोर नहीं होगा। क्योंकि दूध में बहुत ज़्यादा कैल्शियम और फॉस्फोरस आ जाता है, तो वो गाय का बॉडी में से ही आता है, तो इसलिए वो मेंटेनेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। बाद में उसको टीकाकरण करना बहुत ज़रूरी है, वैक्सीनेशन देना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपका गाय बीमार ना पड़े। बीच बीच में आप हॉस्पिटल में जाके जो कीड़ा का दवा लेना चाहिए, ताकि कीड़ा का संक्रमण ना हो। ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए और आपका सेक्सुअल सीमेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है। गाय का हेल्थ स्टेटस अच्छा रहना बहुत ज़रूरी है।
2: डॉक्टर साहब, एक कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं, आइए देखते हैं कहाँ से बोल रहे हैं। हेलो
4: हेलो,
2: हाँ जी बोलिए, कहाँ से बोल रहे हैं?
4: डिगलीपुर, नॉर्थ
2: नॉर्थ। डिगलीपुर से कौन बोल रहे हैं, अपना नाम बताएं।
4: परितोष मंडल।
2: परितोष मंडल जी, पूछिए डॉक्टर साहब से अपना प्रश्न पूछिए।
4: मेरा प्रश्न ये था कि मेरा गाय है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या
3: चीज होती है? जी, आर्टिफिशियल
4: इंसेमिनेशन।
3: हाँ,
4: क्या चीज होती है वो?
3: अच्छा, ठीक है,
2: क्या चीज होती है? हाँ, जी
3: अच्छा सवाल है ये भी। देखो, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मतलब वो नाम में ही लिखा है उसमें कि ये आर्टिफिशियली हम लोग जो एक अच्छा जो डिजायर्ड बुल रहेगा उससे हम लोग सीमेन करते हैं, और जो गाय है उनका जो डायरेक्ट कांटेक्ट जो है इसमें उसमें नहीं होता है। तो हम लोग ये जो सीमेन निकाल के जो फीमेल है उसमें हम लोग आर्टिफिशियली डाल के बच्चा पैदा करते हैं। ये सिंपल टेक्निक है ऐसा।
2: चलिए,
3: ठीक है। हाँ,
2: परितोष जी को सवाल के उत्तर मिल गए होंगे। अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जैसे कि आपने दाने की बात की कि उनको सुबह क्या देना चाहिए, शाम को क्या देना चाहिए, डॉक्टर साहब क्या सरकार द्वारा इस तकनीक पर कोई सहायता या कोई योजना चलाई जा रही है?
3: अभी हम लोग का जो सेक्सुएटेड सीमेन फैसिलिटी है
2: जी,
3: हम लोग फार्मर का डोर स्टेप में जाके 250 रुपये में ये फैसिलिटी दे रहे हैं। अगर यही चीज़ आप मेनलैंड में देखे जाएंगे विदाउट सब्सिडी, उसका रेट 1,500 से 2,000 का बीच में है। हम लोग ये भी पुना से सेक्सुएटेड सीमेन मंगाए हैं
2: जी,
3: और फार्मर को जिस जिस को इच्छा है कि मेरा गाय को सेक्सुएटेड सीमेन लगाना है, तो उसमें 250 रुपये में ये फैसिलिटी हम लोग दे रहे हैं।
2: अच्छा, एक कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं, आइए देखते हैं कहाँ से बोल रहे हैं। हेलो
5: जी, नमस्ते मैम।
2: नमस्ते सर, कहाँ से बोल रहे हैं?
5: मैं डॉक्टर सितारे, बिहार के वैशाली जिले से आपका नियमित श्रोता हूँ।
2: बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका भी हम कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। पूछिए डॉक्टर साहब से क्या पूछना चाहते हैं।
5: दूध देने वाले गाय या दूध देने वाली भैंस को क्या क्या चारा दिया जाए?
2: क्या क्या चारा दिया जाए?
3: अच्छा, ठीक है, ठीक है। सर, हम लोग जैसा आप मेनलैंड में रहते हैं तो मेनलैंड में बहुत सारा वैरायटी चारा का अवेलेबल है, जैसा मेज है, जवार है, बाजरा है, हाइब्रिड नेपियर है। आप उसको जैसा सीजन रहेगा तो हरा चारा दे सकते हैं, और जैसे ऑफ सीजन हो जाता है उसमें आप साइलेज और हाइलेज बना के भी दे सकते हैं, हे मेकिंग भी कर सकते हैं। और जैसा आपका गाय और भैंस दूध देने

0: वाला है, जैसे हमने बताया कि
1: जी
0: उसका खुद का बॉडी मेंटेनेंस के लिए आपको 1.5 kg का कॉन्सेंट्रेट फीड देना ही चाहिए, तो जो खुद का मेंटेनेंस के लिए। और जैसा जैसा दूध का प्रोडक्शन बढ़ता है, जैसे आपका गाय 10 लीटर दूध देता होगा, तो उसके लिए 3 kg दूध के ऊपर आपको 1 kg एक्स्ट्रा दाना देना ही है, तभी उनका जो हेल्थ स्टेटस मेंटेन रहेगा। नहीं तो मिल्क फेवर जैसा बीमारी आ जाएगा, फास्फोरस डिफिशियंसी वाला बीमारी आ जाएगा, मैग्नीशियम डिफिशियंसी वाला बीमारी आ जाएगा। तो आपको ख्याल रखना चाहिए, ठीक है।
1: जी
0: तो और सुबह एक बार हरा चारा और शाम को सूखा चारा जरूर देना चाहिए, ताकि उसका जो पेट है थोड़ा डिफरेंट रहता है, चार उसके अंदर चक्कप्पे रहते हैं, तो उसको वो जो कभी कभार अगर आप हरा ही चारा देता रहेगा तो पेट फूलता रहेगा, ये वाला ऐसा वाला कभी कभी टिम्पनी बोलते हैं हम लोग, वो वाला बीमारी होता है, तो वो नहीं होना बोल के कभी हरा चारा सुबह और शाम को सूखा वाला चारा देना चाहिए, ठीक है।
1: इतना सुंदर समझिए, बहुत धन्यवाद देता हूँ। भगवान आप लोगों को निरोग रखे।
0: थैंक यू, थैंक
2: धन्यवाद सर। सर, भविष्य में द्वीप समूह में जो है इस तकनीक की क्या संभावनाएं हैं?
0: अभी फिलहाल हम लोग सेक्स ऑर्डर पे थोड़ा जोर दे रहे हैं,
2: जी
0: क्योंकि हमने देखा है बहुत सारा जगह पे जो मेल है, हम लोग सांड बोलते हैं उसको, फार्मर्स खुलेआम छोड़ रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, रोड में एक्सीडेंट हो रहे हैं, कुछ कुछ फार्मर का जो खेती में सभी झुंड के झुंड जाके जो
2: खेत खराब कर
0: खेत खराब कर
2: जी
0: रहे हैं,
2: जी
0: धान लगा रहा है वो खराब कर रहे हैं, सब्जी लगा है वो खराब कर रहे हैं, ये नौबत ना आए इसलिए
2: जी
0: हम लोगों को सेक्स सॉर्टेड सीमेन के ऊपर जाना पड़ेगा,
2: अच्छा
0: ताकि जो अनवांटेड बूल्स है उनका संख्या कम हो जाएगा और फार्मर्स को उसका फायदा हो जाएगा। और ये जो हम लोग सेक्स सॉर्टेड यूज़ कर रहे हैं वो अच्छा नस्ल वाला है,
2: जी
0: तो ताकि भविष्य में हम लोग का अंडमान निकोबार आइलैंड में दूध का प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा और इनडायरेक्टली फार्मर का आय भी बढ़ जाएगा।
2: अच्छा तो हमारे जो पशुपालक भाई है वो किस तरह से जो है अपने जानवरों की देखभाल कर सकते हैं, इस बारे में आपने तो विस्तार से बताया। चलते चलते पशुपालकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: पशुपालक हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आपका जो भी एनिमल्स है वैज्ञानिक तरीके से पाले,
2: जी
0: उसको टाइमली वैक्सीनेट करें, संतुलित आहार दें, और हम लोग का जो अंडमान निकोबार में आर्टिफिशियल इंसिमिनेशन फैसिलिटी है,
2: जी
0: सेक्स सॉर्टेड सीमेन फैसिलिटी है, उसका यूज़ करें और आपका जो खुद का आमदनी है हमेशा बढ़ाए रखें, ताकि आपका जो सोशल स्टेटस है बढ़ता रहे। थैंक यू।
2: ओके सर। साथियों, अभी आप पशुपालन एवं पशु विभाग द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम कृत्रिम गर्भाधान हर किसान की नई उड़ान सुन रहे थे। आज का हमारा विषय था लिंग के आधार पर वर्गीकृत वीर्य और कृत्रिम गर्भाधान। इस विषय पर विस्तार से बता रहे थे पशुपालन विभाग के वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नागनाथ भोजने। डॉक्टर साहब, स्टूडियो में आकर इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं।
0: थैंक यू मैडम।
3: अरे वाह, तुम्हारी गाय तो इस बार खूब दूध दे रही है। राज क्या है भाई?
4: राज नहीं, समझदारी है। मैंने AI अपनाया।
3: AI? ये क्या है?
4: AI यानी अच्छी नस्ल और समय पर गर्भाधान।
3: मतलब कम खर्च में ज्यादा फायदा।
4: बिल्कुल, दूध भी बढ़ा, हर साल बछड़ा भी, बीमारियां कम हुई और आमदनी डबल।
5: हाँ, AI अपनाओ, खुशहाली लाओ, अच्छी नस्ल से लाभ कमाओ।
6: पशु चिकित्सक की सलाह लें, समय पर कृत्रिम गर्भाधान कराएं और पशुपालन को बनाएं मुनाफे का मजबूत साधन। कृत्रिम गर्भाधान, हर किसान की नई उड़ान।
7: किसान साथियों, अभी आप लाइव फोन इन कार्यक्रम के माध्यम पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विभाग द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम कृत्रिम गर्भाधान हर किसान की नई उड़ान की 7वीं कड़ी सुन रहे थे। विषय था लिंग के आधार पर वर्गीकृत वीर्य और कृत्रिम गर्भाधान। इस विषय से संबंधित जानकारी आपको दे रहे थे पशुपालन विभाग के वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नागनाथ भोजने। श्रोताओं, इस कार्यक्रम की अगली कड़ी आप सुनेंगे सोमवार 1 जून 2026 को संध्या 6 बजे। बातचीत का विषय होगा कृत्रिम गर्भाधान के लिए सरकारी योजनाएं और समर्थन। विशेषज्ञ होंगे वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर लावले निनाद साहेब राव। तो साथियों, मिलते हैं अगले कार्यक्रम में।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। संध्या के 6:30 हुए हैं। अब आरंभ होता है कार्यक्रम पॉप मसाला। श्रोताओं, कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं चांदनी चौक टू चाइना फिल्म के इस गीत से,

मनोज मुंतशिर का लिखा एवं डीजे चीतास का रीमिक्स लिया हुआ ये गीत था बादशाहो फिल्म से। आवाजें थी नुसरत फतेह अली खान और राहत फतेह अली खान की। और अब कार्यक्रम का अगला गीत है ऑल दी बेस्ट फिल्म से। आवाजें हैं सूरज जगन और रूपम इस्लाम की। इस गीत को लिखा कुमार ने, संगीतबद्ध किया प्रीतम ने।

तैयार ये गीत था अजब प्रेम की गजब कहानी फिल्म से। आवाजें थी आतिफ असलम और साथियों की, गीत रचना इरशाद कामिल की। और अब कार्यक्रम में सुनते हैं एक्शन रिप्ले फिल्म का ये गीत मास्टर सलीम और ऋचा शर्मा की आवाज़ों में।

जीजो खान और साथियों की आवाज़ों में ये गीत था एसिड फैक्ट्री फिल्म से। इस गीत के साथ ही थिरकते हुए गीतों का कार्यक्रम पॉप मसाला अब यहीं संपन्न होता है।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है।

श्रोताओं, अब एक नज़र हमारे केंद्र से कल प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों पर। कल सवेरे 7:15 पर प्राइमरी चैनल पर आप सुनेंगे कार्यक्रम देश रागिनी, जबकि इसी समय पर एफएम

100.9 MHz पर आप सुन पाएंगे विद भारती मुंबई से प्रसारित प्रायोजित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। सवेरे 7:30 पर प्राइमरी चैनल और FM 100.9 MHz पर गुड मॉर्निंग अंडमान में खेल जगत कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे कर्मा टोपो से ली गई भेंट वार्ता। विषय रहेगा चप्पू और खेल, हौसलों का मेल। साथ ही कुछ फिल्मी गीत भी आप सुन पाएंगे।

थॉमस अपसोनी और सवाई गांव के डैनियल शिबू द्वारा प्रस्तुत गीत। सुगम संगीत के कार्यक्रम में 4:30 पर रूप कुमार राठौर, सोनाली राठौर, सबिता चौधरी और सुलक्षणा पंडित को आप सुन पाएंगे। कार्यक्रमों का विवरण बताया जाएगा 4:40 पर। तत्पश्चात 4:45 पर आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम। तमिल में शाम 5 होगा महिलाओं के लिए कार्यक्रम। तत्पश्चात 5:30 पर बांग्ला कार्यक्रम में आप सुन पाएंगे रूपक। संध्या 6 किसानवाणी कार्यक्रम में न्यू वंडूर की श्रीमती शुक्लता बहन से बातचीत की जाएगी। शाम बहार कार्यक्रम का समय रहेगा 6:30। शाम 7:20 पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। तत्पश्चात 7:30 पर युवाणी में आप सुनेंगे कार्यक्रम देश की शान, जो कि केंद्रित होगा देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू पर। चित्रपट संगीत कार्यक्रम का लुत्फ आप ले सकेंगे रात 8:00। 8:30 पर सुनिए रोजगार समाचार। तत्पश्चात होगा कार्यक्रम गौरवगान। और रात 10:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम संदेशे आते हैं।

0: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स और FM 100.9 मेगाहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7:05 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन इस अंतराल के बाद।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी, सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में 66 प्रतिष्ठित हस्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 28 मई को प्रस्तावित संयुक्त विश्वविद्यालय परीक्षा स्थगित की। वाइस एडमिरल अजय कोचर ने अंडमान एवं निकोबार कमान के कमांडर इन चीफ पद का पदभार छोड़ा। अब वह वाइस चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ का दायित्व संभालेंगे। और भारतीय प्राणी सर्वेक्षण में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के समापन समारोह में पर्यावरण संतुलन और जैव विविधता के महत्व पर बल दिया गया। सांध्य समाचारों के साथ मैं अनीता क्रिकेटा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से दो हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित।

किया गया। जाने माने फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अभिनेता की पत्नी और लोकसभा सदस्य हेमा मालिनी ने यह पुरस्कार ग्रहण किया। वायलिन वादक डॉक्टर एन राजम को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, शतावधानी डॉक्टर आर गणेश, उदय सुरेश कुमार और डॉक्टर कलीपट्टी रामासामी पाईस्वामी को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। जिन प्रतिष्ठित हस्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया उनमें भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर भुल्लर, तागा राम भील, रतिलाल मोहन लाल बोरीसागर, स्वामी ब्रह्मदेव और कुमार बोस शामिल है। समारोह के दौरान उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, गजेंद्र सिंह शेखावत और एचडी कुमार स्वामी सहित कई अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तारीख आगे बढ़ा दी है। एजेंसी ने कहा कि बकरी ईद की तिथि में बदलाव के कारण यह निर्णय लिया गया है। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना जल्द ही दी जाएगी। ताज़ा जानकारी के लिए विद्यार्थी एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की ओर से समाधान समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जो 23 अगस्त को एक विशेष लोक अदालत के आयोजन के साथ समाप्त होगा। इसका उद्देश्य भारत के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित मामलों का सहमति आधारित समाधान तंत्रों के माध्यम से निपटारा सुनिश्चित करना है। सभी हितधारकों से कहा गया है कि वे अपने विवादों के निपटारे हेतु विशेष लोक अदालत में उपस्थित रहे। इच्छुक पक्ष निर्धारित गूगल फॉर्म भरकर अपने अनुरोध प्रस्तुत कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए समाधान समारोह विशेष लोक अदालत के प्रभारी से संपर्क किया जा सकता है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख है अंडमान एवं निकोबार कमान और अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला यह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार के अलावा सुबह 9 बजे, 10 बजे और 11 बजे प्रति घंटा न्यूज हेडलाइंस एफएम रेडियो पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। वाइस एडमिरल अजय कोचर ने अंडमान कमान के कमांडर इन चीफ पद का पदभार छोड़ दिया है। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने परिचालन तत्परता, सैन्य आधुनिकीकरण, त्रिसेवा समन्वय तथा नागरिक सैन्य सहयोग को और सुदृढ़ किया। वे अब भारतीय नौसेना में वाइस चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ का दायित्व संभालेंगे। उनके नेतृत्व में देश की एकमात्र त्रिसेवा कमान ANC ने सेना, नौसेना, वायुसेना और तटरक्षक बल के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करते हुए परिचालन क्षमता को सशक्त बनाया। अवैध शिकार रोकने के अभियान में अक्टूबर 2025 से अब तक 64 विदेशी शिकारियों को पकड़ा गया। वहीं भारतीय विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र के बाहर लगभग 1400 रोहिंग्याओं को ले जा रही 12 नौकाओं की सफल निगरानी की गई। श्री कोचर ने ANC ने एक्सरसाइज द्वीप शक्ति 25, थाईलैंड में कोबरा गोल्ड 26 और श्रीलंका में ऑपरेशन सागर बंधु जैसे अभियानों में सक्रिय भागीदारी निभाई। इस दौरान 300 टन से अधिक राहत सामग्री प्रभावित क्षेत्रों तक पहुंचाई गई। एयरफोर्स स्टेशन का निकोबार और INS उत्कोष में रनवे उन्नयन सहित बुनियादी ढांचे का भी विस्तार हुआ। उनके कार्यकाल में 53 इंटर आइलैंड कम्युनिकेशन सर्विस उड़ानों, कई मेडिकल कैंपों और राहत अभियानों से 950 से अधिक स्थानीय लोगों को लाभ मिला। कार्यभार छोड़ने से पूर्व अपने कार्यकाल के समापन अवसर पर वाइस एडमिरल अजय कोचर को आज INS उत्कोष में संयुक्त सेवा के गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2026 के उपलक्ष्य में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों का समापन आज श्री विजयपुरम स्थित केंद्र में हुआ। इस वर्ष कार्यक्रम का मुख्य विषय स्थानीय स्तर पर पहल और उसका वैश्विक प्रभाव रहा। समारोह में पर्यावरण एवं वन विभाग के मुख्य वन संरक्षक वनजीव डॉ एस दिनेश कन्नन मुख्य अतिथि तथा केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉ

जय सुंदर विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि डॉक्टर दिनेश कन्नन ने जैव विविधता के महत्व, उसके संरक्षण और पर्यावरणीय संतुलन में भूमिका के महत्व पर कहा कि विद्यार्थियों और नागरिकों को प्लास्टिक प्रदूषण कम करने, जल एवं बिजली बचाने तथा स्वच्छता बनाए रखने जैसे पर्यावरण अनुकूल व्यवहार के प्रति सजग रहना चाहिए। विशेष अतिथि डॉक्टर जय सुंदर ने द्वीपों की समृद्ध जैव विविधता और उसके संरक्षण के लिए सामुदायिक भागीदारी की आवश्यकता पर बल दिया। कार्यक्रम की शुरुआत डॉक्टर सी शिव पेरुमन के स्वागत संबोधन से हुई। कार्यक्रम में विभिन्न विद्यालयों और महाविद्यालयों के कुल 54 विद्यार्थियों ने चित्रकला, फोटोग्राफी, स्टोरी टेलिंग और शिल्प निर्माण प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया। विजेताओं और प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। समापन समारोह में दक्षिण अंडमान, उत्तर एवं मध्य अंडमान तथा निकोबार जिलों के विद्यार्थियों ने भाग लिया। सहायक आयुक्त कार्यालय रंगत द्वारा PRI एवं विभिन्न विभागों के समन्वय से 13 जून को सुबह 5:30 बजे रन फॉर हेल्थ यूनिटी एवं यूनिटी एंड एनवायरमेंट विषय पर रंगत मानसून मैराथन 2026 का आयोजन किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना और सामुदायिक भावना का उत्सव मनाना है। मैराथन में पुरुषों के लिए 10 किलोमीटर और महिलाओं के लिए 5 किलोमीटर दौड़ आयोजित की जाएगी। दोनों वर्गों में विजेताओं को नगद पुरस्कार एवं पदक प्रदान किए जाएंगे। प्रथम पुरस्कार ₹10,000, द्वितीय पुरस्कार ₹7,000 तथा तृतीय पुरस्कार ₹5,000 निर्धारित किया गया है। सरकारी एवं निजी विद्यालयों, महाविद्यालयों, संस्थानों, संगठनों तथा आम जनता से इच्छुक प्रतिभागियों को कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। अधिक जानकारी के लिए 9434270758 पर संपर्क किया जा सकता है। अंडमान निकोबार एड्स नियंत्रण सोसाइटी द्वारा ननकौड़ी में अनुबंध के आधार पर परामर्शदाता के एक पद को भरने हेतु आवेदन मांगे गए हैं। इच्छुक उम्मीदवारों को परियोजना निदेशक अंडमान निकोबार एड्स नियंत्रण सोसाइटी के पते पर निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन जमा करना होगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 12 जून शाम 4:30 बजे तक है। अधिक जानकारी विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में 66 प्रतिष्ठित हस्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 28 मई को प्रस्तावित संयुक्त विश्वविद्यालय परीक्षा स्थगित की। वाइस एडमिरल अजय कोचर ने अंडमान एवं निकोबार कमान के कमांडर इन चीफ पद का पदभार छोड़ा। अब वह वाइस चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ का दायित्व संभालेंगे। और भारतीय प्राणी सर्वेक्षण में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के समापन समारोह में पर्यावरण संतुलन और जैव विविधता के महत्व पर बल दिया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। मौसम मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार जनसेवाओं तथा मछुआरों के लिए कोई विशेष चेतावनी नहीं है। कल शाम तक के मौसम संबंधित पूर्वानुमान में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के एक या दो भागों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से हवाएं चलेंगी तथा अधिकांश भागों पर हल्की से मध्यम वर्षा होगी या गरज के साथ छींटे पड़ेंगे। ये थी मौसम की जानकारी। अब सुनिए जलयानों का यात्रा कार्यक्रम। जहाजरानी सेवा निदेशालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार MV स्वराजद्वीप विशाखापत्तनम की यात्रा पर कल सवेरे 10 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा। यात्रियों को जहाज पर चढ़ाने का कार्य सवेरे 7 बजे से 9 बजे के बीच किया जाएगा। MV रानीचंगा मायाबंदर होते हुए डिगलीपुर की यात्रा पर बुधवार 27 तारीख को सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। ये जलयान बृहस्पतिवार 28 तारीख को

सुबह 7 बजे डिगलीपुर से छूटकर मायाबंदर होते हुए श्रीविजयपुरम लौटेगा। एमवी सेंटिनल बुधवार 27 तारीख को रात 8 बजे लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम के लिए जाएगा तथा इसकी वापसी होगी बृहस्पतिवार 28 तारीख को रात 8 बजे लिटिल अंडमान से। एमवी कालीघाट कैम्बलवे के लिए बुधवार 27 तारीख को सुबह 7 बजे श्री विजयपुरम से चलेगा तथा इसकी वापसी होगी शनिवार 30 तारीख को दोपहर 12 बजे कैम्बलवे से श्री विजयपुरम के लिए। जाते व आते समय ये जलयान लिटिल अंडमान, कार निकोबार, चौरा, तेरेसा, कचाल और नानकौरी में भी रुकेगा। जलयान सिंधु नानकौरी होते हुए कैम्बलवे की यात्रा पर बुधवार 27 तारीख को सुबह 9 बजे श्री विजयपुरम से जाएगा। ये जलयान शुक्रवार 29 तारीख को सुबह 8 बजे कैम्बलवे से छूटकर नानकौरी होते हुए श्री विजयपुरम के लिए यात्रा करेगा। एमवी हडपे स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सुबह 6 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। ये जलयान कल ही दोपहर 12 बजे रंगत से छूटकर लॉन्ग आइलैंड और स्वराज द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम लौटेगा। एमवी रानीचंगा शहीद द्वीप के लिए कल सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से चलेगा तथा इसकी वापसी होगी कल ही सुबह 8:30 पर शहीद द्वीप से। एमवी जॉली बॉय कल सुबह 6:15 पर स्वराज द्वीप के लिए श्री विजयपुरम से छूटेगा तथा इसकी वापसी होगी कल ही सवेरे 8:45 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए। एमवी बाराटान शहीद द्वीप के लिए कल दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा। ये जलयान कल ही दोपहर 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप के लिए और दोपहर बाद 2:30 पर स्वराज द्वीप से छूटकर श्री विजयपुरम लौटेगा। एमवी नॉर्थ पैसेज स्वराज द्वीप के लिए कल दिन में 11:30 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। ये जलयान कल ही दोपहर बाद 2 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप के लिए और दोपहर बाद 3:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए छूटेगा। एमवी रानीचंगा शहीद द्वीप के लिए कल दोपहर बाद 2:30 पर श्री विजयपुरम से जाएगा तथा इसकी वापसी होगी कल शाम 4:30 पर शहीद द्वीप से। एमवी कमोटा कल शाम 5 बजे स्वराज द्वीप के लिए श्री विजयपुरम से चलेगा। ये जलयान परसों बुधवार 27 तारीख को प्रातः 5:30 पर स्वराज द्वीप से छूटकर शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम लौटेगा। अभी आप जलयानों का यात्रा कार्यक्रम सुन रहे थे। जन सूचनाएं। दक्षिण अंडमान जिला प्रशासन ने भूमि अतिक्रमण के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। प्रशासन ने क्षेत्र के ऐसे कई स्थानों से गैर कानूनी रूप से किए गए भूमि कब्जे को मुक्त कराया है। आम लोगों से भी इस मामले में सहयोग की अपील की गई है। सरकारी जमीन पर किए गए अतिक्रमण की सूचना इन टेलीफोन नंबरों पर दी जा सकती है 0-3192-24-01-27, 0-3192-23-8881 या 1070। सूचना इस व्हाट्सएप नंबर पर भी दी जा सकती है 9531-888-8844। प्रशासन द्वारा सूचना प्रदान करने वाले व्यक्ति की पहचान गुप्त रखी जाएगी। जन सूचनाएं समाप्त हुई। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 7:20 हुए हैं। अब आरंभ होता है कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। कार्यक्रम में सबसे पहले सुनिए गीता दत्त की आवाज में बाजी फिल्म का ये गीत।

गीत दत्त की आवाज में ये गीत था बाजी फिल्म से। बोल साहिर के धुन बनाई थी एसटी परमन ने। और अब कार्यक्रम में सुनते हैं तकदीर फिल्म का ये गीत।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। शाम के 7:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है युवाणी कार्यक्रम।

युवावाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी युवा दोस्तों को आपकी रेडियो दोस्त लता राज नांदिनी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, फुटबॉल विश्व का सबसे लोकप्रिय खेल है। यह खेल लोगों को जोड़ता है और एकता, सहयोग तथा खेल भावना का संदेश देता है। इसी महत्व को देखते हुए आज के दिन यानी 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, फुटबॉल केवल मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि शारीरिक और मानसिक विकास का भी माध्यम है। यह खिलाड़ियों में अनुशासन, टीम वर्क और आत्मविश्वास विकसित करता है। विश्व फुटबॉल दिवस के अवसर पर विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं और कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। यह दिन युवाओं को खेलों के प्रति जागरूक करने और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने की प्रेरणा देता है।

दोस्तों, इसी के साथ ही आज हम महान क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी रास बिहारी बोस की जन्मतिथि भी मना रहे हैं। दोस्तों, उनका जन्म आज ही के दिन यानी 25 मई सन 1886 को पश्चिम बंगाल में हुआ था। उनकी जयंती प्रत्येक वर्ष श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई जाती है। रास बिहारी बोस ने भारत की स्वतंत्रता के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। वे गदर आंदोलन से जुड़े और अंग्रेजी शासन के विरुद्ध संघर्ष करते रहे। बाद में वे जापान गए और वहाँ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत किया। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना की तथा आज़ाद हिंद फौज के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बाद में उन्होंने इसका नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया। दोस्तों, रास बिहारी बोस का जीवन देशभक्ति, साहस और त्याग का प्रतीक है। हमें उनके आदर्शों से प्रेरणा लेकर राष्ट्र की सेवा करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये तो रही आज के दिन की कुछ खास बातें, और अब आप सभी को इंतजार होगा आज के कार्यक्रम का। तो दोस्तों, आज इस माह का चौथा सोमवार है और आज के दिन हम आप सभी युवा दोस्तों के लिए लेकर आते हैं गजलों पर आधारित कार्यक्रम कहकशां।

दिल तो क्या रूह भी तेरे नाम कर दूं, दिल तो क्या रूह भी तेरे नाम कर दूं, तेरी एक मुस्कान पर हर शाम कर दूं। मोहब्बत की राह में हिसाब कैसा, मोहब्बत की राह में हिसाब कैसा, जो भी मेरा है सब तेरे नाम कर दूं।

कहीं भी रहे मेरी दुआओं में रहेगा, तू कहीं भी रहे मेरी दुआओं में रहेगा, दूर होकर भी दिल के करीब रहेगा, फासले जिस्मों के बढ़ जाएं तो क्या, फासले जिस्मों के बढ़ जाएं तो क्या, तेरा जिक्र मेरी हर सांस में रहेगा।

झुकी नजरों में कई राज छुपे होते हैं, झुकी नजरों में कई राज छुपे होते हैं, खामोश लब भी कई किस्से कह रहे होते हैं, जो दिल की बात जुबां तक नहीं आती, जो दिल की बात जुबां तक नहीं आती, वो अक्सर आँखों में लिखी होती है।

इन आँखों में कोई जादू सा बसा रहता है, इन आँखों में कोई जादू सा बसा रहता है, हर देखने वाला इनमें खो सा जाता है। एक नज़र क्या मिली दिल बेकरार हो गया, के एक नज़र क्या मिली दिल बेकरार हो गया, ये कैसा नशा है जो होश उड़ा गया।

होठों से नहीं तुम दिल से मुझे छू जाना, के होठों से नहीं तुम दिल से मुझे छू जाना, मेरी हर धड़कन में अपना नाम लिख जाना। कुछ रिश्ते लफ्ज़ों के मोहताज नहीं होते, कुछ रिश्ते लफ्ज़ों के मोहताज नहीं होते, बस एक एहसास बनकर उम्र भर साथ निभा जाना।

युवावाणी के आज के इस अंक में बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात और मैं लता राजनंदिनी, आपकी रेडियो दोस्त, चाहती हूँ अब आपसे अनुमति। नमस्कार, शुभ रात्रि।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। रात्रि के 8 बजे हैं। अब आरंभ होता है फिल्मी गीतों से सजा कार्यक्रम चित्रपट संगीत। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं सीता और गीता फिल्म के इस गीत से। आवाजें हैं आशा भोसले और किशोर कुमार की। इस गीत को लिखा आनंद बख्शी ने, धुन बनाई आर डी बर्मन ने।

0: घटा के साथ साथ,
1: अरे अरे,
0: घटा के संग संग,
1: संभालना,
0: हवा के साथ साथ, घटा के संग संग, ओ साथी चल।

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में तैयार, अब लीजिए सुनिए अवतार फिल्म का गीत। आवाजें हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की, गीत रचना आनंद बख्शी की।

मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले और साथियों की आवाज़ों में ये गीत था अंदाज़ फिल्म से। गीतकार थे हसरत जयपुरी तथा संगीतकार थे शंकर जयकिशन।

मनहर और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ों में ये गीत था अमृत फिल्म से। आनंद बख्शी लिखे गीत को संगीत से सजाया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और अब कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं। मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले को फिल्म कश्मीर की कली।

0: मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में ये गीत था कश्मीर की कली फिल्म से। इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट संगीत अब यहीं संपन्न होता है।
1: Some cars are designed to blend in, others are designed to be remembered. Meet the Maruti Suzuki Fronx with powerful 1.0 liter turbo booster engine. Fronx delivers performance that matches its bold SUV inspired design. Already trusted by more than 4 lakh proud owners across India. Fronx is now available starting at just rupees 6.85 lakh with exciting offers available at your nearest Nexa showroom. So, why follow the road when you can lead it? Visit your nearest Nexa showroom and experience the Maruti Suzuki Fronx right now. Nexa.
0: श्रोताओं, इस समय रात्रि के 8:30 हुए हैं। अब सुनिए हमारा अगला कार्यक्रम।
2: ये आकाशवाणी का श्रीविजयपुरम केंद्र है। इस समय रात्रि के 8:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए रोजगार समाचार। अंडमान एवं निकोबार पुलिस में ग्रुप बी अराजपत्रित एवं ग्रुप सी पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किया है। ये पद अंडमान एवं निकोबार पुलिस की विभिन्न इकाइयों में है। अभ्यर्थी केवल ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों द्वारा चुना गया पद अंतिम होगा। बाद में किसी भी परिस्थिति में बदलाव नहीं किया जाएगा। शारीरिक माप एवं सहनशक्ति परीक्षण PMET अंडमान एवं निकोबार पुलिस द्वारा विभिन्न केंद्रों पर आयोजित किया जाएगा। ये केवल क्वालिफाइड प्रकृति का होगा। लिखित परीक्षा कंप्यूटर आधारित या लिखित अंग्रेजी और हिंदी में आयोजित होगी। साथ ही ट्रेड टेस्ट भी लिया जाएगा। सभी चरणों में सफल उम्मीदवारों की सूची प्रकाशित की जाएगी और उनके मूल दस्तावेजों का सत्यापन होगा। अंतिम परिणाम लिखित परीक्षा और ट्रेड टेस्ट के लिए प्रदर्शन के आधार पर घोषित किया जाएगा। भर्ती प्रक्रिया निर्धारित नियमों और पुलिस विभाग के आदेशों के अनुसार होगी। एग्जीक्यूटिव ब्रांच अंडमान एवं निकोबार पुलिस ग्रुप बी अराजपत्रित सब

0: इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव ओपन के लिए कुल पद है 28, अनारक्षित वर्ग के लिए 4 पद, 19 पद ओबीसी वर्ग के लिए होगा। अनुसूचित जनजाति के लिए 4 पद रखा गया है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 1 पद है और विभागीय के लिए 3 पद है। अनारक्षित वर्ग के लिए 2 पद और 1 पद अनुसूचित जनजाति के लिए होगा। ग्रुप सी में कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव के लिए कुल पद है 155, अनारक्षित वर्ग के लिए 66 पद, 65 पद ओबीसी वर्ग के लिए होगा। अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 9 पद रखा गया है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 15 पद, न्यूनतम समर्थन मूल्य वर्ग के लिए 7 पद, भूतपूर्व सैनिक या पूर्व सैनिक के लिए 1 पद होगा। कांस्टेबल बैंड्समैन के लिए कुल पद है 4, अनारक्षित वर्ग के लिए 1 पद, 2 पद ओबीसी वर्ग के लिए, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 1 पद रखा गया है। सफाई कर्मचारी एग्जीक्यूटिव के लिए कुल पद है 10, अनारक्षित वर्ग के लिए 5 पद, 4 पद ओबीसी वर्ग के लिए और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 1 पद रखा गया है। फॉलोवर कारपेंटर एग्जीक्यूटिव केवल पुरुष उम्मीदवारों के लिए होगा। कुल पद 1 जो ओबीसी वर्ग के लिए ही रखा गया है। फॉलोवर कुक एग्जीक्यूटिव के लिए कुल पद है 13, अनारक्षित वर्ग के लिए 6 पद, 5 पद ओबीसी वर्ग के लिए होगा। अनुसूचित जनजाति और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 1-1 पद है। फॉलोवर टेलर एग्जीक्यूटिव कुल पद है 1 जो अनारक्षित वर्ग के लिए रखा गया है। फॉलोवर बार्बर एग्जीक्यूटिव कुल पद 1 जो ओबीसी वर्ग के लिए ही रखा गया है। फॉलोवर वाशरमैन एग्जीक्यूटिव के लिए कुल पद है 3, अनारक्षित वर्ग के लिए 1 पद, ओबीसी वर्ग के लिए 2 पद रखा गया है। रिक्तियां अस्थाई है जो बदल सकती है। महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण लागू होगा। कुछ पद केवल पुरुष उम्मीदवारों के लिए है। एसटी और ओबीसी वर्गों के लिए आरक्षण सरकारी नियमों के अनुसार होगा। ईडब्ल्यूएस, एमएसपी, ईएसएम भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षण लागू है। भूतपूर्व सैनिकों को अपना नाम संबंधित बोर्ड में पंजीकृत कराना होगा। रिक्तियों की उपलब्धता के अधीन प्रत्येक पद के लिए नियुक्ति पत्र योग्यता क्रम के अनुसार लागू किए जाएंगे। अभ्यर्थी अपने आवेदन अंडमान एवं निकोबार पुलिस की वेबसाइट police.andamannicobar.gov.in या e-recruitment.andamannicobar.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि आवेदन जमा करने से पहले भर्ती सूचना को ध्यान पूर्वक पढ़े।
1: पुलिस विभाग में विभिन्न ग्रुप बी अराजपत्रित और ग्रुप सी पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 26 मई की मध्य रात्रि तक कर दी गई है। पात्रता की शर्तें और अन्य निर्देश संदर्भ के लिए उपलब्ध पूर्ण भर्ती सूचना में विस्तार से दिए गए हैं। इसके अलावा ऑनलाइन आवेदन में सुधार के लिए संशोधन खिड़की 28 मई की मध्य रात्रि तक खुली रहेगी। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार भर्ती प्रकोष्ठ पुलिस मुख्यालय से सभी कार्य दिवसों में सुबह 9:30 बजे से शाम 5 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए अंडमान एवं निकोबार पुलिस की वेबसाइट police.andamannicobar.gov.in या e-recruitment.andamannicobar.gov.in पर उपलब्ध है। और अधिक जानकारी के लिए 25 अप्रैल 2026 का डेली टेलीग्राम देखा जा सकता है।
0: इसी के साथ ही रोजगार समाचार समाप्त हुए।
2: Some cars are designed to blend in. Others are designed to be remembered. Meet the Maruti Suzuki Fronx with powerful 1.0-liter turbo booster engine. Fronx delivers performance that matches its bold SUV-inspired design. Already trusted by more than 4 lakh proud owners across India. Fronx is now available starting at just Rs. 6.85 lakh with exciting offers available at your nearest Nexa showroom.

गौरवगान कार्यक्रम के तहत अभी आप कुछ देशभक्ति गीतों का आनंद ले रहे थे। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने को है। अब कुछ ही पलों में अगला प्रसारण हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार 2026 प्रदान किए। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता दिवंगत धर्मेंद्र और जानी मानी वायलिन वादक डॉ एन राजम को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पहलों का शुभारंभ किया। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में केबल कार प्रणाली में तकनीकी खराबी के बाद फंसे पर्यटकों को निकालने के लिए संयुक्त अभियान जारी। सेना

0: और SDRF की टीमों ने अब तक 286 पर्यटकों को सुरक्षित निकाला। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्री कल नई दिल्ली में होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के दौरान हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भीषण लू का अनुमान व्यक्त किया। और एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान विक्की और अक्षय धेरे ने पुरुष फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जाने माने फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अभिनेता की पत्नी और लोकसभा सदस्य हेमा मालिनी ने ये पुरस्कार ग्रहण किया।
1: पद्म विभूषण श्री धर्मेंद्र सिंह देओल मरणोपरांत कला फिल्म अभिनय उनकी पत्नी श्रीमती हेमा मालिनी।
0: वायलिन वादक डॉ एन राजम को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया।
1: पद्म विभूषण डॉक्टर श्रीमती एन राजम कला वायलिन।
0: पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण विशिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। एक रिपोर्ट।
2: पद्म भूषण श्रेणी में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को सार्वजनिक क्षेत्र में उनके योगदान के लिए ये पुरस्कार प्रदान किया गया है, जबकि भाजपा नेता विजय कुमार मल्होत्रा को मरणोपरांत लोकसभा श्रेणी में ये पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा शतपथधारी डॉक्टर आर गणेश को कला क्षेत्र में और विज्ञापन जगत के दिग्गज पीयूष पांडे को मरणोपरांत ये पुरस्कार मिला। उद्योगपति उदय सुरेश कुमार कोटक को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। वहीं डॉक्टर कलीपति रामास्वामी स्वामी को चिकित्सा क्षेत्र में उनके योगदान के लिए ये पुरस्कार मिला। पद्मश्री से सम्मानित होने वालों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर बुल्लर, तागाराम भील, रतिलाल मोहनलाल भूरी सागर, स्वामी ब्रह्मदेव और कुमार बोस शामिल हैं। वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रपति ने 131 पद्म पुरस्कार को मंजूरी दी है। शेष पद्म पुरस्कार विजेताओं को बाद में आयोजित होने वाले समारोह के दूसरे चरण में पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। आनंद कुमार के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। श्रीमती सीतारामन ने आज मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल तथा पहलों का शुभारंभ किया। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के अतिरिक्त उर्वरक की कीमतें अप्रत्याशित स्तर पर पहुंच गई हैं।
3: हाई इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस एंड
4: अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं। इसके साथ ही उर्वरकों की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि और सोने के बढ़ते दाम भी बाहरी आर्थिक मोर्चे पर नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं। इन तीनों क्षेत्रों, ईंधन, उर्वरक और सोना के लिए भुगतान विदेशी मुद्रा में करना पड़ता है, इसलिए हमें इन तीन महत्वपूर्ण पहलुओं यानी 3F, फ्यूल, फर्टिलाइजर और फॉरेन एक्सचेंज के व्यापक आर्थिक संदर्भ को अच्छी तरह समझना होगा।
3: Fertilizer and foreign exchange.
0: सरकार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। पश्चिम एशिया संघर्ष पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने ये बात कही
5: कि रिफाइनरी प्रोडक्शन LPG का इंक्रीज किया गया है एंड इट इज टचिंग अराउंड 50,000 टन पर डे नाउ। LPG घरेलू कुकिंग गैस की सप्लाई के लिए लगभग पिछले 4 दिनों में 1.72 करोड़ सिलेंडर्स की डिलीवरी की गई है और 95% जो डिलीवरी हुई है वो डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई है। 5 किलो के सिलेंडर पिछले 4 दिनों में लगभग 1,96,000 सेल हुए हैं।
0: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि खाड़ी क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास प्रवासी भारतीयों के कुशल मंगल के लिए लगातार उनके संपर्क में है।
6: Several key agreements were signed.
7: यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए, इससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती मिली।

0: है। विशेष रूप से एलपीजी की आपूर्ति सुनिश्चित करने और देश के पेट्रोलियम भंडार को सुदृढ़ करने में इन समझौतों की अहम भूमिका रहेगी। इसके साथ ही निवेश से जुड़े समझौते भी किए गए। इससे संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच विभिन्न क्षेत्रों में नए अवसरों का प्रभाव बढ़ेगा। इसके अतिरिक्त रक्षा क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी के लिए एक रूपरेखा समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए।
1: उर्वरक विभाग के अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने बताया कि देश में उर्वरकों का भंडार संतोषजनक बना हुआ है।
2: इस वर्ष के लिए निर्धारित 390.54 लाख मीट्रिक टन के अनुमानित लक्ष्य की तुलना में वर्तमान में उपलब्ध भंडार 200.12 लाख मीट्रिक टन है। ये कुल अनुमान का 51% से अधिक है, जो सामान्यतः रहने वाले 33% के स्तर से काफी अधिक माना जा रहा है। देश में अब तक लगभग 95 लाख मीट्रिक टन का घरेलू उत्पादन हुआ है, जबकि करीब 22.60 लाख मीट्रिक टन आयातित सामग्री भी देश में पहुंच चुकी है।
3: Like metric tons of imports have reached our shores.
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में केबल कार में तकनीकी खराबी के बाद सेना और राज्य आपदा मोचन बल बचाव अभियान चला रहे हैं। बेस स्टेशन और पहले चरण के बीच सेवाएं आज अचानक बंद हो गईं और कई पर्यटक फंस गए। सेना ने कहा कि बुटापथरी बटालियन के जवानों ने मार्ग पर 3 सहायता दल तैनात किए हैं और दुर्गम इलाके में बचाव कार्य में सहायता के लिए एक ऑल टेरेन व्हीकल भी लगाया है। सेना के अनुसार तकनीकी खराबी के कारण कुल 65 केबल कारें प्रभावित हुई हैं। बचाव दल अब तक 46 केबल कारों में 286 पर्यटकों को सुरक्षित निकाल चुके हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटकों को निकालने के लिए बचाव दल जुटे हुए हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, सुचारू और सफल संचालन का आह्वान किया है। श्री प्रधान ने देशभर के सभी मुख्यमंत्रियों, उपराज्यपालों और प्रशासकों से इस संबंध में सहयोग मांगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कल नई दिल्ली में क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। बैठक में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, हिंद प्रशांत क्षेत्र में हाल के घटना

0: कार्यक्रमों और आपसे चिंता के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। एक रिपोर्ट।
1: इस साल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब विश्व भर में अनिश्चितता का माहौल है और पश्चिम एशिया में संकट गहराया हुआ है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान को मिलाकर बना क्वाड एक अहम समूह के तौर पर उभरा है, जिसका मुख्य उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है। इस समूह के मौजूदा अध्यक्ष के तौर पर भारत इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। क्वाड देशों ने दुनिया की भलाई के लिए मिलकर काम करने और एक ऐसे खुले, स्वतंत्र और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करने का संकल्प लिया है जो समृद्ध और मजबूत हो। क्वाड ने एक सकारात्मक और व्यवहारिक एजेंडा अपनाया है जिसमें स्वास्थ्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन तथा उभरती टेक्नोलॉजी और क्षेत्रीय देशों की समुद्री क्षेत्र से जुड़ी जागरूकता को बढ़ाने जैसे समकालीन मुद्दों तथा चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में जापान के विदेश मंत्री मोटेगी तोशिमित्सु से बातचीत की। डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी है। जापान के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए दो दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। ईरान के शीर्ष वार्ताकार अमेरिका के साथ महत्वपूर्ण वार्ता के लिए दोहा पहुंच गए हैं। संभावित समझौते को लेकर आशा का माहौल है। वार्ता होर्मुज जल डमरू मध्य ईरान के उच्च संवर्धित यूरेनियम भंडार सहित प्रमुख मुद्दों पर केंद्रित होगी। एक रिपोर्ट।
2: ईरान और अमेरिका के बीच जारी कूटनीतिक वार्ता में एक नया मोड़ सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान ने कतर में लगभग 12 अरब डॉलर की अपनी जब्त संपत्तियों को तत्काल जारी करने की मांग की है। माना जा रहा है कि यही मुद्दा दोनों देशों के बीच संभावित समझौते की दिशा में सबसे बड़ी बाधा बना हुआ है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मध्यस्थों के जरिए हुई वार्ताओं में कई मुद्दों पर प्रगति हुई है, लेकिन अब भी दोनों पक्षों के बीच कई बड़े मतभेद बने हुए हैं। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बातचीत से जुड़ी नई शर्तें सामने रखी हैं। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि वार्ता सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
0: वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में आज भारतीय पहलवान विक्की और अक्षय तानाजी धीरे ने पुरुष फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में अक्षय ने येलामन अमानगेल्डी को 4-2 से हराया। वहीं 97 किलोग्राम वर्ग में विक्की ने शेरजोत पोयोनोव को 7-5 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2-3 दिन हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भीषण लू चलने की संभावना है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों को एकीकृत डिजिटल सहायता प्रदान करने की पहल जीवन अशतायु ऐप पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। संयुक्त सचिव सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव मोनाली पी ढाकाटे परिचर्चा में भाग लेंगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार 2026 प्रदान किए। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता दिवंगत धर्मेंद्र और जानी मानी वायलिन वादिका डॉ एन राजम को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पहलों का शुभारंभ किया। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में केबल कार प्रणाली में तकनीकी खराबी के बाद फंसे पर्यटकों को निकालने के लिए संयुक्त अभियान जारी। सेना और एसडीआरएफ की टीमों ने अब तक 286 पर्यटकों को सुरक्षित निकाला। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्री कल नई दिल्ली में होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे और एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान विक्की और अक्षय धीरे ने पुरुष फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम सायरम मुज्तबा विद द न्यूज एट 9। The headlines. President Draupadi Murmu presents Padma Awards 2026 at Rashtrapati Bhavan. Noted film actor late Dharmendra and legendary violin maestro Dr. N. Rajam honored with Padma Vibhushan. Finance Minister Nirmala Sitharaman launches initiatives aimed at strengthening MSMEs and accelerate modernization of rural industries. Joint operation underway to evacuate stranded tourists at Gulmarg following technical fault in cable car system. 286 tourists rescued so far. Foreign ministers of India

नमस्कार श्रोताओं, पब्लिक स्पीक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका अरोड़ा आपके साथ। आज का ये दौर जहां हर इंसान अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी में इतना व्यस्त हो चुका है कि अपनों खासकर अपने माता पिता के साथ बैठकर दो पल बात करने का समय भी मुश्किल से निकल पाता है। नौकरी की मजबूरियां, घर की जिम्मेदारियां और बेहतर भविष्य की तलाश में पलायन, इन सबके बीच सबसे ज्यादा अकेलेपन का सामना करते हैं हमारे बुजुर्ग। वो बुजुर्ग जिन्होंने पूरी जिंदगी अपने परिवार के लिए समर्पित कर दी, लेकिन बदलते समय के साथ उनकी जरूरतों को समझना और उन्हें सही सहारा देना आज समाज की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनता जा रहा है। 2011 में वरिष्ठ नागरिकों की संख्या 10 करोड़ थी, जो 2036 तक दोगुना होकर 23 करोड़ से अधिक होने का अनुमान है। तो श्रोताओं, ऐसे में बुजुर्गों की सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और मानसिक सहारे को लेकर नई सोच और नई पहल की जरूरत महसूस की जा रही है। इसी सोच के साथ सरकार ने शुरू किए हैं जीवन ऐप और शतायु डैशबोर्ड। आज पब्लिक स्पीक में वरिष्ठ नागरिकों के लिए शुरू हुए इन प्रयासों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव मोनाली पी धकाटे। आपका स्वागत है मोनाली।

0: जी
1: धन्यवाद मैम।
0: और श्रोताओं, हमारी स्टूडियो की फोन लाइंस खुली हैं। आप हमारे नंबर 011 जो दिल्ली का कोड है वो डायल करें और उसके बाद ये नंबर डायल कर सकते हैं 2331-0481 या 2371-1711-7 2371-7106 और 2331-4444 हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है 9289094044। और श्रोताओं, आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts पर #AskAIR के जरिए भी अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। तो आगाज करते हैं आज के कार्यक्रम का। मोनाली जी, सबसे पहले ये बताएं कि जीवन ऐप और शतायु डैशबोर्ड क्या है और क्या उद्देश्य है इनका?
1: जीवन ऐप ज्वाइंट एल्डरली एम्पावरमेंट एंड वर्चुअल असिस्टेंट नेटवर्क है उसका फुल फॉर्म, और शतायु सीनियर्स होलिस्टिक केयर असिस्टेंस एंड ट्रेनिंग फॉर योर यूटिलिटी। जीवन ऐप, जैसे कि आपको ज्ञात होगा कि 2025 मई में माननीय राष्ट्रपति जी ने सीनियर सिटीजन वेलफेयर पोर्टल को लोकार्पित किया था, उसी की सीरीज में आगे बढ़ते हुए हमने यह मोबाइल ऐप बनाया जिसका नाम है जीवन ज्वाइंट एल्डरली एम्पावरमेंट एंड वर्चुअल असिस्टेंट नेटवर्क। अभी आपने कहा कि जैसे हमारे वरिष्ठ जनों की पॉपुलेशन 2011 में टोटल जो 8.4% थी, अभी 2036 तक 15% की ओर बढ़ेगी। तो अगर देखा जाए तो इसके अलावा हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, 1947 में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी सीनियर इंडियन की, वो 30 से 32 सालों के बीच से आज बढ़ के हो गई है 70.3। इसको सबको नजर रखते हुए, जैसे शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य, भावनात्मक और सामाजिक जुड़ाव, आपातकालीन सहायता, इन सब चीजों पे विचार करते हुए हमारे मंत्रालय जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय है, इन्होंने जब सीनियर सिटीजन वेलफेयर पोर्टल लॉन्च किया, इसी के सीरीज में यह ऐप एक वन टाइम स्टॉप सॉल्यूशन जो हमारे वरिष्ठ नागरिकों के लिए फायदेमंद होगा, इसी को लॉन्च किया गया है। दूसरा है शतायु। शतायु एक डैशबोर्ड है जहां पे ट्रेंड प्रोफेशनली ट्रेंड जेरियाट्रिक केयर गिवर, अभी तक हमारे मंत्रालय ने जितने ट्रेंड जेरियाट्रिक केयर गिवर्स किए हैं उन सब के बारे में वहां पे जानकारी है कि हमारे वरिष्ठ नागरिक अगर किसी को उनकी सेवा चाहिए तो वो वहां पे अपना ढूंढ सकते हैं।
0: जेरियाट्रिक केयर गिवर्स की बात की, यानी जो बुजुर्ग देखभाल कर्मियों की जानकारी जो उपलब्ध है, तो इसी से जुड़ा एक हमारे व्हाट्सएप पे सवाल आया और सीनियर सिटीजन्स के बहुत सवाल आए आज मोनाली जी हमारे पास व्हाट्सएप पे। और पहला सवाल ये है कि हाउ कैन आई गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट जेरियाट्रिक केयर प्रोवाइडर्स अवेलेबल इन माई लोकल एरिया, डू आई नीड टू पे एनी चार्जेस फॉर सर्चिंग द केयर वर्कर्स? ये है नैना का सवाल मुंबई से।
1: जी थैंक यू नैना जी। जेरियाट्रिक केयर गिवर का जो अगर आप डैशबोर्ड खोलेंगे तो उसमें आपके लोकेलिटी पे जो आप रहते हैं वहां पे मुंबई में या महाराष्ट्र में, जैसे आपने मुझसे कहा जी, तो वहां पे कितने ट्रेंड जेरियाट्रिक केयर गिवर्स हैं उसके बारे में आपको तहत जानकारी मिलेगी। उसमें एक नंबर होगा जहां पे आपको अपना नाम और मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा जस्ट टू वेरीफाई कि आप एक जेन्युइन पर्सन है। एक OTP आते ही आपका जेन्युइन चेक करके वहां के जितने प्रोफेशनल केयर गिवर्स है वहां पे एक मैसेज चला जाएगा उनको कि आप ये सेवा चाहती हैं, उसके हिसाब से जो भी फ्री होंगे या अभी कहीं काम नहीं कर रहे होंगे वो आपको कॉल बैक करेंगे आपके नंबर पे और फिर आप उनकी सुविधाएं यूज कर
0: पाएंगे। तो ये नंबर्स रजिस्टर्ड होंगे, जैसे अगर हमें OTP आएगा और अगर कोई बुजुर्ग है वो चाहता है कि है, तो ये इसको अगर हम वेरीफाई करने के लिए तो उनके पास कुछ रिकॉर्ड होगा या मेडिकल हिस्ट्री भी ऐसी कुछ भी देनी होगी उस समय?
1: नहीं, एक सीनियर सिटीजन या उसके घर के परिवार वाले अगर फोन करते हैं तो उनको वेरिफिकेशन के लिए उन्हीं के मोबाइल पे OTP आएगा
0: जी,
1: कि हमारे जेरियाट्रिक केयर गिवर का वहां पे सिर्फ नाम होगा, वो किस जेंडर का है वो होगा और प्रोफेशनली क्वालिफाइड है ये होगा, इसके अलावा वहां पे कोई जानकारी नहीं होगी।
0: और एक और सवाल आया है हमारा,
1: इसका पार्ट टू भी,
0: ये डू आई नीड टू पे एनी चार्जेस के लिए, क्या पेड है, भुगतान देना पड़ेगा?
1: जी नहीं, किसी भी नागरिक को इस सेवा के लिए कोई भी भुगतान नहीं देना पड़ेगा, सिर्फ एक OTP से अपना जेन्युइनिटी वेरीफाई करना होगा। इसके साथ मैं ये भी कहना चाहूंगी जब आप इनकी सर्विसेज लोगे, आपने किसी की सर्विसेज हायर की है उस पे,

0: तो इस हिसाब से आपका जो भी पेमेंट होगा वो आपके वहां के अवेलेबल चार्जेस पे आपको देना पड़ेगा, पर इसका पुलिस वेरिफिकेशन हो, कैरेक्टर वेरिफिकेशन हो, वो आप ही को करना पड़ेगा। हम सिर्फ प्रोफेशनली ट्रेंड केयर गिवर्स दे रहे हैं
1: जी, हम सिर्फ जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं और बाकी की जो प्रोसेस होगा वो अकॉर्डिंगली होगा
0: जी।
1: सबसे पहले हमारे श्रोता जुड़े हैं दिल्ली से, धर्मवीर जी। हेलो,
2: नमस्कार मैडम, मैं धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपको आपको भी मालूम है कि सीनियर सिटीजन जब अपनी एज पे आ जाते हैं तो धीरे धीरे उनकी कान सुनने की क्षमता खत्म हो जाती है
0: जी।
2: वो फोन चलाने लायक नहीं रह जाते और कोई स्मार्टफोन नहीं चलाना जानता हो। कई लोग ऐसे हैं जो मोबाइल ही चलाना नहीं जानते, बुजुर्ग सीनियर सिटीजन है, तो ऐसे लोगों की क्या एक अलग ही प्रॉब्लम होती है? कोई बर्थ दिव्यांग है, किसी के दोनों पैर खराब हैं, वो अपने घर से तो निकल भी नहीं सकते, उनको तो लेटरिन बाथरूम बिठाने के लिए भी।
1: जी जी जी, मतलब आप ये जानना चाह रहे हैं कि जो स्मार्टफोन से या तकनीक से बहुत परिचित ना और जो ये एक्सेस ना कर सके तो उन्हें किस तरह से सहायता मिलेगी? जी धर्मवीर जी, और संजय सूरी जी का भी हमारे पास इसी से जुड़ा सवाल है व्हाट्सएप पे कि जैसे जो कई सीनियर सिटीजन्स हैं जो वो बहुत सेवी नहीं है, जो मतलब टेक्निक्स और जो आजकल की जो नई सेवाएं आ रही हैं वो मोबाइल पे वो नहीं चाहते, तो उनके लिए ये कैसे हेल्प करेगी और कौन हेल्प कर सकता है इसको लेकर?
0: जी, इसमें एक हमारा एल्डर लाइन है 14567, ये नंबर हमारा एल्डर लाइन का है जो हमेशा इस ऐप से जुड़ा हुआ है। कोई भी वरिष्ठ नागरिक 14567 पे डायल करके जो भी सेवाएं हैं वो उसके बारे में तहत जानकारी ले सकते हैं। उसके लिए उस मोबाइल जानकारी होना या मोबाइल पे टेक सेवी होना जरूरत नहीं है।
1: जी थैंक यू मोनाली जी, क्योंकि बहुत बड़ा प्रश्न था जो हमारे एल्डरी के लिए। और एक और हमारा व्हाट्सएप पे प्रश्न है, ये है कमल कांत जी का हैदराबाद से कि हाउ कैन सीनियर सिटीजन्स गेट हेल्प इन केस ऑफ इमरजेंसीज, अगर आपातकालीन कई बार होता है और बहुत इमरजेंसी कोई होता नहीं क्योंकि अकेलेपन में रहते अकेले रहते हैं, तो उस समय बुजुर्ग को जो बुजुर्ग है वरिष्ठ नागरिकों को किस तरह से सहायता सुलभ हो सकती है?
0: जी थैंक यू कमलकांत सर आपके क्वेश्चन के लिए। जैसे मैंने कहा कि हमारे जो जीवन ऐप में भी और सीनियर सिटीजन वेलफेयर पोर्टल पे भी आपको पता होगा राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर है 14567, तो यही सुविधा इमरजेंसी में हमारे वरिष्ठ नागरिक यूज कर सकते हैं। जब आप जीवन ऐप करते हैं तो इसका हमने 112 और 108 के साथ भी उसी पे एक सुविधा प्रदान की हुई है जिसके माध्यम से आप तीनों नंबर्स पे कहीं भी अपना हेल्प या इमरजेंसी पे आप कॉल कर सकते हैं।
1: और एक बहुत ही विशेष अनुरोध आया है हमारे पास व्हाट्सएप से कि आप प्लीज जो क्वेश्चन का जो आंसर है वो मराठी में चाहते हैं, और उनका प्रश्न ये है, अरुण पवार जी हैं, उनका प्रश्न ये है कि हाउ कैन आई फाइंड नियर बाय वॉक इन सेंटर फॉर सपोर्टिंग एड्स एंड असिस्टिव डिवाइसेस फ्रॉम जीवन मोबाइल ऐप। अनुरोध किया है उन्होंने बहुत ही।
0: थैंक यू अरुण पवार जी, मी तुम्हाला मराठीमध्येच उत्तर देईल। आमच्या याच्यात राष्ट्रीय वयोश्री योजनेच्या तहत पुष्कळसे सेंटर्स ऑनलाईन अवेलेबल आहेत, तुम्ही तिथे नाव टाका आणि तुमच्या जागेत तुम्हाला मिळेल। अभी मैं इसको हिंदी में कन्वर्ट करके बोलना चाहूंगी कि राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत हम लोग जैसे कैंप्स लगाते हैं वो ऑनलाइन सेंटर्स के पूरी जानकारी 100 के करीब हमारे दिव्या वयोश्री केंद्र है, वहां पे बुजुर्ग जाके अपने एड्स एंड असिस्टिव डिवाइसेस की जरूरतें जो होंगी वो आधार कार्ड का देके परिचय पत्र देके ले सकते हैं। तो ये जानकारी ऑलरेडी हमारे जीवन ऐप पे भी अवेलेबल है
1: जी। और सवाल है गोपाल सोनी जी का राजस्थान के सीकर से और संजय सूरी जी का, जो कई उनके जो प्रश्न हैं दोनों के वो समान हैं। उनका कहना है कि ये जानना चाहते हैं कि जो ऐप लॉन्च किए गए हैं उसमें जो वरिष्ठ नागरिकों को किस प्रकार से लाभ मिलेगा।
0: जी संजय सूरी जी और गोपाल सोनी जी,
1: जी
0: आपके सवालों के लिए तो पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी क्योंकि जीवन ऐप के बारे में मैं अभी थोड़ा सा विस्तार से आपको जानकारी देना चाहूंगी। जीवन ऐप में वरिष्ठ नागरिकों के लिए आसपास के सीनियर सिटीजन होम जिसको हम वयो आश्रम बोलते हैं उसकी पूरी जानकारी जो हमारे मंत्रालय से ग्रांट्स पाते हैं उनकी पूरी जानकारी आपको मिलेगी, ज्योग्राफिकल लोकेशन नाम पता। दूसरा है एल्डर लाइन

0: जैसे मैंने कहा 14567 उसका 112 और 108 के साथ। तीसरी है हमारे राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत जितने कैंप्स लगने वाले हैं और जितने वॉक इन सेंटर्स हैं उसके बारे में। चौथी जानकारी आपको मिल सकती है जहां पे हमारे बहुत से सीनियर सिटीजन जो है अपने पेंशन योजना के बारे में जानना चाहते हैं कि क्या स्कीम है, कहां से लिया जाए, या फिर आयुष्मान भारत कार्ड जो है जहां कहां से मिल सकता है, क्या क्या सुविधाएं हैं, कहां अप्लाई करना हो, इन सब के बारे में इस प्रोग्राम पे हम लोगों ने एक इंटीग्रेशन शुरू किया हुआ है। इसके अलावा हमारे जितने भी समझौता ज्ञापन हुए हैं, एमओयू हुए हैं, वो आयुष डिपार्टमेंट ऑफ आयुष हो, ब्रह्म कुमारीज हो, वेव विकास हो, या जिस भी संस्थाओं के साथ हमारा काम चल रहा है, हमारे जितने भी स्कीम्स के बारे में जो हमारा ब्यौरा है, हम लोग इंटरजनरेशनल बॉन्डिंग के प्रोग्राम कर रहे हैं, हमारे जो भी नए पहल हैं, इसकी गैलरी है, मैसेजेस है, अनुभव बोलता है जहां पे सीनियर सिटीजन्स आके भी बोलते हैं, तो ये सब जानकारी आपको उस जीवन ऐप में भी उपलब्ध होगी।
1: और संजय सूरी जी का एक और दूसरा प्रश्न ये है, क्योंकि जैसे आपने अभी मराठी में जवाब दिया, तो ऐसे कई श्रोता जानना चाहते हैं कि क्षेत्रीय भाषाओं में भी जो सुविधा दी जा रही है तो उपलब्ध होगी?
0: जी, इसका प्रयास चल रहा है और तुरंत ये उपलब्ध हो जाएगी
1: ताकि लोगों को आसानी हो।
0: जी, और जो संजीवनी
1: संजय सूरी जी। और सासाराम बिहार से हमारे साथ जुड़े हैं अमित उपाध्याय जी।
2: जी नमस्कार, मैं सासाराम बिहार से बोल। ये इसमें मैडम ने अभी बताया बहुत अच्छा कि दूर दराज तक कैसे हम लोग इसको पहुंच बना सकते हैं। मेरा इसमें और ऐड करना था कि क्या जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो दूर दराज तक जो उसमें कुछ ऐसा रेशियो भी है कि जो बड़े बुजुर्ग हैं वो चल फिर नहीं सकते हैं, उन तक हम लोग कैसे पहुंच सकते हैं? तो इसमें ये हो सकता है कि जैसे सेवा केंद्र के माध्यम से या कुछ ऐसा अपॉइंटमेंट हो जैसे अभी ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण बैंक की जो सेवाएं हैं वो लगातार पहुंच पर नहीं है, उसके हिसाब से कुछ ऐसा प्रोग्राम करके ताकि वहां तक दूर बैठे लोगों तक भी वो पहुंच सके। जो मैडम ने बताया था बहुत अच्छा अच्छा है, ये भी हो सकता है कि कुछ 10% 20% जो भी थोड़ा बहुत छूट दी जाए तो वहां तक हम लोग पहुंच बना सकते हैं। जी,
1: सुझाव दे रहे हैं अमित जी की दूर दराज क्षेत्रों तक अगर पहुंच बढ़ानी हो तो।
0: जी अमित उपाध्याय जी, सासाराम से थैंक यू आपके प्रश्न के लिए। हमारे बिहाफ पे हमारे स्टेट गवर्नमेंट जितने भी है वो भी हमारे तहत हमारा बहुत सा कार्यक्रम इस पे सुचारू रूप से चलाते हैं। तो यही नहीं है कि केंद्र में ही हम चला रहे हैं, पर आप अपने डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर या सामाजिक न्याय मंत्रालय जो आपके स्टेट के हैं बिहार के जैसे, तो आप वहां भी जाके उनसे ये मांग सकते हैं। वहां भी वो हर डिस्ट्रिक्ट में एक एक वेलफेयर ऑफिसर होता है, तो हमारी पहल ऑलरेडी स्टेट गवर्नमेंट के साथ पहल शुरू हो चुकी है कि आप तक हम पहुंचे।
1: जी हाँ, तो सिर्फ ये शहरों तक सीमित नहीं है, तो पूरे देश में हर कोने तक इस सुविधा को पहुंचाने का लक्ष्य है सरकार का। मोनाली जी, अगर देखूं जैसे हमने शुरुआत में अकेलेपन की भी बात की, तो जो वरिष्ठ नागरिकों के जो मानसिक स्वास्थ्य के लिए अगर हम बात करें तो ये कितनी उपयोगी हो सकती है?
0: मैं इसमें एक आपको उदाहरण पेश करना चाहूंगी। हमारा जो 14567 है इस पे बहुत से हमारे सीनियर सिटीजन हैं, 40-45 मिनट सिर्फ बोलते हैं क्योंकि अकेले रहते हैं तो उन्हें कोई बोलने वाला चाहिए। तो ऐसे हमारे पास बहुत से एग्जांपल्स हैं जहां पे बुजुर्ग हमसे बातें करते रहते हैं। तो इसके साथ साथ अभी हमारे मंत्रालय ने, माननीय मंत्री जी ने भी इंटर जनरेशनल बॉन्डिंग पे काफी जोर दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, हायर एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन के साथ भी हमने ऐसे बहुत से प्रोग्राम साझा करने चाहे हैं, वॉकथॉन्स करते हैं इंटर जनरेशन बॉन्डिंग के नाम पे, बहुत से हमने सीरीज भी शुरू की है। तो हर तरह से प्रयास स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का रहता है कि हम ये जो सामाजिक इंक्लूसिव सोसाइटी हमारे बुजुर्गों के साथ एकजुट होकर चले का प्रयास करते हैं कि वो अकेलापन महसूस ना करें।
1: जी हाँ, तो मतलब इसमें जो है कई समाजसेवी संस्थाएं भी इस प्लेटफॉर्म से जुड़ सकती हैं।
0: जी
1: ठीक है, मतलब ताकि जो ज्यादा लोगों तक अगर हम हो तो पहुंच बना सके। तो अगर मैं एक संक्षेप में जाना चाहूं, आपने जैसे कुछ कुछ योजनाएं बताई और जैसे आयुष्मान योजना है, तो क्या ये भी हमें उपलब्ध होगी? और जो बेसिक योजनाएं हैं वयोवृद्ध जो हमारे जन हैं उनके लिए बहुत सारी योजनाएं हैं सरकार की, तो एक बेसिक जानना चाहती हूं कि मुख्य तौर पर क्या क्या योजनाएं हैं, आप संक्षेप में बताएं।
0: अभी तो हमने जो जीवन पोर्टल जो लॉन्च किया है उसमें हमने आयुष्मान भारत जो हमारे सीनियर सिटीजन या सीनियर नागरिकों के लिए है आभा कार्ड, उसके लिए हमने प्रयास किया है। ओल्ड एज पेंशन जो मिनिस्ट्री

0: रूरल डेवलपमेंट देता है उसके लिए प्रयास किया है। जीवन प्रमाण जो पोस्टल और बाकी मिनिस्ट्रीज देती है उसका भी इंटीग्रेशन चल रहा है। तो ऐसे बहुत से प्रोग्राम्स हैं जो हमने अपने वरिष्ठ नागरिकों के लिए चलाते हैं भारत सरकार, उसका बैकएंड से इंटीग्रेशन हमने अभी धीरे धीरे शुरू किया हुआ है इस पोर्टल के माध्यम से, कि हमारे बुजुर्ग वन स्टॉप सॉल्यूशन या वन प्लेटफॉर्म पे ही उन सबको ये मिल जाए।
1: अच्छा, मतलब एक ही जगह पे, क्योंकि कई योजनाएं हैं, कई जिसके एप्स भी उपलब्ध हैं, लेकिन एक ही जगह पे सारी योजनाएं उपलब्ध है, तो उससे बहुत सहूलियत होगी जो हमारे वृद्ध जन हैं। पुणे से जुड़े हैं श्रीपद झाकड़े जी।
2: हेलो हेलो,
1: नमस्कार श्रीपद जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद। मैं श्रीपाद जाखड़े बोल रहा हूँ पुणे से। तो मेरा सवाल ये है कि मैं दृष्टिहीन हूँ और वृद्धाश्रम में रहते हैं, मतलब हम तो मतलब हम लोगों को किस प्रकार इन सेवाओं का लाभ मिल सकता है, कारण हमारे पास कोई स्मार्टफोन भी नहीं है और कोई हम ऑपरेट नहीं कर सकते, तो हमको कैसे मतलब इसका उपयोग हो सकता है मतलब हम लोगों को।
1: जी हाँ, दृष्टिहीन है और वृद्धाश्रम में रहते हैं, स्मार्टफोन नहीं है, तो ऐसे जो लोग हैं उनके लिए क्या उपाय है?
0: श्रीपाद जी, आप पुणे से बोल रहे हैं, सीनियर सिटीजन होम से?
1: जी, अब डिस्कनेक्ट हो गया है, पर हाँ जी, हाँ, उन्होंने बताया वृद्धाश्रम
0: से रहे। तो हमने जो जीवन ऐप लॉन्च किया है इसमें तो हर जानकारी है, इसके अलावा जितने एनजीओ जो सीनियर सिटीजन होम्स को कार्यान्वित कर रहे हैं, जो मेंटेन कर रहे हैं, वो भी इस ऐप को देख के जो जो कार्यक्रम आसपास हो रहे हैं उसकी पूरी जानकारी उस पे है। आप अपने मैनेजमेंट स्टाफ को भी पूछ के ये जानकारी वहां से ले सकते हैं।
1: जी हाँ, तो बहुत इजी करने की कोशिश की गई है और आप तक पहुंच बढ़ाने की सरकार की कोशिश की गई है। अगर मैं विशेषता जानना चाहूं इस ऐप की और इस डैशबोर्ड की, तो क्या है जो बुजुर्गों के लिए हो, क्योंकि जो टेक्निकल जो इतने सेवी नहीं है और स्मार्टफोन जिनको चलाने इतने खास नहीं आते, तो ऐसे में उनके लिए क्या विशेषता है?
0: पहले बात करते हैं शतायु की। शतायु नाम ही इसलिए हमने दिया है कि आप 100 साल जिए, तो हम आपके शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य या भावनात्मक सामाजिक जुड़ाव के लिए हमने शतायु ऐप नाम उसका किया है, जहां पे आपकी सुविधा के लिए जेरियाट्रिक केयर गिवर्स की मदद मिले कि आपको डेली कंपेनियनशिप हो, आपके वेलबीन के लिए हो, योगा हो, इन सब के लिए आपको मदद मिले। आपको कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है, ऐप पे जाके आप सीधा आपके आसपास के जितने प्रोफेशनली ट्रेंड है उसके बारे में जानकारी करके उनकी सर्विसेस ले सकते हैं। अब आते हैं हम जीवन ऐप पे, जो दूसरा हमने पोर्टल लॉन्च किया है जीवन, उसके तहत ना ही जैसे मैंने कहा कि सीनियर सिटीजन होम्स, राष्ट्रीय वयोश्री कैंप और बाकी भी है, इसके अलावा बहुत से ऐसे भी हमारे पास कार्यक्रम होते हैं जिसपे आप डायरेक्टली लॉन्च करके आप इसके ऑनलाइन जुड़ के भी आप ले सकते हैं जानकारियां।
1: जी जी, तो मतलब आप जानकारी लेना भी आपके लिए आसान, और सबसे आसान तो ये है कि जो आपने एल्डरली जो हेल्पलाइन नंबर बताया हुआ है, तो 1-4-5-6-7-1-4-5-6-7, इस पर अगर आपको कोई भी शंका, कोई भी दुविधा है, तो आप इस नंबर पर डायल करके अपने सवाल के जवाब पा सकते हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर से जुड़े हैं रशीद अहमद खान जी।
3: नमस्ते मैम।
1: नमस्कार।
3: आप सभी लोगों को आगामी पर्व की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं।
1: जी धन्यवाद
3: जी। और हाँ जी, मतलब सवाल मेरा ये है कि क्या जितने वरिष्ठ नागरिक लोग रहते हैं या अकेले रहते हैं या किसी परिवार में भी है मान लें, तो क्या उनको कोई वैधानिक समस्या आ रही है, उनके परिवार के लोग उनको इग्नोर कर रहे हैं या मतलब टॉर्चर कर रहे हैं, कुछ कानूनी हेल्प मिलती है उनको?
0: जी रशीद जी, आपके सवाल के लिए धन्यवाद। और जैसे मैंने कहा कि 1-4-5-6-7 ये जो हेल्पलाइन है, इसके तहत आपको ये सब जानकारी और मदद तो मिलेगी मिलेगी, इसके अलावा 112 जो आपका ERSS नंबर है, इस पे भी आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, जिस पे आपको बाकी मदद भी वहां के वहां पहुंचाई जाएगी।
1: जी हाँ, तो दो नंबर्स मैम ने बताए हैं, 1-4-5-6-7 और जो कनेक्टेड है 112 के साथ भी, तो कोई भी आपात स्थिति हो, इमरजेंसी हो, तो आप इन नंबर्स पे डायल करके आप सेवा ले सकते हैं। अगर जैसे वरिष्ठ लोगों को जो इतने अगर नहीं सुन रहे हैं कार्यक्रम या उन तक ये पहुंच नहीं हो पा रही है कि ये जो सुविधा सरकार ने शुरू की है, तो उन तक इस बारे में जागरूकता लाने के लिए, इन सेवाओं के बारे में उन्हें शिक्षित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?
0: एक तो मुझे आकाशवाणी का थैंक यू बोलना चाहिए, अभी पब्लिक लाइव हुए हैं तो सब पब्लिक जहां भी है वो सुन रहे हैं, तो एक तो ये पब्लिक

0: डिसेमिनेशन है ही
1: जी
0: प्रेस के तहत और स्टेट गवर्नमेंट, जैसे
1: जी
0: मैंने कहा कि हमारे बिहाफ पे वो वो भी बहुत से प्रोग्राम चलाते हैं, तो उनके तहत भी हम ये जीवन ऐप जो है वो भी इसके बारे में वहां पे इन्फॉर्मेशन देंगे, तो हर वरिष्ठ नागरिक तक पहुंचने की हम लोग जरूर प्रयास कर रहे हैं।
1: जी हाँ, जैसे हमने जेरेट्रिक केयर गिवर्स की बात की और जैसे हमें तो खैर उस बारे में जानकारी उपलब्ध होगी, पर अगर हम हर क्षेत्र की बात करें तो वहाँ जब भुगतान करना है तो अगर अगर हम जाएं दूर दराज के क्षेत्रों में और जो भुगतान सेवा है तो उधर भी उपलब्ध होगी, जो ये प्रोवाइडर्स होंगे, केयर गिवर्स जो होंगे, जो स्वास्थ्य देखभाल जो कर्मी होंगे, कि वहां पर भी उपलब्ध होंगे ये इतनी दूर दराज के क्षेत्रों में भी।
0: जी, अगर वहां पे जैसे दूर से कोई ट्रेंड है उस जगह से, जैसे बिहार से, सासाराम से, अगर वहां पे कोई प्रोफेशनली ट्रेंड जेरियाट्रिक केयर गिवर है तो उसके आसपास के लोकेलिटी में जितने लोग हैं उस डिस्ट्रिक्ट में वो उसकी पूरी जानकारी वहां मिल जाएगी।
1: जी दिल्ली से जुड़े हैं राजकुमारी जी।
2: नमस्ते मैम।
1: नमस्ते,
2: मैं राजकुमारी रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ
1: जी
2: और दिल्ली से बोल रही हूँ। मेरी मेरी आयु 82 वर्ष है मैडम
1: जी।
2: आपके मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया जीवन ऐप क्या है और सीनियर सिटीजन्स को इससे क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी मैडम?
1: जी राजकुमारी जी, एक बार आपसे गुजारिश है, फिर से बता दें ऐप के बारे में और क्या इससे लोगों को फायदा होगा।
0: नमस्कार मैम। जीवन ज्वाइंट एंडली एम्पावर एंड वर्चुअल असिस्टेंट नेटवर्क ऐप है, जो एक मोबाइल सॉल्यूशन है। जीवन ऐप में आपको आपके आसपास होने वाले सीनियर सिटीजन होम्स हो, राष्ट्रीय वयोशी कैंप्स हो, जो डिस्ट्रीब्यूशन या वॉक इन सेंटर जहां पे आप जाके अपने एड्स एंड असिस्टिव डिवाइसेस ले सकते हैं, इसके अलावा एल्डर लाइन जो हेल्पलाइन है और 112, इसके बारे में आप जानकारी, आपको किसी भी चीज की अगर कोई जरूरत हो तो इस वाले में 112 और 14567 पे डायल करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जितने भी सीनियर सिटीजन्स है उनकी जो जैसे आभा कार्ड है या वयोश्री पेंशन योजना है या जितने भी सीनियर सिटीजन के लिए स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के ऐप्स है, उसका इंटीग्रेशन के बारे में जो प्रयास चल रहा है, तो इसकी सब जानकारी जो हमारे वयोश्रेष्ठ नागरिक है उनको मिलने के लिए हमारा मंत्रालय का एक छोटा सा प्रयास है।
1: जी, तो इसमें जैसे आपने स्टेट गवर्नमेंट की भी बात की तो राज्य सरकारों की क्या भूमिका रहेगी?
0: राज्य सरकार की भूमिका ये होती है, जैसे हम बड़े मेजर इस पे काम करते हैं वो माइक्रो लेवल पे काम करते हैं, जहां पे वो हर व्यक्ति के आसपास के या उस स्टेट्स के रिलेटेड की ज्यादा जानकारी उन्हें होती है। एक माइक्रो लेवल पॉलिसी हम बना लेते हैं पर वो उसको इम्प्लीमेंट करने का काम मोस्टली राज्य सरकारों का होता है, क्योंकि वो एक आम नागरिक से जुड़ते हैं, हम लोग डायरेक्टली नहीं जुड़ पाते, तो हमारा माध्यम होता है थ्रू स्टेट गवर्नमेंट। तो वहां पे जितने मेडिकल कैंप्स लगने हैं, ऑपरेशंस कैटरैक्ट के होने हैं, या जो ट्रेनिंग करवानी है, या डिमेंशिया स्क्रीनिंग हो रही है, तो वो सब जानकारी जो भी कैंप्स करवाने या जो भी आईसी मटेरियल की जानकारी होती है वो स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है।
1: जी, उत्तर प्रदेश के रायबरेली से जुड़े हैं रमा शंकर जी।
3: नमस्कार। मैं ये पूछना चाहता था कि जैसा बहुत लोगों ने प्रश्न किया है कि जो वयोवृद्ध हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, जो स्मार्टफोन नहीं चलाते हैं, दूर दराज गांवों में रहते हैं, उनके लिए ऐप के अलावा और क्या व्यवस्था हो सकती है, यह व्यवस्था क्या की गई है कृपया बताएं।
1: ऐप के अलावा और क्या व्यवस्था है कि उन तक ये जो फायदे हैं और ये जो योजनाएं हैं ये प्रयास है पहुंचे?
0: रामाशंकर जी, आपको मोबाइल टेक सेवी होने की जरूरत नहीं है। आप 14567 डायल करते ही आपको पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी कि इस ऐप में क्या है, या फिर सीनियर सिटीजन्स के लिए मंत्रालय का क्या दायित्व है और मंत्रालय के क्या क्या प्रोग्राम चल रहे हैं।
1: अगर उन्हें का स्मार्टफोन भी नहीं है तो क्या करें?
0: 14567 अच्छा, में आपको स्मार्टफोन की भी जरूरत नहीं है। नॉर्मल इससे भी आपका वो टोल फ्री नंबर है, आप डायल कर सकते हैं।
1: जी हाँ, तो अब आपकी जो समस्या था उसका निजात कर दिया मोनाली जी ने। मध्य प्रदेश
0: मंत्रालय ने
1: जी। राजेश नेमा जी।
4: जी
1: राजेश जी, आपका सवाल क्या है?
4: जी मैं सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा बोल रहा हूँ
1: जी।
4: तो मेरा सवाल ये है कि वर्तमान की जो आपाधापी है उसमें घर में जो बुजुर्ग रहते हैं वो परिवार से

0: तालमेल नहीं बिठा पाते, तो इस स्थिति में वह ऐप क्या मदद कर सकता है?
1: जी राजेश जी, अब अक्सर आप देखिए कि सवाल ये है कि आपस में अगर घर में थोड़ा सा मनमुटाव रहता है तो उस स्थिति में ऐप का, हालांकि मैम ने बताया कि नंबर ही है 1 4 5 6 7, और इसके अलावा क्या उन तक सहायता हो सकती है मोनाली जी?
2: राजेश जी, जैसे हमने कहा कि परिवार के अंदर तो हम नहीं जाएंगे, परिवार का आपसी मनमुटाव तो अपना पारिवारिक जीवन ही होता है, पर इसके अलावा अगर एब्यूज हो रहा है, मारपीट हो रही है, उनके साथ कोई दुर्व्यवहार हो रहा है, तो आप 112 और 14567 पे जरूर आप इस पे रेस करिएगा, हम आपके लिए जस्ट वन कॉल अवे हैं।
1: जी, तो अगर हम युवा पीढ़ी की बात करूं इसमें, तो युवा पीढ़ी किस तरह से सहायता दे सकती है?
2: जी थैंक यू इस सवाल के लिए। हमारे आदरणीय मंत्री जी भी डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी इसके लिए काफी प्रयास करते रहते हैं कि हम इंटर जनरेशनल बॉन्डिंग और युवाओं को कैसे शामिल किया जाए, कि हम बुजुर्गों के प्रति सम्मान बढ़ाए जाए, तो इसके साथ हमने बहुत से ऐसे कुछ कार्यक्रम चलाने की कोशिश की है, जैसे ग्रैंड पेरेंट टीचर मीट स्कूलों में हो जाए, वॉकथॉन्स हो जाए, प्लेज ऑनलाइन प्लेजेस लेने चाहिए, तो इवन जेरेट्रिक केयर गिवर जो है वो युवाओं के लिए ही है, कि आज का युवा कल जाके जो बुजुर्ग हो तो उसके लिए वो अपने घर वालों की कैसे सेवा कर सकता है, तो इससे हम युवाओं को भी जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं।
1: तो अगर मैं भविष्य में देखूं, अगर आपने जैसे योजनाएं बताई, जो स्कीम्स बताई इसमें है, तो और आगे भविष्य में किस तरह की चीजें इसमें एड ऑन करने की आपकी वो है योजना है?
2: जैसे मैंने कहा कि ऑलरेडी वरिष्ठ नागरिकों के प्रति हमारा जो दायित्व है और दो पिलर्स है, एजिंग विद डिग्निटी और एजिंग एट प्लेस, हम ये चाहते हैं कि भाई हमारा बुजुर्ग जो है अपने घर में ही रहे और पूरे सम्मान के साथ अपना जीवन व्यापन करे। तो इसके, जैसे मैंने कहा कि पहले भी हमने बहुत से एप्स को जोड़ने की कोशिश की है, हमसे यही रहेगी उम्मीद कि हम और इस पे जोड़ते जाएं।
1: जी धन्यवाद मोनाली जी इस बारे में जानकारी देने के लिए। अगर देखें तो ये जो दोनों चीजें हैं, जीवन ऐप और डैशबोर्ड, ये शतायु डैशबोर्ड है, तो तकनीक और संवेदनशीलता का ये बहुत ही अनोखा संगम है जो बुजुर्गों को स्वास्थ्य सेवाओं, सहायता, देखभाल और सरकारी सुविधाओं से जोड़ने का महत्वपूर्ण प्रयास है। तो ये पहल हमारे बुजुर्गों के जीवन में उम्मीद, सुरक्षा और सम्मान को नई रोशनी देगी, यही उम्मीद करते हैं। आप स्टूडियो में आई और विस्तार से चर्चा की, इस बारे में धन्यवाद। और अपने श्रोताओं का भी धन्यवाद करते हैं जिनके व्हाट्सएप पे हमें प्रश्न मिले और जिनके हमें कॉल्स आए, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने।
3: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय रात्रि के 10 बजे हैं। अब आरंभ होता है कार्यक्रम संदेश से आते हैं।

संडे से आते हैं कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में अपने पसंदीदा गीत सुनने के लिए आप अपना नाम व पता, फिल्म का नाम, गीत के बोल टाइप करके भेज दीजिए हमें इस नंबर पर 9474234000। नंबर एक बार पुनः नोट करें, 9474234000। करते हैं कार्यक्रम का आगाज़ और लेते हैं प्रोग्राम का पहला मैसेज, जिसे भेजा है अष्टिनाबाद से जगदीश और प्रतिमा ने। हमारे ये श्रोता सुनना चाहते हैं मर्डर टू फिल्म का ये गीत। आवाज़ें हैं मोहम्मद इरफान और अरिजीत सिंह की, बोल सईद कादरी के, धुन बनाई हर्षित सक्सेना ने।

निरंजन अयंगर का लिखा एवं सलीम सुलेमान का संगीतबद्ध किया हुआ ये गीत था कुर्बान फिल्म से। आवाजें थी सोनू निगम, श्रेया घोषाल और साथियों की। इस गीत को सुनना चाहा था लिटिल अंडमान से अजीत ने।

अक्सर आइए अब सुनते हैं इस फिल्म का गीत हिमेश रेशमिया और सुनिधि चौहान की आवाज़ों में, बोल समीर के धुन बनाई हिमेश रेशमिया ने। गीत को पसंद किया डिगलीपुर से प्रीति और सुप्रिया ने।

से। गीतकार है सईद कादरी तथा संगीतकार है प्रीतम। इस गीत को सुनने के इच्छुक श्रोता है छोलदारी से आकाश और दिव्यांश।

साउथ पॉइंट से अंकिता और प्रिया की पसंद पर ये गीत था क्रुक फिल्म से, स्वर दिया मोहित चौहान ने। और अब कार्यक्रम के अंत में सुनिए। हाफ गर्लफ्रेंड फिल्म का

अरिजीत सिंह और शाशा त्रिपाठी की आवाज़ों में ये गीत था हाफ गर्लफ्रेंड फिल्म से। इस गीत को सुनने के इच्छुक श्रोता थे रंगत से सुमित्रा और अंकुर। इस गीत के साथ ही संदेश से आते हैं कार्यक्रम से, चाहेंगे इजाजत, नमस्कार।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। मौसम मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार जन सेवाओं तथा मछुआरों के लिए कोई विशेष चेतावनी नहीं है। कल शाम तक के मौसम संबंधित पूर्वानुमान में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के एक या दो भागों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से हवाएं चलेंगी। द्वीपों के अधिकांश भागों पर हल्की से मध्यम वर्षा होगी या गरज के साथ छींटे पड़ेंगे। ये थी मौसम की जानकारी। इस समय रात्रि के 10:30 और 40 सेकेंड हुए हैं। हमारी आज की दूसरी सभा यहीं समाप्त होती है। प्राइमरी चैनल पर कल प्रातः 5:23 पर हम अपनी पहली सभा में, जबकि 100.9 MHz विविध भारती FM पर कल सुबह 6 बजे हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की पांचवी तिथि, तदनुसार 26 मई सन 2026 सवेरे की 5:28 और 34 सेकेंड हुए हैं। हमारी आज की इस प्रातःकालीन प्रसारण सेवा में आप सभी का हम हार्दिक अभिवादन करते हैं।

0: श्रोताओं, आइए सभा का शुभारंभ करते हैं आज के अनमोल विचार से।
1: संतोष वो सुकून है जो इंसान को हर परिस्थिति में मुस्कुराना सिखाता है। जिसके पास संतोष है वही वास्तव में सबसे धनी है। जीवन में सुख रहने का सबसे सुंदर मंत्र है, मेहनत करते रहिए लेकिन मन में संतोष भी रखिए। संतोष मन की वो रोशनी है जो छोटी छोटी खुशियों को भी अनमोल बना देती है।
0: ये था आज का हमारा अनमोल विचार और अब प्रस्तुत है भक्ति गीतों से ओतप्रोत कार्यक्रम।